प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अदिति के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको अदिति।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने

0: पिछले फरवरी महीने में ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर अपने बड़े अक्षरों में लिखा था, जे गौसिया को मत छोड़ो। इस कदम से शगस मुद्दे से जुड़ी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस पोस्ट के कारण पिछले अप्रैल महीने से शगस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने की प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि उस समय केयर स्टार्मर की सरकार के अधीन में बरतानी संसद ने इस बिल को अलग रख दिया था। अब जहां अगस्त महीने समाप्त होने चला है, वहां पिछले 2025 में तय हुए समझौते को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में मॉरिशस निष्क्रिय नहीं है। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ में कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया गया कि मॉरिशस सरकार की दो सूत्रों के अनुसार मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम पर समझौता लागू करने का दबाव बनाने का प्रयास करेगा। ईंधन सप्लाई को लेकर पिछले हफ्ते मॉरिशस और भारत के बीच 5 सालों का एक समझौता तय हुआ है। दूसरी तरफ विदेशी व्यापार के हालिया आंकड़े मॉरिशस के आयात पर ऊर्जा खर्चों के प्रभाव की तरफ संकेत करते हैं। इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटा आधे से ज्यादा बढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए का था, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंच गई है, जबकि लापता हुए लोगों की तादाद 2400 पार कर गई है। इनमें 500 से ज्यादा विदेशी मूल के लोग बताए जाते हैं। राहत कार्य जारी है। भारत की तरफ से 50 टन मूलभूत सामान और दवाइयों का कंसाइनमेंट भेजा गया है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होती रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जनता से सावधानियां बरतने की मांग की जाती है, खासकर ऊंची जगहों पर न जाएं और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए खासकर क्रॉसविंड्स वाली जगहों पर सतर्कता बरतें। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन संबद्ध तटीय इलाकों में भी न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:21 पर सूर्योदय, शाम को 6 बजे सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti।
0: तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
4: ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है और धीरे धीरे सूरज की किरणें धरती को चूम रही है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, देवी और सज्जनों, प्रिय श्रोताओं, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार, सुस्वागतम। यह है आप ही लोगों का मनपसंद रेडियो चैनल AM2 रेडियो मॉरिशस। जी हाँ, इस समय आप हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस के एरो पे और आप हमें देख रहे हैं रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। सो देखने और सुनने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आज है शनिवार 29 अगस्त साल 2026। परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि

0: की सुबह और आज का पूरा दिन आप सभी लोगों के एकदम अच्छी तरह से बीते। आज आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे। जो बीत चुका वो एक सपना था, उसे भूल जाइए और जो है वो आपका आज है, आपका वर्तमान है और आपका आने वाला कल है। सो अकलमंद इंसान वो है जो अपने वर्तमान में जीता है और भविष्य की तैयारी करता है। और बेशक दिस इज द लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, अगला सैटरडे होगा सितंबर महीने का। एक महीना पूरा हुआ और दूसरा महीना शुरू होने वाला है। सो आशा करते हैं कि हम द लास्ट सैटरडे एकदम ही धमाकेदार होगा और अच्छी तरह से बीतेगा आप सभी लोगों के लिए। मीठी मीठी नींद से जागे तो हम कहेंगे सुस्वागतम। और बेशक अपने मन में अच्छे विचारों को धारण करें। मन शरीर पवित्र हो तो विचार भी पवित्र होते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। चलिए शुरू करते हैं रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों को गहलोत राजपूत महासभा के प्रोग्राम के साथ। और प्रोग्राम है वैदिक नाद। हियर वी गो।
1: सुनिए गहलोत राजपूत महासभा की ओर से वेदों और शास्त्रों पर आधारित कार्यक्रम वैदिक नाद।

समस्त आर्य बंधुओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत वैदिक नाद कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। विषय देव भाषा संस्कृत। श्रोताओं, संस्कृत भाषा को सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। यह भारत में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में शामिल हैं। भारतीय संस्कृति का आधार इसी भाषा को माना जाता है। यह हमारे संविधान द्वारा सूचीबद्ध 22 राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है। वर्तमान समय में संस्कृत का व्यवहार सिर्फ पूजा पाठ और अकादमी गतिविधियों तक ही सीमित हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथ और वेद की रचना संस्कृत भाषा में ही हुई थी। संस्कृत के बहुत से शब्दों के द्वारा अंग्रेजी के शब्द बने हैं। महाभारत काल में वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। आज संस्कृत देश की कम बोली जाने वाली भाषा बन गई है, लेकिन इस भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी भाषा से बाकी भाषा की व्याकरण समझ में आती है। श्रोताओं, भारतीय कैलेंडर के अनुसार संस्कृत दिवस का पालन श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन किया जाता है, अर्थात रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस दोनों एक ही दिन होता है। संस्कृत दिवस की शुरुआत साल 1969 में हुई थी। वैदिक भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत दिवस के दिन विभिन्न गतिविधियों, संगोष्ठी व कार्यशालाओं का आयोजन होता है। इस दिवस का पालन पूरी दुनिया में किया जाता है। इस दिवस का पालन करने का मुख्य लक्ष्य है कि संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके, हमारी नई पीढ़ी को इस भाषा के बारे में पता चल सके और वे इसका ज्ञान हासिल कर सकें। अभी के लोगों की सोच है कि संस्कृत पुराने ज़माने की भाषा है और यह समय के साथ साथ और भी पुरानी हो गई है। आम लोगों की इसी सोच में परिवर्तन के उद्देश्य से संस्कृत

दिवस का पालन किया जाता है। भारत में अभी भी बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा में पढ़ाई करते हैं। भारत में सबसे पहला संस्कृत विश्वविद्यालय साल 1791 में वाराणसी में खुला था। भारत में अभी अनेक संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। देश विदेश के बहुत सारे कॉलेजों में संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए अलग विभाग होता है। यहाँ से ग्रेजुएशन करने वालों की संख्या भी बहुत है। संस्कृत जो कि भारत देश का गौरव है, उसे बढ़ावा व उसका हक जरूर मिलना चाहिए। श्रोताओं, संस्कृत देव भाषा के साथ साथ समस्त भाषाओं की जननी भी है। भारत की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान यदि समग्र विश्व भर में है तो उनमें से एक संस्कृत भाषा भी है। वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। इसके आंचल से ही हिंदी, पाली, प्राकृत आदि कई भाषाएं विकसित हुई हैं। यह भाषा संस्कृत की तरह व्यापक है। वेद, उपनिषद, दर्शन, उपवेद व वेदांक आदि सहित अनेक के विषय वस्तु संस्कृत में ही वर्णित है। वेद उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने भी संस्कृत भाषा सनातन धर्म सहित जैन, बौद्ध व सिख पंथों में संचार का पारंपरिक साधन रही है। संस्कृत साहित्य को प्राचीन कविता, नाटक और विज्ञान के साथ साथ धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में उपयोग होने वाले विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। भारत की अधिकांश साहित्यिक रचना ग्रंथ उपनिषद, संस्कृति और परंपरा से संबंधित बातें संस्कृत में लिखी गई है। इन ग्रंथों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है, मगर इसकी मौलिकता और जीवंतता संस्कृत भाषा में ही निहित है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश व संस्कार विधि, कालिदास की अद्भुत साहित्यिक कृति मेघदूत, पतंजलि के योग सूत्र, आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, दर्शन व मनुस्मृति और बेशक दुनिया के महानतम महाकाव्य महाभारत और रामायण सभी मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए थे। श्रोताओं, प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक विलियम कुक टेलर के अनुसार इस भाषा की महारत हासिल करना लगभग जीवन भर का श्रम है। इसका साहित्य अंतहीन लगता है। महर्षि अरविंद के शब्दों में अगर पूछा जाए कि भारत के पास सबसे बड़ा खजाना क्या है और उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है, तो बिना किसी हिचकिचाहट से उत्तर मिलेगा कि यह संस्कृत भाषा है। इसमें वह सब कुछ है। यह एक शानदार विरासत है। जब तक यह हमारे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, तब तक भारत के मूल प्रतिभा बनी रहेगी। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसी कड़ी में आज भारत में आध्यात्मिकता की नए सिरे से चिंतन व चर्चा होने लगी है। संस्कृत भारतीय संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका धार्मिक साहित्य में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, मुख्यतः सनातन धर्म में, क्योंकि अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाएं सीधे संस्कृत से ली गई हैं। श्रोताओं, संस्कृत ही वह एकमात्र पवित्र भाषा है जिसके अंतस्स से अन्य भाषाओं का आविर्भाव हुआ है। भाषा शास्त्र में संस्कृत भाषा को एक सार्वभौमिक भाषा तथा सभी यूरोपीय भाषाओं की नींव के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार संस्कृत का ज्ञान प्राचीन भारत में सामाजिक वर्ग
और

0: सै सिख उपलब्धि का प्रतीक था। भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को समृद्ध बनाए रखने में इस भाषा का योगदान अतुलनीय है। वह जितनी प्राचीन है उतनी आधुनिक और वैज्ञानिक भी है। संस्कृत भाषा के सार्वभौमिक स्वरूप एवं व्यापकता के कारण वर्तमान में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। एक लेखक ने क्या खूब लिखा है, गेहे गेहे संस्कृत भाषा भवतात् पुनरपि वाणी, राष्ट्रकुलानां धर्म धरानां ज्ञानवता कल्याणी। अर्थात घर घर में संस्कृत भाषा बोली जाए, यह राष्ट्र ज्ञानियों तथा धर्म के धारकों के लिए कल्याणकारी है। श्रोताओं, सब जीवों में केवल मनुष्यों को अपनी वाणी से परमात्मा की वाणी वेद मंत्र बोलने का अधिकार है। यह अधिकार हमको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। अंत में यही कहना चाहूंगी, जितने हाथ जोड़कर पूजा करने वाले हैं वे प्रतिदिन अपने घरों में परमात्मा की वाणी गायत्री मंत्र जो संस्कृत में है उच्चारण अवश्य करें। इन्हीं विचारों के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रही हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैदिक नाद।

सुबह के 6:17 और 20 सेकेंड्स हो रहे हैं। आप हमें सुन रहे रेडियो वर्सेस की लहरों पे। श्रोताओं, प्रस्तुत है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। पायोत पौछी दे पायोत मुतुलेन बतुलेन अनुपलेन और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 30 अगस्त को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और ग्रांबे सोचीज सिटी लुमियर ग्रांबे और स्टेशन दे पुलिस अजय पैराडाइज और रुई ऑर्किडे के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 30 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना की बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। सुबह के 6:20 हो रहे हैं और कहते हैं कि सुबह सवेरे जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो हमारा दिन अच्छी तरह से बीतता है। तो चलिए हम महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माँ का नाम लेते हैं, उनकी आराधना अर्चना करते हैं और दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हे मैया, हम सभी को शक्ति दो ताकि जीवन में हम आगे बढ़ सकें और ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकें। जय हो दुर्गा मैया, जय हो महिषासुर मर्दिनी।

प्रिय श्रोताओ, इसी महिषासुर मर्दिनी महामंत्र के साथ यह म्यूजिकल प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। याद है ठीक 6:30 बजे होगा पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, मौसम का हाल, स्पोर्ट्स रिव्यू, नुथावाई नुलाविनी, और बेशक ठीक 7 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी चैनल पर। सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाई, सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ ने कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया कि मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए श्रगोस मामले को

0: आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री पर समझौता लागू करने का दबाव बनाने का प्रयास करेगा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए का था, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये बढ़कर 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा। न्यायिक क्षेत्र में असाइजेज अदालत के स्तर पर सजा सुनाए जाने के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 54 के मुकाबले 2025 में 104 लोगों को सजा सुनाई गई, खासकर ड्रग से जुड़े अपराधों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में उतरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंची। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले फरवरी महीने में ट्रूथ सोशल नामक नेटवर्क पर बड़े अक्षरों में लिखा था, डिएगो गार्सिया को मत छोड़ो। इस कदम से शागोस मुद्दे से जुड़ी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस पोस्ट के कारण पिछले अप्रैल महीने से शागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने की प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि उस समय सखेर सौम की सरकार के अधीन में बरतानी संसद ने उस बिल को अलग कर दिया था। अब जहां अगस्त महीना समाप्त होने चला है, वहीं पिछले 2025 में तय हुए समझौते को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में मॉरिशस निष्क्रिय नहीं है। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ ने कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया कि मॉरिशन सरकार के दो सूत्रों के अनुसार मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम पर समझौता लागू करने का दबाव बनाने का प्रयास करेगा। विस्तार प्रणव बिहारी और गीता स्नारायण के साथ।
1: विदेश मंत्री रितेश रामफल द्वारा शुक्रवार की सुबह और M1 पर दिए गए बयान में उन्होंने कहा, राष्ट्रसंघ महासभा लगने वाली है सितंबर में, देखते हैं कि क्या होगा। वेस्टमिंस्टर पैलेस में संसदीय कार्यों के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है और साथ में बरतानी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच होने वाली मुलाकात का भी।
2: À la rentrée du Parlement britannique, qui le dossier de Chagos.
1: उम्मीद है कि बरतानी संसद के कार्यों के शुरू होने पर शागस मामले का अनुसमर्थन किया जाएगा, क्योंकि अब तक ब्रिटेन ने कहा है कि इसके साथ आगे बढ़ेंगे। और अब हालिया खबरों के अनुसार बरतानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि शागस का मामला प्रधानमंत्री के एजेंडे में शामिल हो। टेलीग्राफ के अनुसार मॉरिशस इस शिखर बैठक का फायदा उठाकर मांग कर सकता है कि यूनाइटेड किंगडम पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे के प्रयोग को जटिल बना सकता है। मॉरिशस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रसंघ से एक रेजोल्यूशन की मांग भी कर सकता है, जिससे यूनाइटेड किंगडम द्वारा टापुओं के प्रयोग को अवैध करार दिया जा सकता है या फिर इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। लेकिन तब तक बरतानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि डिएगो गार्सिया पर लंबे समय तक अधिकार और सुरक्षा यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच समझौते की नींव है।
0: ईंधन सप्लाई को लेकर पिछले हफ्ते मॉरिशस और भारत के बीच 5 सालों का एक समझौता तय हुआ है। दूसरी तरफ विदेशी व्यापार के हालिया आंकड़े मॉरिशस के आयात पर ऊर्जा खर्चों के प्रभाव की तरफ संकेत करते हैं। इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटा आधे से और बढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए का था, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा है। शैलिनी अवन, गीता स्नारायण।
1: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की ओर से बुधवार को जारी इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून के बीच मॉरिशस का व्यापार घाटा 67.5 बिलियन रुपए रहा, जबकि पहली तिमाही में ये 45.6 बिलियन रुपए था। यानी 3 महीनों में व्यापार घाटे में 48.1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक साल में ये 26% बढ़ा है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह आयात है, जो तिमाही आधार पर 36.4% बढ़कर 96.4 बिलियन रुपए हो गए। गया। आयात में खनिज ईंधन, लुब्रिकेंट और संबंधित उत्पादों में एक साल के मुकाबले 71.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके मुकाबले निर्यात में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रही। दूसरी तिमाही में निर्यात 28.9 बिलियन रुपए रहा,

0: जो एक साल पहले की तुलना में 4.3% अधिक है। इस तरह साल के पहले 6 महीनों में मॉरिशस का व्यापार घाटा 113.1 बिलियन रुपए हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 12.5% ज्यादा है। दूसरी तिमाही में स्थिति बिगड़ने के बावजूद स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने पूरे साल के लिए करीब 215 बिलियन रुपए के व्यापार घाटे के अपने अनुमान को बरकरार रखा है। ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और समुद्री व्यापार मार्गों पर तनाव के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं।
1: 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटे में बढ़ोतरी को लेकर अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी ने एक बुनियादी बात की तरफ संकेत किया है। मॉरिशस अपने इस्तेमाल का 80% से ज़्यादा हिस्सा आयात करता है। इसमें ईंधन सबसे महत्वपूर्ण है और हाल में वैश्विक स्थिरता के साथ इसकी कीमत बढ़ने से आयात में खर्च सीधे तौर से बढ़े हैं। हालांकि उनका ये मानना है कि मॉरिशस में आयात किए जाने वाले सामानों में कुछ ऐसे हैं जिनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। वे खास तौर पर पर्यटन सेक्टर का जिक्र करती हैं। एक ऐसा उद्योग जो विदेशी मुद्रा तो कमाता है लेकिन साथ ही आयात से जुड़ा काफ़ी खर्च भी करवाता है। होटल बनाने से लेकर रोज़मर्रा के कामकाज तक इस्तेमाल होने वाले सामानों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। इसलिए मनीषा दुकोनी के अनुसार संरचना के स्तर पर ही बदलाव की आवश्यकता है। वे इस बात पर जोर देती हैं कि समस्या मात्र आयात तक सीमित नहीं है बल्कि मॉरिशस के निर्यात को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे, न्यायिक क्षेत्र में असाइज़ अदालत के स्तर पर सजा सुनाए जाने के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 54 के मुकाबले 2025 में 104 लोगों को सजा सुनाई गई, खासकर ड्रग से जुड़े अपराधों के लिए। ये जानकारी न्यायपालिका की 2025 की सालाना रिपोर्ट में सामने आई है, जो कुछ दिन पहले ऑनलाइन प्रकाशित हुई है। 2025 में देश की अलग अलग अदालतों में 92,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। लवीना सूफी, गीता सरन।
0: रिपोर्ट के अनुसार 2025 में मॉरिशस की अदालतों में 92,649 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में ये संख्या 88,586 थी, यानी मामलों में 4.6% की बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर 2025 तक 70,259 मामले अभी भी लंबित थे। एक साल पहले इन मामलों की संख्या 66,919 थी, यानी 2024 और 2025 के बीच इन मामलों में 5% की बढ़ोतरी हुई। असाइज़ अदालत में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराए जाने के मामले 30 से बढ़कर 63 हो गए। वहीं हत्या के मामलों में दोष सिद्धि की संख्या 7 पर ही रही। इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन यानी FCD में 2025 में 74 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में ये संख्या 60 थी। इसी दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या 58 से घटकर 46 हो गई। इसके चलते न निपटाए गए मामलों की संख्या 148 से बढ़कर 176 हो गई। तलाक के मामलों में 2025 में 3,129 आवेदन दाखिल किए गए, जो 0.6% की मामूली कमी है। निपटाए गए 3,358 मामलों में से 89% मामलों में तलाक का फैसला सुनाया गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 44.1% तलाक आपसी सहमति से हुए, वहीं 64.8% मामलों में दंपति के एक या कोई भी बच्चा नहीं था।
1: आने वाले कुछ महीनों के दौरान एल नीनो घटना के और तेज होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में मॉरिशस इलाकाई जलवायु पर इनके संभावित प्रभाव की बारीकी से जांच कर रहा है। संदर्भ में गुरुवार को रोजिल में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में जलवायु परिवर्तनशीलता पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये पहल मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट की रही, जिसके लिए इंस्टीट्यूट फ्रांसिस डी मॉरिस का सहयोग रहा। मकसद रहा उन घटनाओं को बेहतर समझना जो जलवायु पर असर डालती हैं और खासकर पानी, खेती, मछली पालन और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर इनके नतीजों का अंदाजा लगाना। मौके पर उपस्थित कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार हालात के अनुसार ढलने की

0: बात अब अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने शोधकर्ताओं, संस्थानों, किसानों और मछुआरों को साथ लेकर प्रयास करने की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रेसिजन फार्मिंग और नई तकनीकों की संभावनाओं पर भी बल दिया। शैलिनी अबन, आस्था गोविंद।
1: Chaque fois, nous adaptations, mitigation, etc. Au fin de trouver que finalement, Tibet et Kathmandu.
2: कृषि सेक्टर में बदलाव अब जरूरी हो गया है। इसी वजह से खेती में AI और ड्रोन जैसी नई टेक्निकों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि खेतों में ज्यादा सटीक तरीके से काम किया जा सके। रीनियन के रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर इस दिशा में अध्ययन किया जा रहा है। फ्रांस के साथ भी सहयोग जारी है, खासकर गन्ने की नई किस्मों और खाद्य फसलों को लेकर। इसके साथ किसानों को खेतों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पदार्थों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किसानों में सही तरीके के अपनाने की आदत विकसित करना जरूरी है, क्योंकि कृषि और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में कोई खतरा नहीं लिया जा सकता।
0: मॉरिशस में बारिश की मौजूदा कमी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के जरिए पानी के जिम्मेदार इस्तेमाल और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। गुरुवार को जोन 4 के 5 स्टेट सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों ने वाकुआ में सतत विकास पर आधारित एक वैश्विक शैक्षिक परियोजना के नतीजे प्रस्तुत किए। ग्रीन हाउस, सब्जियों के बगीचे, कंपोस्टिंग, बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम और स्थानीय तथा औषधीय पौधों वाले बगीचे। कुछ 155 छात्रों ने 3 महीने के अंदर अंदर 32 प्रोजेक्ट डिजाइन करके तैयार किए। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को सब्जियां उगाना और पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाना सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ये पहल देश के चारों एजुकेशनल जोन्स तक बढ़ाई जाएंगी। उनसे बात की शैलिनी अबन ने, विवरण गीता स्नरण का।
3: Avec le soutien de Mauritius Telecom, nous pouvons inculquer nos valeurs dans nos enfants.
4: हम sustainable development की बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह स्कूलों में मॉरिशस टेलीकॉम के सहयोग से बच्चों को मूल्य सिखा रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और एक उपाय है कि किस तरह वे पौधे जमीन में लगा सकते हैं और अपने स्कूल के पर्यावरण को सुंदर कैसे बना सकते हैं। हमेशा शिक्षा जोन में प्रतीकात्मक रूप से गतिविधि चलाते हैं और अन्य 4 जोन में तथा रोड्रिग्स में भी इसे दोहराते हैं।
0: आपने जरूर महसूस किया होगा कि हमारे इलाके पर कल से तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऋतु विज्ञान केंद्र की तरफ से मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है, जो सोमवार 31 अगस्त सुबह के 10 बजे तक बरकरार रहेगी। इन 2-3 दिनों के लिए मौसम कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं मौसम विभाग की तरफ से मुनिया शांताली के साथ।
5: Et l'avertissement est valable jusqu'à lundi à 10h. Et donc les conseillers peuvent être très prudents. C'est sûr que ce ban rafale qui nous cavave et n'a qui cavave arrive jusqu'à 90 km pour heure dans certains endroits. Et nous avons aussi un avertissement de forte houle, de la ban gros la houle, qui peut influencer l'état de la mer dans les parages des Mascareignes. Donc ban la houle de 4 à 6 mètres qui est capable même atteindre ban la côte, surtout dans ban région du sud et de l'ouest, et capable même faire ban ras de marée. Donc il est conseillé pour ne pas sortir en mer. Et aussi pour éviter avant de se faire la plage là, surtout dans le domaine de marée haute. Et sinon, ça en termes de temps même, donc ce sera de la pluie pour le moment. Ben, la pluie qui n'est pas pour beaucoup en termes d'intensité, mais toujours parfois, ben, je peux traverser dans les alizés de l'anticyclone, et ça pour donner quelques pluies. Et surtout à l'est, au sud et sur les hauteurs. Vous sous l'effet de l'anticyclone jusqu'à au moins en début de semaine. Donc nous portons toujours de la pluie à ce moment-là, surtout le banc versant au vent et sur les hauteurs de l'île. Mais dans le secteur de l'ouest et du nord aussi. Donc pour le moment, nous pouvons quand même une percée de soleil.
0: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंच गई है, जबकि लापता हुए लोगों की तादाद 2400 पार कर गई है। इनमें 500 से ज्यादा विदेशी मूल के लोग बताए जाते हैं। राहत कार्य जारी हैं। भारत की तरफ से 50 टन मूलभूत सामान और दवाइयों का कंसाइनमेंट भेजा गया है।

आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है जो सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज

हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है, खासकर ऊंची जगहों पर न जाएं और गाड़ी चलाते हुए सड़कों पर क्रॉसविंड्स वाली जगहों पर खास सतर्कता बरतें। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन तटीय इलाकों तथा समंदर तटों पर भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:21 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6 बजे सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ ने कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया कि मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए शागस मामले को आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री पर समझौता लागू करने का दबाव बनाए रखने का प्रयास करेगा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार इस साल की प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए का रहा, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा। न्यायिक क्षेत्र में असाइज़ अदालत के स्तर पर सजा सुनाए जाने के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 54 के मुकाबले 2025 में 104 लोगों को सजा सुनाई गई, खासकर ड्रग्स से जुड़े मामलों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंची। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फिजान हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शुभ समाचार सुनिए। दुकान लेन मौगाविये बोबा सैमी, दुकान लेन मौगाविये बोबा सैमी 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड जनाब हुसैन तिगाली, जनाब हुसैन तिगाली जो हुसैन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन की साढ़े ग्यारह बजे इनके मकान दुकान लेन मौगाविये बोबा सैमी से उठाकर पहले नमाजी जनाजा के लिए पोर्ट लुई की जमा मस्जिद ले जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 11:30 AM। डिस्पेंसरी रोड थ्रियोले में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड श्री जितेंद्र दुलब जो पाम मौशदालपोरी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान डिस्पेंसरी रोड थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रिजर्वर रोड कॉन्फुक्रो फिनिक्स में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती यशोदा ननलोल पैदाशी नाम बिसुनत जो आन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के एक बजे इनके पति श्री ज्ञान ननलोल के मकान रिजर्वर रोड कॉन्फुक्रो फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्फुक्रो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रिवरसाइड रोड लालोरा सैंपिया में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड श्री रोहित लखमन इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज सुबह दस बजे इनकी पत्नी श्रीमती राजमती लखमन के मकान रिवरसाइड रोड लालोरा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंस्तान सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM।

0: अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में, अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 95 साल के 95 ईयर्स ओल्ड श्री हरिलाल कोयलेसा, श्री हरिलाल कोयलेसा जो मौसंदालपुरी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे, इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी पत्नी श्रीमती सती कोयलेसा के मकान अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागुज गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुकड़े 8:01 PM। नंबर 11 सेंट जेम्स स्ट्रीट पोर्ट लुइस में, नंबर 11 सेंट जेम्स स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बिदवंती स्वंबर, श्रीमती बिदवंती स्वंबर पिताजी नाम रामदोस, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे रॉयल रोड बुबासें के एलियन सन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। बुआशेरी मोका में, बुआशेरी रोड मोका में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती विद्यावती रामा, श्रीमती विद्यावती रामा पैदाइशी नाम एगतसामी जो विवेक नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे के मकान बुआशेरी रोड मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। अंग्रे काटन बिस्नाथ लेन ओकुले में, अंग्रे काटन बिस्नाथ लेन ओकुले में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड श्री पदुमन लल जवाहिर, श्री पदुमन लल जवाहिर जो सुरेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे की पत्नी श्रीमती बीना लल जवाहिर के मकान अंग्रे काटन बिस्नाथ लेन ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 9 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
2: Cup Limited qui trouve à Rivière-du-Poste, paie recrute maçon grade 2, welder grade 1 avec certificat in welding, tonneur grade 1, certificat in tonneur, man candidat intéressé. Bise un téléphone au 52 59 61 76, date butoir le 31 août 2026. TCH Interiors Limited qui trouve à Canfoucro, paie recrute helper avec forme 3 SI, avec ou sans expérience. Carpenter NTC3 in Carpentry, cabinet maker, avec un minimum de 2 ans d'expérience. Ban candidat intéressé, vous êtes capable d'envoyer votre CV par WhatsApp, l'eau 52 55 08 69, date butoir le 30 septembre 2026. Mechanization of Nagan Limited, qui trouve à Mocap et recrute welder de 2 à 5 ans d'expérience. Welder Fabricator, 2 ans à 10 ans d'expérience. Ban candidat intéressé, bisan sur place à la route royale, Montagnerie à Mocap. Ou the téléphone sur le 57 71 35 12 ou 433 21 90. Date butoir, le 17 septembre 2026. SAV Garments Limited, qui trouve à Montagne Blanche, paie recrute Shoeing Machine Operator avec un minimum d'un an d'expérience. Ban candidat intéressé, bise un téléphone lourd 57 56 40 07, date butoir le 30 août 2026. Eclipse Transport Co. Limited, qui trouve à Cottage, paie recrute Field Crop Laborer avec ou sans expérience. Ban candidat intéressé, bise un téléphone sur le 52 56 22 75, date butoir le 31 août 2026. Square Deal Multipurpose Cooperative Society Limited, qui trouve à Goodlands, paie recrute Mechanic Construction Machinery avec 3 ans d'expérience. Ban candidat intéressé, bise un envoie votre CV par email, lo chavran at squaredealmcs.com.

0: www.lesmusicalesdu-rock.com, date butoir le 31 août 2026. Mahatma Gandhi Institute qui trouve un mocap et recrute accountant avec ACCA, accounts clerk HSE et certificat in booking level 2, word processing operator avec HSE. Ben candidat intéressé, bisous, télécharge l'application sur le site www.mgirti.ac.mu, date butoir le 31 août 2026. Une famille privée qui trouve à Rivière-du-Rempart et recrute carer et housemaid. Bonne candidate qui intéressée téléphone le Employment Information Center à Rivière-du-Rempart sur le 412 69 25. Une famille qui trouve à Uppervale et recrute household employee. Bonne candidate qui intéressée téléphone le Employment Information Center à Goodlands sur le 282 59 17 ou 282 59 18. Une famille privée qui trouve à Curepipe et recrute babysitter. Bonne candidate à qui intéressée, bien téléphone le Employment Information Center à Curepipe sur le 675 11 15 ou 673 71 30. Merci à tous.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
2: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। महलों में भी सीटी बजती है, इस बार केवल सीटी नहीं ढोल बाजा शहनाई भी। 4-1 के भारी स्कोर पर मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को चकनाचूर किया। सिटी के लिए रायन चर्की का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा, जादूगरी प्रदर्शन कहा जा रहा है। चर्की का डबल, गोल स्कोरिंग मशीन अर्लिंग अलोन का भी डबल रहा। क्रिस्टल पैलेस का गोल एक ऑन गोल रहा गोलकीपर डोनाभूमा का। नया मैनेजर एंजो मारेस्का बहुत खुश हुआ, लगातार दूसरी जीत और वो भी स्टाइल में। क्रिस्टल पैलेस की दूसरी हार मतलब अभी के लिए मैनचेस्टर सिटी लीग लीडर और क्रिस्टल पैलेस सबसे नीचे अंतिम पोजीशन पे। आज के मैच इस प्रकार हैं। अर्ली किक ऑफ अनफील्ड रोड में लिवरपूल नॉटिंघम फॉरेस्ट का स्वागत करेगा। 3:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, 3:30 किक ऑफ। उसके बाद बोर्नमुथ एवर्टन, कोवेंट्री सिटी हल सिटी, टोटनहम हॉटस्पर न्यूकासल यूनाइटेड, ये आज रात 8:30 बजे 8:30 किक ऑफ है। कल के मैच संडे फिक्स्चर, चेल्सी ब्राइटन, लीड्स यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड, संडरलैंड वर्सेस फुलहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्राफर्ड में होगा इप्सविच टाउन के खिलाफ 7:30 बजे 7:30 किक ऑफ। मंडे मैच एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख की धुआंधार एंट्री, 5-1 से बायर्न म्यूनिख ने स्टुटगार्ट को पछाड़ा। उपामेकानो, ओलिजे, जियाज पावलोविच के साथ एक ऑन गोल भी रहा। इस्माइल साइबाही जिसने अपना पहला मैच खेला उसकी ओर से 3 असिस्ट रहे। फ्रांस में पारिस सेंट जर्मेन बाल बाल बचा, लील 2-0 से लगभग पारी को लील गया था, पर इंजुरी टाइम में 4 मिनटों के अंदर अंदर पारिस सेंट जर्मेन की लाजवाब एंट्री यानी उसका कमबैक, विटिन्हा और मार्किनोस पारिस सेंट जर्मेन को डूबने से बचा पाए। पारिस सेंट जर्मेन के लिए ये दूसरा ड्रॉ है, पिछले मैच में भी यही कहानी थी। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में रेक्साम 1 बर्मिंगम 2 और स्पेन के लालीगा में रेसिंग सांतोंदे 3 एल्चे 2 अलावेस 1 विलारियल 0। फ्रांस न्यूज, ट्रांसफर बाजार बंद होने में अब केवल 3 दिन रह गए हैं। ब्राडली बाकोला लिवरपूल में अभी ले नई आलबा यानी अभी तक नहीं आया है। बाहें फैलाए, हाथ पसारे, बेसब्री से लिवरपूल में बाकोला के आने का इंतजार किया जा रहा है, राह देख रहे हैं, पर अब तक केवल इन प्रिंसिपल कुछ ठोस नहीं है। उधर एस्टन विला पारिस सेंट जर्मेन से इब्राहिम एम्बाये को साइन करने जा रहा है, दाम लगभग 47 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। लिवरपूल ने भी एम्बाये को बाय करने का इरादा रखा था। एम्बाये केवल 18 साल का है, विला में उसका भविष्य उज्जवल होने वाला है। एस्टन विला एसी मिलान से राफा लियाओ

0: को साइन करना चाहता था, पर लियाओ गलातासराय में चला गया। यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के ड्रॉ कल निकाले गए। यूरोपा लीग में प्रीमियर लीग से संडरलैंड, बोर्नमुथ और क्रिस्टल पैलेस हैं। संडरलैंड के ग्रुप में है एजेड अल्कमा, एसी मिलान, डिनामो अंडरलेक्ट, यागेलोनिया, लेच पोजन और लेवस्की सोफिया। बोर्नमुथ के ग्रुप में है एसी मिलान, रियल सोसिएदाद, विक्टोरिया प्लाजेंस, स्पार्टा प्राग, स्टुमकास, सेल्टा वीगो, अपोएल बेयर्शेवा और लिल स्ट्रोम। क्रिस्टल पैलेस के ग्रुप में रियल सोसिएदाद, लियोन, स्पार्टा प्राग, साल्सबर्ग, लेच पोजन, यागेलोनिया, होफेनहाइम और बेसिक्टास। कॉन्फ्रेंस लीग में ब्राइटन है और ब्राइटन के साथ होगा मोनाको, पनाथिनाइकोस, खायोवा, गेताफे, काउनोस, अल्गीरिस, याब्लोनेक। यूरोपा लीग में सभी टीमें 8 मैच खेलेंगे, 4 होम 4 एवे, जबकि कॉन्फ्रेंस लीग में 3-3 मैच खेले जाएंगे, 3 होम 3 एवे, और इसी तरह क्वालिफाई होंगे नॉकआउट राउंड के लिए। क्रिकेट, इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच में अभी द थ्री लायंस की दूसरी इनिंग्स चल रही है। पहले बैटिंग करके इंग्लैंड 290 पर ऑल आउट हुई, फिर पाकिस्तान को केवल 110 रन पर साफ किया। अभी इंग्लैंड 3 विकेट खोकर 81 रन पर खेल रही है। पाकिस्तान पर 261 रन लीड। आज तीसरे दिन का खेल होगा। विमेंस एशिया कप कल से शुरू हुआ। दुबई में थाईलैंड ने हांगकांग को हराया। आज यूएई वर्सेस श्रीलंका और कल टीम इंडिया की एंट्री होगी थाईलैंड के खिलाफ। ये महिला एशिया कप है। मॉरिशस में आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 के 5वें सप्ताह में आज 1 बजे एएमजी पैंथर्स वर्सेस टोमास कुक टाइगर्स, फिर कल 9 बजे एपीपी लियोपार्ड्स वर्सेस वन हेल्थ जगुआर्स, और कल 1 बजे कॉन्टिनेंटल चीताज वर्सेस टोमास कुक टाइगर्स। साइकिलिंग, किमले कुपियना इस बार क्लासिक लोरियों में भाग लेगी। ब्रिटेन टू जीतकर आज फ्रांस में क्लासिक लोरियों में आएगी, ये भी वर्ल्ड टू का हिस्सा है। मॉरिशस में ही क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल लेवल पर कोइराची विलेज काउंसिल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। इस संडे को रोशनुआ टूर्नामेंट में सतानिक रोशतेया का मुकाबला ओलंपिक भामस्तान से, मोसेलमा सेंट एंड्रे में सैटरडे रोवर्स फुटबॉल क्लब की ओर से गला मैच वेटरन कैडेट्स के खिलाफ, ये भी इसी रविवार को, इसी संडे को मोसेलमा सेंट एंड्रे मैदान में। सेंट जूलियन डुटमो में जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब की 60th एनिवर्सरी के लिए आज सैटरडे शनिवार को जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब मल्टी जिम और नए पेटांग बुलोद्रोम की ओपनिंग होगी, और अवार्ड सेरेमनी भी 4 बजे से जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब में। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: Ministry of Labour and Industrial Relations और MBC के मिलर जुलर सहयोग से प्रस्तुत बाटे नू ट्रावाय नू लावेनिया कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में कप लिमिटेड जन रॉयल रोड रिवियर जो पोस्ट में पावल जाला एगो मासों ग्राड दे खोजाता एगो वर्ल्ड ग्रादन जिकर वर्ल्डिंग में सर्टिफिका बाटे और एगो टर्नर ग्राड एन जिकर सर्टिफिका बाटे टर्नर में। Application carré khatir téléphoner carrière 52 59 61 76. Application carré ke antim tarikh 31 mani ki 31 août 2026. Manufacturing ke secteur mein TCH Interiors Limited John Royal Road Kanfo Chrome Powell Jala ego helper khojata jekar form 3 sange SC bate aur l'expérience hoy ke nai hoy kono fark nai bate. साथ में खोजाता एगो शॉपेंटिये जेकर एनटीसी 3 बाते टॉप एंट्री और कैबिनेट मेकर में और चाहेला दुबारा स्किल एक्सपीरियंस। एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी हा team@tcashinteriors.com न तो व्हाट्सएप करिया ई नंबर पर 52 55 08 69। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में मेकनाइजेशन ऑफ नागन लिमिटेड जन रॉयल रोड मोतायोरी मोका में पावल जाला एगो वर्ल्ड अखो जता जेकर 2 से 5 बरिस के

0: एक्सपीरियंस बाटे और एगो वेल्डर फैब्रिकेटर जेकर दूसरे 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे आपरी कासो करे खातिर हौजे पहुंच जाइया जे जस्ती जानकारी खोजबा त टेलीफोनी करिया 57 71 35 12 न त 433 21 90। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 17 सितंबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में SAV गार्मेंट्स लिमिटेड जन हेल्थ सेंटर रोड मोटाई ब्लॉश में पावल जाला एगो सुविंग मशीन ऑपरेटर खोजता जेकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 77 76 4007। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 अगस्त 2026। एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक्लिप्स ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड जो टेम्पल रोड कोटेज में पावल जाला एगो फील्ड क्रॉप लेबर खोजता जेकर एक्सपीरियंस नताजी नहीं हो कोनो प्रॉब्लम नहीं बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनी करिया 52 56 22 75। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2026। जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टर में स्क्वायर डील मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जो CB रोड गुडलैंड में पावल जाला एगो कंस्ट्रक्शन मशीनरी मैकेनिक खोजता जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है shravan@squaredealmcs.com न त टेलीफोनी करिया 283 77 77 न त 59 85 74 25। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2026। एजुकेशन सर्विस के सेक्टर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो महात्मा गांधी रोड मोका में पावल जाला एगो अकाउंटेंट खोजता जेकर आसेसिया बाते एगो अकाउंट क्लर्क जेकर HSC संगे बुक कीपिंग लेवल 2 में एगो सर्टिफिका बाते और खोजता एगो जनरल वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेटर जेकर HSC बाते एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर दी है www.mgirti.ac.mu। जस्ती जानकारी खोजबा तो टेलीफोनी करिया 403 2027 न 57 68 51 99। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2026। प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में एगो केयरर कम हाउसमेट के खोज बाते ऊ भी प्लेन दे रोश रिवियर डुरांपोर के रीजन में एप्लीकेशन करे खातिर रिवियर डुरांपोर EIC टेलीफोनी करिया ई नंबर पर 412 69 25। अपरवेल के रीजन में एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉय के खोज बाते एप्लीकेशन करे खातिर गुडलैंड्स EIC टेलीफोनी करिया ई नंबर पर 282 59 17 नतो 282 59 18। क्यूपिप के रेजो खातिर एगो बेबी सीटर के खोज बाटे एप्लीकेशन करे खातिर क्यूपिप EIC टेलीफोनी करिया 675 1115 न 673 71 30। और कैटरबोन के रेजो खातिर एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉय के खोज बाटे त एप्लीकेशन करे खातिर कैटरबोन EIC टेलीफोनी करिया 427 44 39 463 62 40। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाय नू लावेनिया।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस सुबह के 7:10 हो रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। अभी जी सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। बुआशेरी ग्रांड बुआ ले ग्रांड रोड और NHC ग्रांड बुआ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 30 अगस्त को दिन के 9 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। क्यूपिप लुक्रेजियो स्ट्रीट हिगिनसन स्ट्रीट हजारी सिंह स्ट्रीट और जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 29 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फॉरेस्टसाइड रेजिडेंस सैंडलुक एम्पास बू और जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल 30 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाए।

0: जाएगी। और फोरेसाइड बू लेन और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 30 अगस्त को दिन के 10 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और पेरेबेर आलिजी वेजेरो दे पेरेबेर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 30 अगस्त को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। इसी बीच सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: चिड़िया चहचहा रही है और धूप मुस्कुरा रही है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है। वाह, क्या मौसम है, सावन का महीना। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, ये है रेडियो मॉरिशस। वेलकम इन द सेकंड आवर। सुबह का नजाना प्रोग्राम अभी से 9 बजे तक चंद प्यारे प्यारे गीत, लवली म्यूजिक और ढेर मीठी मीठी बातें आप लोगों के साथ। और आज है शनिवार का दिन, 29 अगस्त 2026। और अगर आज आपका जन्मदिन है सो हैप्पी बर्थडे, बॉन एनिवर्सरी, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमारी ओर से। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द राइजर्स जो अभी अभी नींद से जागे है, बस गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको और आशा करते हैं कि आज की मॉर्निंग एकदम गुडी गुड हो। और जब मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी होती है तो दिन भी अच्छी तरह से बीतता है। और हम जानते हैं कि बहुत ठंड हो रही है, जहां तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। ये सब एक एंटी साइक्लोन की वजह से है जो मॉरिशस के दक्षिण में है, मास्करेन आइलैंड्स के प्रभाव के। और यह मौसम ऐसा ही रहेगा, भीगा भीगा मौसम, ठंड का मौसम मंडे तक। मंडे के बाद मौसम में सुधार आ सकता है। ऑलराइट, सो इस वीक, दिस वीकेंड विल बी क्वाइट चिल्ड वीकेंड। जी हाँ, ठंडी ठंडी हवाओं का असर। सो गर्मा गर्म कपड़े पहने और अपने आप को सुरक्षित रखे। और समुंदर जाना मना है, आपको पता है ना, क्योंकि मॉरिशस में जो है ऊंची लहरों की चेतावनी है और ज़ोरदार हवाओं की चेतावनी भी है। सो बी वेरी केयरफुल। और जितने दोस्त इस समय ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते पर है और हमें सुन रहे हैं, सो प्लीज़ ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली एंड बी वे ऑफ क्रॉसविंड्स। ऑलराइट, और बेशक शनिवार का दिन है, सो बहुत से लोग आज घर पे रहेंगे, कुछ लोग घर की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग शायद घूमने जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, जो भी कीजिएगा स्टाइल में कीजिएगा, स्टाइल में जीने का, स्टाइल में रहने का, सभी का अपना अपना स्टाइल होता है। और बेशक बहुत से लोग इस समय हमें रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं, थैंक यू जी हमें देखने के लिए, सो स्वीट ऑफ यू। डेडिकेशन टाइम विल बी नॉट नाउ, इट विल बी 8 o'clock के बाद। ऑलराइट, सो शनिवार का दिन है और ऐसे में रेडियो मॉरिशस की लहरों पर सभी का स्वागत है। MBC रेडियो मॉरिशस आप ही लोगों का नंबर 1 रेडियो स्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम को आज के चिंतन के साथ।
2: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
3: शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देती है और संस्कार कभी गिरने नहीं देते हैं।

दो दिन की जिंदगी है और क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, कुछ भी तो नहीं लेकर आए थे तो क्या लेकर जाएंगे। ये जिस शरीर पर हम इतना गुरूर करते, घमंड करते, गुमान करते,

शरीर तो अपना नहीं, पांच तत्वों से बना है शरीर और अंत समय में पांच तत्वों में मिल जाता है, फिर काहे का घमंड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

हाँ ये बात तो 100% सच है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कुछ लोग कहते हैं मौत के बाद आत्मा यहाँ से निकल के वहाँ जाता है या ये वो, पर वास्तविकता आज तक कोई नहीं जान पाया है। वो ही जानता है जब मरता है तो उसे ही पता चलता है कि क्या होता है। पर जब तक हम जीते हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, हमें अच्छा काम करना चाहिए। ये बड़ों ने हमें हमेशा यह बात सिखाई है और हम भी लोगों से मांग करते हैं कि जहाँ तक हो सके अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो भगवान हम पर अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। और हर किसी का अपना स्टाइल होता है, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग वन सेल्फ, कपड़े पहनने का स्टाइल, बालों का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, सभी का अपना स्टाइल होता है। एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट वन एंड ऑल, राइट। ये नहीं कि अगर आप ज़्यादा अच्छा करते हैं तो जो अच्छा नहीं करता है आप देखकर उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, दैट्स रियली बैड। मैंने देखा है मॉरिशस में, मैंने देखा है कि कैसे लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं हैं, बट इट इज़ वेरी रॉन्ग। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी का अपना स्टाइल है, सभी का अपना तरीका है बात करने का, कपड़ा पहनने का, कुछ करने का, है कि नहीं। सो एवरीवन इज यूनिक इन हिमसेल्फ, ऑलराइट। नेवर जज समवन, ऑलराइट। किसी को जज ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। चलिए सुनते ही गाना, फिल्म का नाम है वीर ज़ारा।

सिलसिला ये चाहत का यूं ही बरकरार रहे, और दिल में अगर चाहत ना हो तो वो दिल नहीं, वो तो पत्थर है। पत्थर है वो इंसान नहीं जिसमें किसी के लिए चाहत ना हो, मोहब्बत ना हो। दिल तो प्यार से भरा होता है, मोहब्बत से भरा होता है, है कि नहीं? और जब दो प्यार करने वाले बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, आहा क्या समा होता है, उस मोमेंट को जी लेते हैं। क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब एक दूसरे को प्रेमी मिलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाय कम से कम उनसे मुलाकात तो हुई।

0: श्योति, देवदास आ रहा है। तुझे क्या क्या बताओ, क्या क्या तैयारियां चल रही है वहां पर। दीदी तो जैसे पागल हो गई है और सारी हवेली तो खुशी से झूम उठी है। और अरे ये क्या पगली, तू रो रही है? कहीं ये खुशी के आंसू देव के आने से पहले इस दिए को बुझाना दे।
1: नहीं माँ, दुनिया की कोई भी शक्ति इस दिए को नहीं बुझा सकती।
2: उड़ी बाबा, जरा हम भी तो देखे कितनी शक्ति है इस दिए में।

कितना अच्छा लगा इस गीत को सुनकर ना, इस गीत के जो शब्द है, इस गीत का जो म्यूज़िक है, जो सुर है, जो ताल है, सिलसिला, ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, सिलसिला की चाहत को आप भी बुझने मत दीजिएगा, हम भी इसे बुझने नहीं देंगे, ये आपसे हमारा वादा रहा। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा क्लासिकल म्यूजिक पर ढला एक बहुत ही प्यारा सा गाना रहा है। आई होप यू गेट टू एन्जॉय दिस सॉन्ग। भूल भुलैया फिल्म का गाना है, सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी मूवी, अक्षय कुमार एंड विद्या बालन। और विद्या बालन ने क्या डांस किया है, क्या ठुमकी लगाई है। अगर आप भी ठुमकी लगाना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार, चलिए रेडियो मॉरिशस पर हम भी ठुमके

हाय क्या गाना था, हम तो दीवाने हो गए इस गीत के। सुबह का नजरा प्रोग्राम का पहला भाग यहीं पर समाप्त होने को आया है। जब चली ठंडी हवा दो बदन फिल्म का गाना, यस ठीक पौने 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सरोवर कार्यक्रम। उसके बाद 8 बजे भोजपुर में समाचार शोक समाचार भरे जाएंगे। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी रेडियो मॉरिशस पर और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। सुनते रहिए, देखते रहिए हमें रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर और रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

जहां गन्ने के खेतों में केवल फसल नहीं बल्कि पीढ़ियों का इतिहास उगता है, जहां मजदूर के पसीने में संघर्ष की कहानी लिखी जाती है, जहां गिर मिट्टियां अतीत की पीड़ा शब्दों में जीवित हो उठती हैं, वहीं से उठती हैं एक आवाज, एक ऐसी आवाज जिसने मॉरिशस की धरती को विश्व हिंदी साहित्य में पहचान दी। वह आवाज थी अभिमन्यु अनंत की। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान सरोवर। आज की यह विशेष कड़ी समर्पित है मॉरिशस के महान हिंदी साहित्यकार अभिमन्यु अनंत को। अभिमन्यु अनंत जी मॉरिशस के प्रमुख हिंदी साहित्यकारों में से एक हैं। उन्होंने अपने विपुल साहित्य सृजन के माध्यम से मॉरिशस के गिरमिटिया इतिहास, गन्ना मजदूरों के जीवन, सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण, सांस्कृतिक पहचान और बदलते मॉरिशसीय समाज को हिंदी साहित्य में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, यात्रा वृतांत और पत्रकारिता सहित साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन किया। उनकी साहित्यिक यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण रही। उन्होंने लगभग 14 वर्ष की आयु में लेखन आरंभ किया और मजदूर, बस कंडक्टर तथा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य

कार्य करते हुए साहित्य सृजन जारी रखा। बाद में वे महात्मा गांधी संस्थान में रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशन विभाग के प्रमुख तथा व्याख्याता रहे। उन्होंने रिमझिम और वसंत जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रकाशन में भी योगदान दिया। उनकी प्रसिद्ध कृति लाल पसीना ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई और

0: विकार विशेषज्ञ डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने उन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा। उन्हें विश्व हिंदी सम्मान, डॉक्टर जॉर्ज गृहसन पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार, राजीव गांधी मेमोरियल पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी फेलोशिप जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। तो आइए अभिमन्यु अनंत के इसी समृद्ध साहित्यिक संसार को थोड़ा और करीब से जानें। इस साहित्यिक यात्रा में हमारा साथ देंगी हिंदी की एक अप्रतिम सेविका डॉक्टर वर्षा कालीचरण भगीरथ। वर्षा जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर वर्षा भगीरथ कालीचरण दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज की स्नातक हैं और उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। पिछले 18 वर्षों से न्यू एजुकेशनल कॉलेज में हिंदी शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनकी गहरी रुचि लेखन के क्षेत्र में दिखाई देती है। वे HSC पाठ्यक्रम की हिंदी पुस्तक की लेखिका हैं। आइए अभिमन्यु अनंत जी की कलम की उस यात्रा पर चलें जहां इतिहास है, संघर्ष है, समाज है और सबसे बढ़कर मॉरिशस की मिट्टी की अपनी आवाज है। सबसे पहले वर्षा जी, जब भी हम अभिमन्यु अनंत जी का नाम लेते हैं तो मॉरिशस की हिंदी साहित्य का एक पूरा संसार हमारे सामने उभर कर आता है। आखिर वह कौन सी विशेषता थी जिसने उन्हें मॉरिशसीय हिंदी साहित्य का इतना महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्वर बना दिया?
1: अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस हिंदी साहित्य का सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्वर बनाने वाली मुख्य विशेषता उनकी रचनाओं में गिरमितिया मजदूरों की पीड़ा और अस्मिता का जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने केवल साहित्य नहीं लिखा बल्कि मॉरिशस के खेतों में खून पसीना बहाने वाले भारतीय प्रवासियों के इतिहास और संघर्ष को वैश्विक पहचान दी। और उनकी प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं हैं गिरमितिया इतिहास का दस्तावेजीकरण, शोषितों और मजदूरों की आवाज़, हिंदी भाषा के प्रति अटूट समर्पण, सांस्कृतिक चेतना और जड़ों से जुड़ना तथा उनके अद्भुत रचनात्मक विविधता।
0: कहा जाता है कि अभिमन्यु अनंत ने अपनी कलम में मॉरिशस के गन्ने के खेतों, मजदूरों और आम जनजीवन की धड़कनों को शब्द दिए। उनके साहित्य में मॉरिशस के जन्म जीवन की यह उपस्थिति किस रूप में दिखाई देती है?
1: जी हाँ, अभिमन्यु अनंत के साहित्य में मॉरिशस का जनजीवन किसी काल्पनिक कहानी की तरह नहीं अपितु गन्ने के खेतों की मिट्टी, मजदूरों के पसीने और उनकी सांसों की असली धड़कन बनकर धड़कता है। उन्होंने मॉरिशस के समाज के यथार्थ को अपने रचनाओं में पूरी सच्चाई के साथ उतारा है। उनके साहित्य में मॉरिशस के जनजीवन की उपस्थिति साफ दिखाई देती है। सर्वप्रथम खून पसीने का सजीव चित्रण। उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जैसे अभी आपने बताया लाल पसीना में गन्ने के खेत केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है अपितु शोषण के प्रतीक है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे भारतीय मजदूरों के खून और पसीने से मॉरिशस की धरती को सींचा गया। फिर अमानवीय शोषण के विरुद्ध आवाज़, उनकी रचनाओं में कोरों की मार, जमींदारों का अत्याचार और असहनीय गर्मी में भी काम करते रहने वाले मजदूरों की चीखें और उनका मौन आक्रोश साफ सुनाई देता है। इसके अलावा जड़ों से कटी जिंदगी का दर्द, उनके उपन्यासों में भारत से दूर मॉरिशस में बसे आम लोगों की पहचान के संकट, जिसको हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं, उसको दिखाया गया है। लोग अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर गरीबी और अभाव, अनंत जी ने आम जन मानस की भूखमरी, बीमारी, झोपड़ियों की बदहाली और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते परिवारों के जीवन का सजीव

0: वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने भोजपुरी और मॉरिशसीय क्रियोली का प्रभाव, यानी कि उनकी हिंदी में मॉरिशस के लोक जीवन का रंग, उन्होंने हमारी स्थानीय बोली क्रियोल और भोजपुरी के शब्दों का बहुत ही सुंदर समन्वय किया, जिसमें यहाँ का आम आदमी अपनी बात को साहित्य में महसूस कर सकता है। इसके अलावा त्यौहार और सांस्कृतिक यादें, उनके उपन्यासों के पात्रों के माध्यम से मॉरिशस में मनाए जाने वाले भारतीय त्योहारों, गीतों और परंपराओं की जीवंत उपस्थिति दिखाई देती है, जो मजदूरों को जीने की शक्ति देती है।
1: अतः अभिमन्यु अनिरुद्ध जी को मॉरिशस का प्रेमचंद कहना उचित होगा
0: जी।
1: इस उपमा के पीछे उनके साहित्य की कौन सी विशेषताएं छिपी हैं और उन्होंने आम आदमी के जीवन को हिंदी साहित्य में किस प्रकार प्रतिष्ठित किया है?
0: अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की तरह उन्होंने भी राजा महाराजाओं या काल्पनिक कथाओं के बजाय समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े शोषित गरीब और मजदूर वर्ग को अपने साहित्य का नायक बनाया। उन्होंने प्रेमचंद की तरह अनंत जी की लेखनी में कोई बनावट नहीं थी। उन्होंने मॉरिशस के गन्ने के खेतों की कड़वी सच्चाई, बंधुओं, मजदूरों, गिरमितिया की लाचारी और जमींदारों के क्रूर अत्याचारों को उसी नग्न यथार्थ के साथ दिखाया जैसे प्रेमचंद ने गोदान या कफन में दिखाया था। साथ ही साथ प्रेमचंद ने भारतीय किसानों और दलितों के दमन पर अपनी आवाज़ उठाई, ठीक उसी तरह अनंत जी ने औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत मॉरिशस में बंधुआ भारतीय श्रमिकों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अपनी कलम को हथियार बनाया। भारत में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद को कथा और उपन्यास सम्राट के रूप में प्राप्त है, वही प्रतिष्ठा अभिमन्यु अनंत जी को मॉरिशस के हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास सम्राट के रूप में मिली है। और इसके अलावा प्रेमचंद की तरह अनंत जी ने भी बेहद गरीबी और अभावों के बीच जीवन जिया, लेकिन पद या धन के लालच को ठुकराकर हमेशा आम जनता के हितों को अपनी लेखनी के केंद्र में रखा।
1: आपने सही कहा कि अभिमन्यु अनंत के साहित्य में गिरमिटिया जीवन और उसकी पीड़ा एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में दिखाई देती है। उन्होंने गिरमिटिया समुदाय के इतिहास, संघर्ष और अस्मिता को साहित्य के माध्यम से स्वर प्रदान किया। उनकी एक ऐसी ही अद्वितीय कृति लाल पसीना है। लाल पसीना जैसी कृतियों ने अभिमन्यु अनंत को केवल मॉरिशस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हिंदी साहित्य में के व्यापक संसार में पहचान दिलाई। उनकी ऐसी कौन सी साहित्यिक विशेषताएं हैं जिन्होंने उनकी रचनाओं को मॉरिशस की सीमाओं से बाहर भी प्रासंगिक बनाया?
0: लाल पसीना जैसी काल जयी कृतियों के माध्यम से अभिमन्यु अनंत ने मॉरिशस की भौगोलिक सीमाओं को लांघकर वैश्विक हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट और स्थायी स्थान बनाया, क्योंकि उनकी रचनाओं में कुछ ऐसे सार्वभौमिक तत्व और साहित्यिक विशेषताएं थीं जिन्होंने उनके साहित्य को केवल एक द्वीप तक सीमित नहीं रहने दिया, अपितु उसे पूरी दुनिया के पाठकों के लिए प्रासंगिक बना दिया। सर्वप्रथम हम लोग लेंगे सार्वभौमिक मानवीय संवेदना, यानी कि पीड़ा और संघर्ष का वैश्विक रूप। अनंत जी ने भले ही मॉरिशस के मजदूरों पर लिखा, लेकिन भूख, दमन, गुलामी और आत्मसम्मान का संघर्ष पूरी दुनिया के शोषितों का साझा सच है। उनका साहित्य किसी भी देश के पीड़ित वर्ग की आवाज़ बन जाता है। साथ ही साथ अस्मिता की वैश्विक खोज, अपनी जड़ों से बिछड़कर किसी अनजानी धरती पर

0: अपनी पहचान और संस्कृति को बचाए रखने का जो द्वंद्व उनकी रचनाओं में है, वह आज के वैश्विक प्रवासी समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। और एक पूरे युग का इतिहास लाल पसीना केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह गिरमितिया प्रथा के क्रूर दौर का एक महाकाव्यात्मक दस्तावेज है।
1: आज जब हम अभिमन्युनत की साहित्यिक विरासत के पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो क्या यह कहना उचित होगा कि उन्होंने केवल साहित्य नहीं लिखा, बल्कि मॉरिशस के इतिहास, समाज और सांस्कृतिक स्मृति को हिंदी में सुरक्षित किया। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके साहित्य का क्या महत्व है?
0: आज की और आने वाली नई पीढ़ियों के लिए अभिमन्यु अनंत का साहित्य एक लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है, जिसमें कई गहरे मायने हैं। सबसे पहले जड़ों और अस्मिता की पहचान, फिर अदम्य जिजीविषा और प्रेरणा, साथ ही साथ भाषाई और सांस्कृतिक सेतु एवं वैश्विक प्रवासन। निष्कर्ष रूप से यहाँ पे कहा जा सकता है कि अनंत ने मॉरिशस की मिट्टी को अपनी कलम से जो मर्म दिया है, वह आने वाली सदियों तक फीका नहीं पड़ेगा। उनका साहित्य केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, अपितु यह मॉरिशस की आत्मा का वह आईना है, जिसे देखकर आने वाली हर पीढ़ी अपने अतीत पर गर्व करेगी और अपने भविष्य की दिशा तय करेगी।
1: प्रिय श्रोताओं, आज की हमारी साहित्य की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन अभिमन्यु अनंत की कलम की से निकली आवाज़ यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी रचनाओं में हमें केवल कहानियां और पात्र नहीं मिलते, बल्कि मॉरिशस की मिट्टी की खुशबू, गन्ने के खेतों की मेहनत, गिरमिटिया पीढ़ियों का संघर्ष और एक समाज की सपने की धड़कन सुनाई देती है। हम विशेष रूप से हमारे अतिथि वर्षा भगीरथ जी को विशेष आभार देते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे ज्ञान की एक नई धारा, साहित्य की एक नई कहानी और एक नए साहित्यिक व्यक्तित्व के साथ। नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घड़ी मिला ले जा फजर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गल फरवरी महीना में ट्रूथ सोशल नामक प्लेटफॉर्म पर ही बड़ा अक्षर में लिख ले रहलन जेगो गौसिया कि नहीं छोड़े के। ई कदम से शागस मुद्दा से जुड़ल स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आयल बा। ई पोस्ट के कारण गल अप्रैल महीना से शागस द्वीप समूह पर ही मॉरिशस की संप्रभुता के मान्यता देवे की प्रक्रिया रुक गल रहल, काहे कि उ बखत सकेस्टामा की सरकार के अधीन में बरतानी संसद उ बिल के अलग रख दिले रहल। अब जहां अगस्त महीना समाप्त हुआ था, हुए पर ही गल 2025 में तय होल समझौता के हबीले कोनो मंजूरी नहीं मिलल बा। हालांकि मामला में मॉरिशस निष्क्रिय नहीं बाटे। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ में काल एगो लेख में उल्लेख करल गल कि मॉरिशन सरकार की दुगो सूत्र के अनुसार मॉरिशस सितंबर महीना में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए इ मामला की आगे बढ़ावे के आर मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के समझौता लागू करे की दबाव बनावे के प्रयास करी। ईंधन सप्लाई के लेके गल हफ्ता मॉरिशस और भारत के बीच 5 बरिस के कुछ समझौता तय होल बाटे। दूसर दिन विदेशी व्यापार की हालिया आंकड़ा मॉरिशस के आयात पर ही ऊर्जा खर्च के प्रभाव देने संकेत करता। ये

0: बरिस की दूसरका तिमाही के दौरान व्यापार घाटा आधा से जस्ती बढ़ल बा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार पहला तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपया के रहल, वहीं पर अप्रैल से जून महीना के बीच ई 67.5 बिलियन रुपया ले पहुँचल बा। 2026 के दूसरका तिमाही के दौरान व्यापार घाटा में बढ़ोतरी के लेके अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी एगो बुनियादी बात देने संकेत करले हवन। मॉरिशस अपन इस्तेमाल के 80% जस्ती हिस्सा आयात करेला। एकर में ईंधन सबले जस्ती महत्वपूर्ण है और हाल में वैश्विक स्थिरता के संग एकर कीमत बढ़े के संगे आयात के खर्चा परी सीधा तौर से प्रभाव पड़ल बा। हालांकि उनकर ये भी मानना है कि मॉरिशस में आयात करल जाए होला सामान में एकाधगो ऐसन उत्पाद है जे स्थानीय स्तर पर ही उत्पादन हो सकेला। वो खास तौर पर ही पर्यटन सेक्टर के जिक्र करेलन। ऐसन उद्योग जे विदेशी मुद्रा कमावेला बकीर एकर संग ही आयात से जुड़ल काफ़ी खर्चा भी करवावेला। होटल बनावे से लेके रोजमर्रा के कामकाज ले इस्तेमाल हुए होला सामान के एगो बड़ा हिस्सा आयात करल जाला। एकर खातिर मनीषा दुकोनी के अनुसार संरचना के स्तर पर ही बदलाव की आवश्यकता बा। ऊ भी बात पर जोर देवेलन कि समस्या खाली आयात ले सीमित नए है, बकिल मॉरिशस के निर्यात पर भी मुश्किल पड़ता। न्यायिक क्षेत्र में असाइज अदालत के स्तर पर ही सजा सुनावे के मामला में काफ़ी बढ़ोतरी होल बा। 2024 में 54 मुकाबला में 2025 में 104 जना की सजा सुनावल गल है, खासकर ड्रग्स से जुड़ल अपराध खातिर। ये सब जानकारी नगर पालिका न्यायपालिका की 2025 की सालाना रिपोर्ट में सामने आल बा जे एकादिन अक्ते ऑनलाइन प्रकाशित करल गल रहल। आर मॉरिशस में पानी के मौजूदा कमी के ध्यान में रख के स्कूल के जरिए पानी के जिम्मेदार इस्तेमाल और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ावे के अभियान चलावल जाता। बीफे के जोन 4 के 15 गो स्टेट सेकेंडरी स्कूल के छात्र लोग वाकवा में सतत विकास पर आधारित एगो शैक्षिक परियोजना के नतीजा प्रस्तुत कर ले रहलन जा। ग्रीन हाउस, सब्जी के बगीचा, कंपोस्ट, बारिश के पानी इकट्ठा करे के सिस्टम और स्थानीय तथा औषधीय पौधा होला बगीचा। एकादगो 155 गो छात्र लोग 3 महीना के अंदर अंदर 32 गो ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करके तैयार कर ले हवन जा। शिक्षा मंत्री महेन गंगा पौसादी बात पर ही जोर दे ले हवन कि छात्र लोग की सब्जी उगावे के और पर्यावरण के अनुकूल तरीका अपनावे के सीखे के चाही। वही भी बोलन कि ये पहल देश के आर 4 गो एजुकेशनल जोन ले बढ़ावल जाए। दूसरा देश की खबर में नेपाल में उतरल विनाशकारी बाढ़ में मरे होला लोग की संख्या 580 ले पहुंच गल बा, जबकि लापता हुए होला लोग की तादाद 2400 ले पहुंच गल बाटे। एक आदमी 500 विदेशी मूल के लोग हवन जा। राहत कार्य जारी बाटे। भारत देने से 50 टन मूलभूत सामान और दवाई के कंसाइनमेंट भेजल गल है। तै रहल भोजपुरी के समाचार, तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मर्दी की खबर सुना जा। स्कूल रोड लाविनिया सैंपिया में 78 साल के 78 के जनाब बशीर अहमद जदाकों जे बशीर नाम से दस्ती जान जात रहलन और पहले है टीचर रहलन, उनका इंतकाल हो गल बा। उनकर जनाजा आज फजर के 10 बजे उनकर बेटा जनाब मुजम्मिल जदाकों के करे स्कूल रोड लाविनिया सैंपिया से उठा के पहली नमाज जनाजा खतीर लाविनिया सैंपिया की हिमायत इस्लाम मस्जिद दे जाल जाए, फिर दफना खातिर सियाकुमसान सैंपिया के कब्रस्तान। दुकान लेन ग्राविये बोबासे में 69

बरिस की 69 वाँ के जनाब हुसैन तेगाली, जनाब हुसैन तेगाली जे हुसैन नाम से जस्ती जान जात रहलन, उनका इंतकाल हो गल बा। उनका जनाजा आज दिन के 11 बज के आधा, उनका जनाजा आज दिन के 11 बज के आधा उनका घरी दुकान लेन मे बुबासैन से उठा के पहली नमाजी जनाजा खातिर पोर्ट लुइस के जमा मस्जिद जाल जाए पर दफना खातिर गिश्त के कब्रस्तान। डिस्पेंसरी रोड थ्रियोले में 53 बरिस के 53 वाँ के श्री जितेंद्र दुलभ, श्री जितेंद्र दुलभ जे पाम मौसदार पोई नाम से जस्ती जान जात रहन गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 1 बजे, उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर घर डिस्पेंसरी रोड थ्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर SSS लेन थ्रियोले के श्मशान भूमि ले जाल जाए। गजियाबाद रोड कॉन्फुको फिनिक्स में 72 बरिस के 72 जों के श्रीमती यशोदा नंदलोल, श्रीमती यशोदा नंदलोल पैदाशी नाम बिसुनत जे आन नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 1 बजे, उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पति श्री ज्ञान नंदलोल के घरे गजियाबाद रोड कॉन्फुको फिनिक्स से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कॉन्फुको के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रिवरसाइड रोड लालोगा सैं पिया में 74 बरिस के 74 जों के श्री रोहित लखमन, श्री रोहित लखमन गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 10 बजे, उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर पत्नी श्रीमती राजमती लखमन के घरे रिवरसाइड रोड लालोगा सैं पिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सियाकों सौ सैं पिया की श्मशान भूमि ले जाल जाए। ऑस्ट्रिया रोड अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 95 बरिस के 95 ओं के श्री हरिलाल कोयलेसा, श्री हरिलाल कोयलेसा जे मौसदाल पोई नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 1 बजे, उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पत्नी श्रीमती सती कोयलेसा के करे अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बागुल गुडलैंड के श्मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 11 सेंट जेम्स पोर्ट लुइस में 76 बरिस के 76 ओं के श्रीमती बिदवंती स्वांबर, श्रीमती बिदवंती स्वांबर पैदाश नाम रामदोस और गुजर गल हवन, उनकर माटी आज फजर के 10 बजे, उनकर माटी आज फजर के 10 बजे रॉयल रोड बबासें के एलियंसन से उठा के पहले उनकर घर ही ले जा जाए फिर अंतिम संस्कार खातिर शेबेल के श्मशान भूमि। बॉशेरी रोड मोकामी 77 बरिस के 77 ओं के श्रीमती विद्यावती रामा, श्रीमती विद्यावती रामा पैदाशी नाम इंगत सामी जे विवेक नाम से जैसे जान जाते रहलन गुजर गल हवन, उनकर माटी आज दिन के 2 बजे, उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर घरे बॉशेरी रोड मोका से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आले भैयों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। अंग्रे कातों बिस्नाथ लेन ओकुले में 71 बरिस के 71 ओं के श्री पदुमन लाल जवाहिर, श्री पदुमन लाल जवाहिर जे सुरेश नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन, उनकर माटी आज फजर के 9 बजे, उनकर माटी आज फजर के 9 बजे उनकर पत्नी श्रीमती बीना लाल जवाहिर के घरे अंग्रे कातों बिस्नाथ लेन ओकुले से उठा के अंतिम संस्कार खतिये सोलफेरिनो के श्मशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबल इस परिवारों के संगे हमनी के संवेदना है।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
2: रेडियो मॉरिशस AM मोड पर आप हमें सुन रही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अजय प्रताप सिंह ऑन द मिक्स। सुबह 11:23। नमस्कार आदाब सभी को एंड वेलकम टू माय शो, या मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना। डेडिकेशन टाइम 4:02-8:05 पर कॉल करके गीतों को अपनों के नाम कर सकते हैं। 20 साल बाद फिल्म का गाना है बाजीगर बर्मा, सस्ती दुल्हा सस्ती दुल्हन, महंगा दुल्हा, पेइंग गेस्ट और अभिलाषा फिल्मों के गीत। ये पहला गाना बेकरार हम करके जाइए, 20 साल बाद फिल्म का गाना है हेमंत कुमार की आवाज़ में, और ये गीत हम चला रहे हैं। ये गीत हम चलाएंगे दीपक जी के नाम, आप है ब्राइटन में आपकी माँ के लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। रंभा जी स्विट्जरलैंड से हैं, उनकी 3 बेटियाँ और उनके हस्बैंड के लिए। ये गीत जाएगा अजय पुरम चिंताराम के नाम, जो है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

मिनट में बात सोनिस क्रिवेट्स पर, ये है रेडियो मॉरिशस और हमारा प्रसारण चल रहा है आज सोनिस क्रिवेट्स पर एम मोड पर, और आप हमें देख रहे हैं रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी। सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हेलो लोगों, कहिए कैसे हैं आप भाइयों बहनों, होप यू आर डूइंग वेल। रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा रहा, होप यू सेलिब्रेटेड इट वेल। अब रक्षाबंधन के बाद अब आएगा गणपति भगवान जी का त्यौहार, गणेश चतुर्थी, फिर होगा वेंकटेश्वरा, फिर पितृपक्ष, उसके बाद दुर्गा पूजा आदि आदि। सो देयर इज मच मोर टू कम। सो चलिए अगला गीत हम प्रस्तुत करते हैं फ्रॉम द मूवी 20 साल बाद हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। यस, यह प्यारा सा गाना विशाल जीवन के नाम, हेलो मून, यह गीत आपके नाम एंजल, ये गीत आपके नाम भी हम करेंगे। और विनोद पुनीत सालुनी एम पर, यह गीत आपके नाम भी, देवी जी, ये गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। और जेवीना मीरहा, लेडी जागुआ, फिर आकाश चेतन भी हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू मैं सुनने के लिए और टिकटॉक पेज पर फॉलो करने के लिए। और यही गाना हम चलाएंगे सभी रेडियो मॉरिशस के सुनने वाले दोस्तों के नाम। और हम जानते हैं कि शनिवार का दिन है, सो बहुत से लोग देर से जागते हैं। सो जेवीना, दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू एज वेल। और यही गीत बेबे के नाम, हाई बेबे, कैसे हैं आप? जी हाँ, आपका नाम ही मैं बेबे, क्योंकि टिकटॉक पर आपने लिखा है बेबी। सो हेलो बेबी, हाउ आर यू? जी हाँ, यह उस व्यक्ति का नाम है। माला कुनाय जी, नमस्ते, हेलो माला, हाय अक्षय। फिर यही गीत हम चलाएंगे अवनीश के नाम, अवनीश की ओर से उनके प्यार से ज्योतिका के लिए। चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।

यहाँ पर कौन किसी को याद करता है दोस्तों, सभी लोग अपनी दुनिया में मस्त है। और कहते हैं कि लोग हमें याद करेंगे, जानते हैं लोग हमें कब याद करेंगे, जब हम कुछ लिखते हैं। इसलिए हम कहते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं कुछ लिखने के लिए, एक कहानी, एक उपन्यास, यू कैन राइट ए नॉवल, इट कुड बी स्टोरी, सिलेक्शन ऑफ पोएम्स, ताकि आपके जाने के बाद भी जो जनरेशन आएंगी वो पढ़ सकें कि आपने क्या लिखा है। अगर इस दुनिया में आए, खाए, खाया पिया, मौज किया, चला गया, तो क्या दुनिया याद रखेगी हमें। दुनिया याद करती है उन लोगों को जो इतिहास लिखते हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, हैं कि नहीं। इन लोगों को लोग याद करते हैं, चाहे उनकी मृत्यु कितने साल पहले हो गई, पर आज भी लोग उनका गुणगान करते। अभी देखिए, 2 अक्टूबर को मनाएंगे गांधी दिवस। महात्मा गांधी ने जितने अच्छे कार्य किए वो अपने कार्यों के द्वारा पहचाने जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि अगर आप अभी जी रहे हैं तो अपने जीवन में जीते हुए आप कुछ लिखिएगा ज़रूर, कुछ भी, कहानी, उपन्यास, नाटक, ताकि आपके जाने के बाद भी आपका पुस्तक रह जाएगा और लोग आपकी पुस्तक को पढ़ेंगे, आपको याद करेंगे, वरना वैसे तो कोई किसी को याद करता ही नहीं। 8:40 और अगला गाना महेंद्र कपूर शर्मा आगा की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है निकाह, दिल की ये आरज़ू थी। ओए होए, ये गीत श्रीन राम जोन की ओर से उनके पूरे परिवार के लिए, इंदिरा लौटन बेबे, आफेज हैलाविनिया सैपिया से, इंदु, रवि बंगारू, मेविन की ओर से जानवी के लिए, राफिक बैकर्स हेलो, राफिक मोहित तयाग से, बायाबू वाकवा से और शशि तुलसी, उनका बर्थडे है कल, सो हैप्पी बर्थडे, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको देते हैं। और यही गाना जो है हम चलाएंगे उषा कुंज बिहारी के लिए, हाई जीविना, यह गीत आपके नाम भी जाएगा, लिका सरस, विकास ओबिलक, गुड मॉर्निंग रोशन साहब, जुलियान, फिर खान साहब, एवीना, फिर यही गाना जाएगा उषा कुंज बिहारी के नाम, दिलवंती सनातन हेलो जी, बीना पादू, यस बीना नागासी, शंकर नमस्ते, इजाज़ हुसैन, यह गीत आपके नाम भी, बीना पादू जी, यह गीत सभी पादू परिवार के जो रॉसबेल से है, और जितने भी लोग हमारे टिकटॉक पेज को लाइव लाइक कर रहे हैं, हमें इमोजीज भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए, इट्स सो स्वीट टू सी सो मेनी पीपल वॉचिंग अस लाइव ऑन इंटरनेट एंड ऑन टिकटॉक पेज, और रेडियो पर भी बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं, थैंक यू जी। सुनंशी टंकी हेलो, यह गीत आपके नाम, आपकी बेटियाँ और दामाद के नाम भी, और संजय बिहारी, यह गीत आपके नाम, आपकी पत्नी सुरेखा और सभी बिहारी परिवार के लिए, माधव भैरव, आप है मोहताबा से, आपके चाचू साइलेन के लिए, और चाचू और भतीजा का ये प्यार हमेशा कायम रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। सो चाचा साइलेन अपने माधव को बहुत प्यार करते हैं, माधव भी अपने चाचू से बहुत प्यार करते हैं, सो गीत माधव और उनके चाचू साइलेन के लिए, फिर तीना की ओर से कवि के लिए, फिर सासू मामाला है, फिर ननद है रीना, और सब भैरव परिवार के नाम यही गीत हम चलाएंगे, वीना नागा के नाम हेलो जी, राजमन्ना जी और हरिलाल दीनू जी भी हमारा साथ दे रहे, हेलो हरिलाल जी, सत्यम सोनू, थैंक यू, मुकेश और सूरज गंगा भी हमारा साथ दे रहे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस, दिल की आरज़ू। अब दिल की आरज़ू क्या है, एक साथ सुनते हैं, दिल की आरज़ू क्या है।

अब तक जो दोस्त मिले वो सब बेवफा मिले। कहाँ है सच्चा दोस्त आज की दुनिया में, है कोई? अगर है तो अच्छी बात है, यू आर वेरी लकी इफ यू हैव ए बेस्ट फ्रेंड। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है या आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हैं, देन यू आर वेरी लकी, बहुत ही खुशनसीब हैं आप लोग कि आपको कैसा दोस्त मिला है।

कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपाई नहीं जा सकती, जैसे कि प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उस बात को आप छुपा नहीं पाएंगे। कभी ना कभी तो एक ऐसा समय आएगा जब आप अपने दिल की बात उनसे कहने की कोशिश करेंगे। कोशिश अवश्य करनी चाहिए। ऑलराइट, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड टू प्रपोज समवन। अब ये नहीं कि आपने कभी लड़की को बताया नहीं या लड़की को बताया नहीं कि आपको उनसे प्यार है, अब कोई और उसे लेकर चला।

से प्यार है और देखिए वो कैसे रिएक्ट करता है। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी अब क्या नहीं बताना आता है, क्या छुपाना नहीं आता। चेक साथ सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी बाजीगर। ये गीत शुभा के नाम, शुभा है पॉपुलर मुझसे अनुषा उमा दिलवंती सुना तनकन से बीते परमेश के लिए और तनका बहादुर मागा के लिए। और तनका बहादुर मागा अभी नेपाल से है और हमें सुन रहे हैं। सो अभी हमने नेपाल में कुछ दिन पहले देखा किस तरह वहाँ पर तबाही मची है, जितने भी लोगों ने अपने परिवार को खोया है, तो हमारी सहानुभूति, हमारी सिंपथी लोगों के साथ है। भगवान उन लोगों की आत्मा को शांति दे जो लोग इस प्राकृतिक प्रकोप में अपना जान खो बैठे हैं। सिंह जितेंद्र, हेलो नमस्ते अनुष्का, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये अगला गीत आपके नाम विनोद राठौर की आवाज़ में भाई हरी शुभवासन से है। छोटी पौला जी से हेलो, आशा जानू फ्रॉम कहते झाय आशा, द नेक्स्ट गाना फॉर यू। और ये गाना हम चलाएंगे इंदिरा चिंता राम की राम, बहुत बहुत प्यार के साथ। और जी फैमिली के जितने सदस्य हैं जो हमें इस समय टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं, सैतो में SSS ये कॉलेज पाया जाता है दक्षिण में, वहाँ के रेक्टरनी अध्यापक और नॉन टीचिंग सब साथ में सभी स्टूडेंट दोस्तों के लिए। और जो बच्चे इस साल पेशाक ग्रेड 9, ग्रेड 11 और ग्रेड 13 के एग्ज़ाम्स में भाग लेंगे, अभी तीसरी तिमाही की पढ़ाई चल रही है, सो बोंग को आज गुड लक एंड होप यू डू वेल इन योर एग्जाम। चलिए एक साथ सुनते हैं गाना बाजीगर का गाना। आज भी जब ये गीत हम सुनते हैं तो एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। गीत के बोल ही कुछ ऐसे है, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, आपको उनसे मोहब्बत है, काश ये बात आप उनसे कह पाते, काश।

जी हमें पता है कि हम भी बड़े खूबसूरत हैं, हम भी बड़े हैंडसम हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी भगवान के बच्चे, तो हम सभी खूबसूरत हैं कि नहीं। और इसी गीत के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। यस, सुबह का नसना यो मस्त मॉर्निंग शो का समय पूरा होने जा रहा है। 9 बजे होगा फ्लैश न्यूज़, के बाद आप सुनेंगे पीक टाइम मैगजीन, आज की चर्चा। सुबह के 6 बजे से अभी तक हमारा

साथ देने के लिए धन्यवाद। आपके SMS और फोन कॉल्स के शुक्रिया और हमें TikTok पर देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। It was great to be with you. We had a wonderful time. हमारी आपकी मुलाकात अब होगी कल संडे 30th अगस्त को शाम के 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर। अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम होगा, ऐसा भी होता है। सो मिलेंगे कल शाम को 3 से 4 बजे और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम मी अजय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय लाइफ। नमस्ते, बाय बाय, गॉड ब्लेस।

0: जब बिल्कुल इस वक्त सुबह के 9 बज गए हैं और संक्षिप्त समाचार लेकर के आ गई है अदिति अवतार, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार अदिति।
1: नमस्कार। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले फरवरी महीने में ट्रूथ सोशल नामक प्लेटफॉर्म पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जेगो गौसिया को मत छोड़ो। इस कदम से शागोस मुद्दे से जुड़ी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस पोस्ट के कारण पिछले अप्रैल महीने से शागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने की प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि उस समय सकेर सॉम की सरकार के अधीन में बरतानी संसद ने उस बिल को अलग रख दिया था। अब जहां अगस्त समाप्त होने चला, वहीं पिछले 2025 में तय हुए समझौते को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में मॉरिशस निष्क्रिय नहीं है। बरतानी अखबार द टेलीग्राफ ने कल एक आर्टिकल में उल्लेख किया कि मॉरिशस सरकार की दो सूत्रों के अनुसार मॉरिशस सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए इस मामले को अलग आगे बढ़ाने और मौजूदा बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम पर समझौता लागू करने का दबाव बनाने का प्रयास करेगा। ईंधन सप्लाई को लेकर पिछले हफ्ते मॉरिशस और भारत के बीच 5 सालों का एक समझौता तय हुआ है। दूसरी तरफ विदेशी व्यापार की हालिया आंकड़े मॉरिशस के आयात पर ऊर्जा खर्चों के प्रभाव की तरफ संकेत करते हैं। इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटा आधे से ज़्यादा बढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स रिपोर्ट के अनुसार प्रथम तिमाही के दौरान जहां व्यापार घाटा 45.6 बिलियन रुपए था, वहीं अप्रैल से जून महीने के बीच ये 67.5 बिलियन रुपए तक पहुंचा है।

0: आने वाले कुछ महीनों के दौरान एल नीनो घटना के और तेज होने का अनुमान लगाया गया है और साथ ही पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जा रही है। समय मॉरिशस इलाकाई जलवायु पर इनके संभावित प्रभाव की बारीकी से जांच कर रहा है। संदर्भ में गुरुवार को रोजेल में दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में जलवायु परिवर्तनशीलता पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये पहल मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट की रही, जिसके लिए इंस्टीट्यूट फ्रांसिस दे मोरिस का सहयोग रहा। मकसद रहा उन घटनाओं को बेहतर समझना जो जलवायु पर असर डालती हैं और खासकर पानी, खेती, मछली पालन और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर इनके नतीजों का अंदाजा लगाना। मौके पर उपस्थित कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार हालात के अनुसार ढलने की बात अब अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने शोधकर्ताओं, संस्थानों, किसानों और मछुआरों के साथ मिलकर प्रयास करने की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रेसिजन फार्मिंग और नई तकनीकों की संभावनाओं पर भी बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 580 तक पहुंच गई है, जबकि लापता हुए लोगों की तादाद 2400 पार कर गई। इनमें 500 से ज़्यादा विदेशी मूल के लोग बताए जाते हैं। राहत कार्य जारी हैं। भारत की तरफ से 50 टन मूलभूत सामान और दवाइयों का कंसाइनमेंट भेजा गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार,
1: धन्यवाद।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन्ना के ये कथन अपने आप में बहुत ही सशक्त और आज के प्रासंगिक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वकील की गलती फाइलों में दब जाती है, एक इंजीनियर की गलती दीवार की ईंट में छिप जाती है, एक डॉक्टर की गलती कब्रिस्तान में दफन हो जाती है, बल्कि एक शिक्षक की गलती सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन में झलकती है। इसका मतलब यह है कि ए मीडियोकर टीचर टेल्स, अ गुड टीचर एक्सप्लेन, अ सुपीरियर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट एंड अ ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। इसका मतलब यह है एक महान शिक्षिका प्रेरित करती है, जिन्होंने हम कहते हैं गुरुमा। नमस्ते और प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जहां बिल्कुल आज की चर्चा कार्यक्रम में एक ऐसे विशेष मेहमान आई हुई है जो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और साथ ही साथ उनका नाम है गुरुमा स्मिता वेंकटेश, और वे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जहां पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने की दिशा में लोगों को प्रेरित करती है, एक आध्यात्मिक यात्रा और एक भक्ति मार्ग में प्रशस्त करने के लिए ममत्व का भाव, श्रद्धा और अनुशासन, हृदय की पवित्रता, इन सभी बातों को लेकर के वे अपने समर्पण भाव लेकर के सात समंदर पार करते हुए यहाँ पर आई हुई है। ज़्यादातर मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं कहूँगा क्योंकि ये अपमान होने के बराबर होंगे। ज़्यादातर मैं उनका संबोधन गुरुमा से ही करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं गुरुमा। नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते अभ्युदय, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: लगेगा, क्योंकि मेरे लिए तो अहोभाग्य है कि आप हमारे इस MBC की रेडियो मॉरिशस की लहरों पर यहाँ पर आपकी आवाज़ यहाँ पर गुंजित हो रही है, बहुत बड़ी बात है। सबसे गुरुमा, आप हमें ये बताइए कि मॉरिशस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि गुरुमा कौन है, मॉरिशस के उन

0: लोगों के लिए जो आपसे पहली बार मिल रही है, जो क्या आपको लगता है कि एक परिचय देना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि मुझे पता है कि परिचय देना महत्वपूर्ण है आपकी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर के, और इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं और श्री विद्या के जीवन का केंद्रीय मार्ग कैसे बनी?
1: अभिदय, मुझे तो पहले बात आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और जिस प्रकार से आपने एक शिक्षिका, एक मार्गदर्शक का जो इंट्रोडक्शन दिया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और मुझे मॉरिशस आकर के इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सनातन धर्म के ट्रेडिशंस को काफ़ी प्रयास किया जा रहा है उसको संभालने का। मैं यहाँ पर काफ़ी लोगों से मिली और मुझे एक बहुत अच्छा एक स्वरूप दिखाई दिया सनातन धर्म को यहाँ पर कैसे समझाया जा रहा है। मैं एक मंदिर में गई थी जहाँ पर 300 साल पुरानी मंदिर मूर्ति थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मॉरिशस में। मॉरिशस से मेरा पुराना एक रिश्ता भी है, हमारे पूर्वज
0: बिल्कुल
1: मॉरिशस आए हुए थे, तो कुछ लोग यहाँ पर हैं अभी भी रिलेटिव्स ऐसे। तो जब मैं छोटी थी, अराउंड में भी 10-12 साल की थी, तो मॉरिशस से
0: आए थे?
1: नहीं, मैं नहीं आई थी, वो लोग यहाँ से इंडिया आए थे।
0: अच्छा।
1: तो तब से मैंने सपना संजो के रखा था कि कभी मॉरिशस जाऊँगी। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे गुरुजन ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि तू जब पहली बार मॉरिशस उतरेगी तो गुरुओं का संदेश लेकर के तू मॉरिशस में उतरेगी। तो मेरे लिए ये बहुत खास मौका है। आपने पूछा कि मैं अपना परिचय दूं, तो पहला परिचय ये है कि मैं अपने गुरु परंपरा का संदेश लेकर के यहाँ पर आई हूँ। इस गुरु परंपरा से कैसे जुड़ी? मैं छोटी सी उम्र से ही गुरु परंपरा से जुड़ी हूँ। मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं, स्वामी दिव्य चेतनानंद जी। उनके गुरु हैं जो हैं बाबा भूतनाथ जी, कामाख्या से हैं, और ये असम में बहुत बड़ी देवी हैं कामाख्या में। और उनके और एक गुरु थे परमहंस दिक्लेश्वरानंद। ये पूरी एक गुरु परंपरा है, सिद्धाश्रम गुरु परंपरा कहते हैं इसको, और कुछ लोग जानते होंगे नाथ गुरु परंपरा। ठीक है, तो हम इस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, और ये नाथ गुरु परंपरा ऊपर जब जाती है तो दत्तात्रेय भगवान इनकी गुरु परंपरा से जुड़ी है, और इन्हीं के परंपरा के अंदर ही आदि गुरु शंकराचार्य जिनको सभी जानते हैं,
0: बिल्कुल
1: उस परंपरा से जुड़ी हुई है। तो मैं जब यहाँ पर बैठी हूँ तो 14 साल की उम्र में मेरा श्री विद्या में इनिशिएशन हुआ। श्री विद्या के साथ साथ 10 महाविद्या, आजकल लोग इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है 10 महाविद्या, लेकिन मेरी बहुत छोटी सी उम्र में 10 महाविद्या में मेरा मुझे दीक्षा मिला था, और श्री विद्या में मुझे आदि गुरु शंकराचार्य से दीक्षा मिली है। वो जो सिस्टम है श्री विद्या का, उसको पूरे संसार में लोग जानते तो हैं। लक्ष्मी की पूजन होती है, लक्ष्मी की पूजन एक यंत्र पे होती है, उसको कहते हैं श्री यंत्र या श्री चक्र। मेरे पास इस समय श्री यंत्र है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये है श्री यंत्र, आप देख रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना। तो इस पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है या इस पे श्री विद्या की पूजा होती है।
0: मॉरिशस में जब दिवाली पर्व शुरू होता है, 2-3 दिन पहले धनतेरस, छोटी दिवाली, ये सब, तो उस समय ये श्री यंत्र का बहुत मतलब प्रयोग किया जाता है।
1: यस यस यस यस। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक मेरू वाला होता है, एक फ्लैट, ये भी होता है। तो ये भी श्री यंत्र है। तो इसकी जो साइंस है, इस साइंस में मुझे एक्सपर्टीज है,
0: क्या बात है।
1: तो मुझे इसमें सिखाया गया, इसको समझने के लिए कम से कम 12 साल लगते हैं। मुझे 12 साल लगा क्योंकि मैं अपने गुरुजनों के साथ उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली। लेकिन जब मुझे सिखाने का दायित्व दिया गया तो मुझे लगा जमाना बदल चुका है, वी आर इन द 21st century, और यंगस्टर्स को इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी कठिन रिचुअल्स नहीं समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो जो स्ट्रगल मैंने अपने टाइम पे देखी, मैं एजुकेशन में बी इंजीनियर हूँ, साथ में मैंने मैनेजमेंट किया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, काम नौकरी भी कुछ साल की, लेकिन बाद में मेरा जो है, मेरा मन भगवान में लग गया। मुझे हर पल एक प्रश्न सताता कि मैं यहाँ दुनिया में आई क्यों, पर्पस क्या है। मैं अपने आजू बाजू लोगों को देखती, लोग नौकरी पर जा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में बड़े दुखी हैं, किसी के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, तो किसी के विवाह करके शादी नहीं संभल पा रही है। बच्चे माँ बाप से प्यार ढूंढ रहे हैं, माँ बाप से प्यार नहीं मिल रहा है तो बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं, बाहर प्यार नहीं मिल रहा तो ड्रग्स में ढूंढ रहे हैं। दुनिया को मैंने ऐसे देखा। अच्छा, छोटे लोगों को ये तकलीफ है, बड़े लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन एक लोनलीनेस उनको सताया जा रहा है। जब अपने आसपास एक यंग उम्र में मैं ये देखने लगी, मेरे मन में ये ज्वलंत प्रश्न उठता कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। उस समय पर मेरे गुरुजनों का जो

0: आशीर्वाद रहा। उस साधना का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, एक तो श्री विद्या सिखाई और दूसरा गीता। गीता ने मुझे बदल दिया, गीता ने मुझे जीवन का पर्पस समझाया, वाई आई एम आई हियर। और वो जो जीवन में मैंने प्रैक्टिस किया, जब मैं परिपक्वता पे आई, मैच्योर हो गई, तब मेरे गुरुजनों ने मुझे बोला कि अब इस ज्ञान को, घर घर गीता, घर घर श्री विद्या के मिशन, इसको तू अपना और इसको सभी को दे। पहले तो मैंने गुरुजनों से कहा कि इतनी कठिन चीज़ें हैं, समझाया नहीं जा सकेगा।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने कहा हम तो तुझे विशेष ज्ञान देंगे, तू चिंता मत कर। तो पूरी श्री विद्या जो मुझे स्वयं 12 साल कम से कम लगे हैं, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया और इतने सरल तरीके में बनाया कि आई एम वेरी प्राउड टू से आज मेरे स्टूडेंट बेस में दो साल में वो पूरी की पूरी विद्या सीख लेते हैं। मेरे स्टूडेंट बेस में 10 साल के बच्चे भी हैं और 70 साल के लोग भी हैं, अलग अलग परंपराओं से आए, आधा अधूरा सीख करके आए थे, लेकिन अब वो जब आते हैं तो मैंने एक ग्लोबल प्रोग्राम बनाया श्री विद्या सिखाने के लिए। वो श्री विद्या सीख करके वो अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और धन्य बनाने का अर्थ ये है कि जैसे मैंने कहा कि श्री विद्या देती क्या है, हम ना कहते हैं श्री विद्या एक हाथ में भोग देती है और एक हाथ में मोक्ष देती है। भोग यानी मटेरियल ऑपुलेंस,
1: बिल्कुल,
0: और मोक्ष यानी लिबरेशन।
1: लिबरेशन।
0: अब मटेरियल ऑपुलेंस क्या है? केवल धन दौलत पैसा नहीं है। मेरे पिताजी सिखाते थे हमारे 8 लक्ष्मी की पूजा, जैसे हमने कहा ना दिवाली में 8 लक्ष्मी पूजा होती है, तो लोग सोचते हैं लक्ष्मी केवल पैसा। पापा बोलते थे पैसा तो लास्ट की चीज़ है ना। लक्ष्मी आने, आपके पास अच्छे लोग हों, पहला आपका सबसे बड़ा धन है आपके कनेक्शंस, आपके बल,
1: स्थिरता,
0: हाँ ये होना चाहिए आपके जीवन में। जब आप काम करते हो दुनिया में, अब आप मीडिया पर्सन हो, 4 लोग तारीफ करते हैं तो 4 लोग नीचे भी गिराते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जब नीचे गिराते हैं तो जब टूटते हो तो उस समय आप किसके पास जाते हो? क्या आपके पास कोई ऐसा है, चाहे फ़ोन पे हो चाहे कैसे भी हो, जिसके आप गले लग सकते हो, जिससे आप बैठ करके बातें कर सकते हो कि आज मेरे को ऐसा लोगों ने कहा, लेकिन वो तुम्हारा हिम्मत बंधा है। वो आपका परिवार का हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, कोई तो हो सकता है। मेरे पिताजी कहते थे ये तुम्हारा पहला धन है, तुम लोगों को कमाओ, लोगों के प्रेम को कमाओ, ये तुम्हारा पहली लक्ष्मी है। उसके साथ साथ भोजन आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, आपके पास सब कुछ है, आप बीमार पड़े हुए हो, भोजन ले नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा हो लक्ष्मी का? लक्ष्मी तो नहीं खाओगे, धन तो नहीं खाओगे। तो पापा कहते थे तुम्हारा स्वास्थ्य, ये तीसरा, कि स्वास्थ्य अच्छा हो, पर्याप्त भोजन हो, आप कभी भूखे ना सोए, आपके आसपास वाले कभी भूखे ना सोए, तीन लक्ष्मी। आपके पास बोलने की क्षमता हो,
1: वाणी,
0: कि आप किसी को कुछ बोलें तो आप इंप्रेस कर पाए। लोग इंटरव्यू में जाते क्रैक नहीं कर पाते, सारा एजुकेशनल डिग्री फेल हो जाता है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो, और किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन बोलने की ऐसी क्षमता है,
1: वाक्पटु।
0: तो पापा कहते थे ये तुम्हारी चौथी लक्ष्मी है। पापा कहते थे कि उसके बाद बाकी की लक्ष्मी आती है कि आपके पास गाड़ी हो, कहीं भी आप जा सके, घूम सके, है ना। या गाड़ी नहीं हो तो ऐसे कनेक्शन हो कि आपके लिए आ जाए, है ना। फिर पापा बोलते थे मन की शांति। ये सब होने के बाद पापा बोलते थे अब धन की आवश्यकता है। आपके पास अगर कनेक्शंस प्रॉपर है ना, आपके पास वाक्पटुता है ना, और आपके पास अच्छे कपड़े वपड़े पहन रहे हैं ना, आप लोगों को इंप्रेस कर पा रहे हैं ना, धन आपके पीछे फॉलो करेगा। ज्ञान आपके पास है ना, गुरु की कृपा आपके पास है ना, ये सब के साथ आपके पास आध्यात्मिक संपदा होनी चाहिए। और जिसके पास आध्यात्मिक संपदा है वो कभी दुनिया में कमी में रह नहीं सकता था। पापा मेरे गुरुदेव ये सिखाते थे कि जीवन को पूर्णता से जियो। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ, स्पिरिचुअलिटी मीन्स ब्रिंगिंग इट इनसाइड योर लाइफ। आप जीवन को पूरी तरह से जियो, जो आपको चाहिए पाओ, और साथ साथ में आप पूर्णतः आध्यात्मिक रास्ते पर रहो। तो श्री विद्या और घर घर गीता, घर घर श्री विद्या के मिशन में यही है कि गीता ने मुझे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान दिया, श्री विद्या ने मुझे भोग से भर दिया। मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ और भगवान की कृपा से बहुत सुंदर परिवार श्री विद्या ने मुझे दिया। मुझे, मैं देश विदेश हर जगह जाती हूँ। मेरा परिवार अब केवल 4 मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं रह गए, पूरे दुनिया में मेरा परिवार है। मैं जहाँ उतरती हूँ मुझे इतना प्रेम भगवान का मिलता है, मुझे हर रूप में। आज आप इतने प्रेम से मेरे सामने बैठे, मेरा दिल गदगद हो रहा है आपके एक एक शब्द सुन करके। मॉरिशस में जब आप इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है। मुझे नहीं लगता मैं किसी अनजाने को मिली हूँ, मुझे लगता है मैं किसी अपने को मिली हूँ जिसको इस जीवन यात्रा में कभी पहले भी मिल चुकी थी।
1: ये मेरे लिए अहोभाग्य है। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त आप आज की चर्चा कार्यक्रम देख

0: रही है और सुन रही हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और इसका सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर इस वक्त आप देख रही हैं। हम बात कर रही हैं श्री विद्या की अवधारणा के बारे में, और जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग एक आपाधापी जिंदगी जी रहे हैं, भागम भाग बहुत है, उतार चढ़ाव बहुत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के अलग अलग चीज़ों को लेकर के हम अपनी ज़िंदगी से हम लोग अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, एक दिशा नहीं है अपनी ज़िंदगी में। और श्री विद्या एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि किस प्रकार से हम अपने ज़िंदगी को, हम अपने जीवन को, हम अपने जो उद्देश्य हैं उसको स्पष्ट रूप से क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। और इस वक्त कैलिफोर्निया से हमारी एक ऐसी गुरुमा आई हुई है जो हमको इस श्री विद्या की जो अवधारणा है उनके बारे में बता रही है। अब गुरुमा आप हमें ये बताइए, ये जो श्री विद्या शब्द है मॉरिशस लोगों के लिए एक मतलब ये एक नई अवधारणा है, तो आपको कैसा लगता है कि वास्तव में मॉरिशस में इसको एक उपासना के रूप में, एक आध्यात्मिक दर्शन के रूप में, एक प्रणाली के रूप में हम श्री विद्या को अपना सकते हैं?
1: देखो ऑलरेडी कर रहा है मॉरिशस इस चीज़ को, लोगों को पता नहीं है। अभी आपने कहा दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी जी ही श्री हैं। यहाँ पर 3,000 काली मंदिर है मैंने ऐसा सुना, वो काली ही श्री हैं, ये लोगों को पता नहीं है जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखी और जो मैं ज्ञान देना चाहती हूँ मॉरिशस के लोगों को। दुर्गा माँ की पूजा तो हर जगह हो रही है ना, दुर्गा माँ की पूजा होती है दुर्गा सप्तशती से, और दुर्गा माँ के सप्तशती में 3 चरित्र आते हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ठीक है ना। और जब आप पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो कहते हैं ये जो महाकाली का स्वरूप है, माँ सरस्वती का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, ये श्री का स्वरूप है, इसको कमलात्मिका भी कहते हैं। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाला हर व्यक्ति श्री की ही पूजा कर रहा है, बिना श्री शब्द से तो कोई भगवान रहते ही नहीं। तो श्री विद्या यानी उस श्री को समझना जो अलग अलग रूपों में इस दुनिया में है, वो श्री लक्ष्मी के रूप में पूजी रहे, वो श्री दुर्गा के रूप में पूजी रहे, वो श्री काली के रूप में पूजी रहे, वो श्री महामारी अम्मन के रूप में पूजी रहे, है ना। तो श्री याने इस दुनिया की संपदा, इस दुनिया का वैभव, विष्णु की पत्नी वो श्री है, शिव की पत्नी भी श्री है।
0: मतलब जो 3 रूप हैं जो आपने अभी बताया है, अगर उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहेंगे, इसी को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, इसी को रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहते हैं, और इसी को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं।
1: अभ्युदय, आई एम सो हैप्पी, आपने कितने सरल शब्दों में इनको लिया। ओ गॉड, परफेक्ट, यू एक्सप्लेन इट सो परफेक्टली। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो है वो देवी का स्वरूप है, ठीक है ना। ये पूरी दुनिया इन्हीं से चल रही है। जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आपने बताया, ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई वो रजोगुण से बनाई,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ब्रह्मा जी को बनाने के लिए उनकी माता कौन है? उनकी माँ वो श्री है। शिव जी जब ये संसार खत्म होता है तो रुद्र का काम करते हैं, रुद्रलीला करते हैं वो, है ना। कोई चीज़ खराब होगी, रुद्रलीला होगी, वो रुद्रलीला को करने की शक्ति कौन देता है? श्री देती है। विष्णु जी इस दुनिया का पालन कर रहे हैं, उसको शक्ति कौन दे रहा है? श्री दे रहे हैं। तो इसी श्री का एक और नाम है ललिता त्रिपुर सुंदरी, और दुनिया में फेमस है ललिता शास्त्र नाम, आप YouTube पे जाएंगे मिल जाएगा आपको। तो इनका एक नाम तो मैंने काली बताया, एक नाम दुर्गा बताया, एक नाम लक्ष्मी बताई, और जो मेन नाम है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी, ठीक है ना, उस रूप से ये जानी जाती है। यही है शक्ति जिन्होंने सबको दिया। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हो तो पहली जो चरित्र आता है उसमें लक्ष्मी जी का स्वरूप है, एक्चुअली वो 18 भुजाओं वाली लक्ष्मी जी है, और कहते हैं कि विष्णु जी सो रहे हैं, है ना। और विष्णु जी सो रहे हैं तो विष्णु जी को सुलाया किसने? वो जो तमस गुण है ना, तमोगुण, वो तामसी शक्ति, वो देवी है। उनके कान से तो मधु कैटम नाम करके निकलते हैं, वो जो तामसी गुण निकल रहे हैं उनका वध करने के लिए जो शक्ति जो दे रही है वो कौन है? वो दुर्गा है, वही श्री है। तो इनकी विद्या जो समझता है, इनका नॉलेज जो जानता है, वही श्री विद्या है। समझ में आया? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में प्रकृति है, वो मूल प्रकृति जो आप देख रहे हो मॉरिशस में आई, समुद्र जो है

0: मेरे लिए विष्णु जी का स्थान है, लक्ष्मी जी का स्थान है, मैंने पहले नमस्कार किया। तो आप तो रोज ही लक्ष्मी जी के श्री की गोद में ही खेल रहे हो आप
1: जी।
0: यहाँ के पहाड़ है ना, यहाँ पर काले काले वोल्कैनिक रॉक्स हैं,
1: बिल्कुल
0: वो काली माँ है, रुद्रलीला हो रही है कंटिन्यूस। कौन है आप? तो श्री के गोद में ही खेल रहे हो, मूल प्रकृति पेड़ों को देख रहे हो आप, लीला इतनी सुंदर हो रही, जहाँ देखो सुंदरता सुंदरता सुंदरता, वो त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य रूप में पूरे मॉरिशस में छाई हुई है। तो श्री को आप दर्शन कर ही रहे हो रोज। हाँ, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मेरे गुरुजनों की वाणी के माध्यम से, मैंने केवल आपको वो दर्शन कराया, इसी समय आपको श्री विद्या का ज्ञान मिल गया। ये श्री विद्या।
1: मैं अपने आप को एक अलग मतलब दुनिया में विचरित होने महसूस कर रहा हूँ। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो श्री विद्या है, हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसको आत्मसात कर रहे हैं, खुद हमें पता नहीं है। गुरुमा, आज की दुनिया में लोग तनाव, संबंधों की समस्याओं, वित्तीय दबाव, पारिवारिक उलझन, आंतरिक शक्ति में कमी, इन सभी चीज़ों से जूझ रही है। मुझे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए वाली जो भूख है, मैं क्यों नहीं हूँ इसमें। तो आपको लगता है श्री विद्या की शिक्षाएं और साधनाएं एक साधारण व्यक्ति को आधुनिक जीवन की इन चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद कर सकती हैं?
0: बिल्कुल मदद करता है। लेकिन एक चीज़ होती है, ये जो प्रश्न है ये बहुत सभी पूरे वर्ल्ड में, ये प्रश्न इसके लिए एक बहुत चीज़ ज़रूरी होती है, सत्संग, गुरु के साथ जुड़ना। इसलिए मैं श्री विद्या के साथ साथ, श्री विद्या तो सिखाती हूँ, उसके साथ साथ गीता पर भी मैं बहुत फोकस करती हूँ। हम लोग बहुत लकी हैं कि भगवान 5000 साल पहले स्वयं आए कृष्ण बन करके, और उन्होंने हमें ज्ञान दिया जीवन जीने का। लेकिन हम इस रैट रेस में ऐसे भागने लगे कि उस ज्ञान से वंचित हो गए, हमने अपने आप को काट दिया। हमें पता ही नहीं कि हम आए क्यों हैं, जी क्यों रहे हैं, करने वाले क्या हैं, और ये रैट रेस में हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं। क्या इससे निकलने का मार्ग है? 100% है। श्री विद्या, जिनको मैंने श्री कहा, उनकी उपासना भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। श्री कृष्ण का नाम ही श्री कृष्ण एक राधा रानी की पूजा करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में उनको श्री जी कहते हैं। सीता मैया रामचंद्र की जो पत्नी है उनको भी श्री ही कहते हैं, समझ में आया ना? तो श्री के बिना कुछ है नहीं। जब हम पूरी गीता पढ़ते हैं, गीता के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, धनुर्धर अर्जुन यानी हमारे ऐसे लोग फाइटर स्पिरिट वाले, हम आकर के रोज फाइट कर रहे हैं ना, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है और जहाँ भगवान कृष्ण है, मीन्स हमारी फाइटर स्पिरिट के साथ हमारी स्पिरिचुअल स्पिरिट, जहाँ ये दोनों है वहाँ पर श्री होती ही है, साथ में विजय होती ही है, और साथ में नीति, मॉरल करेक्टर वहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है, और भूति ऑपुलेंस वहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है। भगवान कहते हैं ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है। तो आपने कहा कि क्या ये पारिवारिक चीज़ों को बदलेगा? 100% श्री विद्या की साधना करने वाला जब वो मंत्रों का जाप करता है, भगवती आकर के वाणी पर बैठती है, भगवती आकर के मन में बैठती है। जो आपकी तमोगुणी रजोगुणी बुद्धि है, जो रैटरेस है ना, मुझे ये पाना है, ये रजोगुणी बुद्धि होती है, और रजोगुणी बुद्धि का तमोगुण से बहुत जुड़ाव है। रैटरेस में भाग रहे हो, परेशान हो रहे, कुछ नहीं मिल रहा, परेशान हो के रात को फिर कुछ ड्रिंक्स ही दे दे, शांति मुझे मिल जाए, है ना? अब ड्रिंक्स भी ले लेकर के शांति नहीं मिल रही, ड्रग्स ही दे दे, शांति मुझे मिल जाए। ये तमोगुणी है। तो रजोगुणी तमोगुणी साथ चलते हैं। लेकिन जब आप भगवान का नाम लेने स्टोरी करते हो ना, कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, मेरे अंदर एक शक्ति है, मेरे अंदर उस भगवती की शक्ति है। गुरु आकर के जीवन में आपको वो शक्ति जगाते हैं, मंत्र देते हैं, उस मंत्र करने से मन शांत होता है, अंदर की शक्ति जागती है, शक्ति जागते जागते ज्ञान का वर्धन होता है, और जैसे ज्ञान का वर्धन होगा आप शांत हो जाओगे, आप रैट रेस से पहले बाहर आ जाओगे। आपको इतना पता चल जाएगा कि जो आपके हिस्से का है वो आपको मिलना ही है, जो आपके हिस्से का नहीं है नहीं मिलना है। आप इस समय जो काम करोगे इसका फल आपको भोगना ही है, लॉ ऑफ नेचर। आप आज अगर अच्छे काम करोगे, उस अच्छे कर्म करने से आपको अच्छे फल भविष्य मिलने वाले हैं। तो रोज सुबह उठो, क्या करो, भगवान का नाम लो, देवी का नाम लो, मैं देवी का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं शिव का अंश हूँ, मैं कोई साधारण एग्जिस्टेंस नहीं हूँ, मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं देवी हूँ, मैं डिवाइन हूँ। इस भावना से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सुबह से भगवान को याद करते हुए, सूर्य भगवान रोज उगते हैं, उनको याद कीजिए।

0: कि सूर्य भगवान आप मेरे जीवन को प्रशस्त कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। ऐसे भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को अच्छे से करिए। कर्म तीन प्रकार से होते हैं, मन से, फिर वाणी से, फिर आपके हाथों से, क्रियाओं से। तो मन के कर्म को अच्छा रखिए, वाणी के कर्म को अच्छा रखिए। सपने में भी किसी को दोष या दुख मत दीजिए, ठीक है। और फिर हाथ पैर से तो अच्छे कर्म करिए, तो इससे आपका कल्याण हो जाएगा।
1: आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने ज़िंदगी में अवश्य उतारूंगा। और जितने सारे लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी, मुझे लगता है जिस प्रकार से गुरु माँ बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही सरल भाषा में बात कर रही हैं, बहुत ही सदी पुराने हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये कथन कहा था, मनसा वाचा कर्मणा। अगर मन, वचन और कर्म इन तीनों को लेकर के हार्मोनियसली सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो निरंतर तरीके से आप अपने जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति कर सकेंगे। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर से मिलेंगे आज की चर्चा कार्यक्रम में।

0: जी हम बिल्कुल आज की चर्चा कार्यक्रम इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं, और हमारा जो विषय है अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है श्री विद्या के बारे में। और इस वक्त कैलिफोर्निया से एक ऐसी गुरुमा आई हुई है जो भक्ति मार्ग को सशक्त करने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा को और ज़्यादा सुलभ करने के लिए हम मॉरिशन वासियों को प्रेरित कर रही हैं, एक दिशा निर्देशन कर रही है, और साथ ही साथ हमें एक हमारे जो उद्देश्य है जीवन के उसको और ज़्यादा स्पष्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो गुरुमा, फिर से आपका स्वागत हम करते हैं। अब गुरुमा, आप मॉरिशस किस उद्देश्य से आई हैं और यहाँ पर उसका व्यापक लक्ष्य क्या है, और आप श्री विद्या के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य तो कर रही हैं, लेकिन इस अभियान के पीछे आपकी दृष्टि क्या है? क्या आप मॉरिशस में क्या स्थापित या फिर कुछ जागरूकता अभियान करना चाहेंगे?
1: मेरा इस समय जो लक्ष्य है एक ही है, घर घर गीता घर घर श्री विद्या। इस लक्ष्य से मैं मॉरिशस आई हूँ। मैं पूरे दुनिया में ट्रैवल कर रही हूँ। मॉरिशस में आकर के यहाँ के जो लोग हैं, मुझे इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ अध्यात्म का बीज है। मैंने देखा, जितने भी लोगों से मैं मिली, मैंने देखा कि इनके पूर्वज यहाँ पर आए हैं और इन्होंने बहुत प्रयास किया अपने उस एंशियंट ट्रेडिशन को जो वो भारत से लेकर के आए, चाहे वो तमिल हो, चाहे आंध्रा से हो, चाहे मराठी हो। मैंने देखा कि उस एंशियंट ट्रेडिशन को ये आज भी अपने मंदिरों में संभाल रहे हैं। और मैंने दूसरी एक बात नोटिस करी मॉरिशस में, जो मैं बात करते करते समझ में आया कि यंगर जनरेशन उस एंशियंट रूट से थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही है। यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे डिवोर्स के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, चाहे ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मेरा जो लक्ष्य घर घर गीता घर घर शिविद्या तो है ही, लेकिन साथ में मुझे ये है कि ये जो हमारा जो एंशियंट जो धर्म है, जिसने हम सबको बांध के रखा, हमारे पूर्वजों ने जो इसको बना करके रखा है, यंगर जनरेशन को मैं इससे जोड़ूं, रिकनेक्ट देम विद द एंशियंट रूट्स, विद द एंशियंट विजडम। हमारे विजडम, यदि आप देखो, यदि आप हमारे भगवानों को देखो, आप शिव जी को देख लो, शिव जी के परिवार को देख लो, शिव जी के परिवार में शिव जी से बढ़कर के धर्म का ज्ञान देने वाले कोई नहीं। सारा धर्म का ज्ञान शिव जी की और उनकी पत्नी के वार्ता से निकलती है, ठीक है ना, आगम निगम का ध्यान का जो ज्ञान है। शिव जी के परिवार को यदि आप देखो, तो शिव जी अवगढ़ कोई नौकरी वोकरी नहीं करते, है ना, स्मशान में बड़े धुनी रमाते हैं, राम राम राम करते हैं। उनकी पत्नी को देखो, साक्षात श्री, सारे दुनिया की संपदा ब्रह्मांडों की मालकिन है, ठीक है। उनके पुत्र को देखो, एक गणेश भारी भरकम, और उनके दूसरे पुत्र कार्तिक वेरी एक्टिव सेना में, है ना। अब उनके घर के परिवार के बाकी के मेंबर्स को देखो, शिव जी ने क्या लपेटा है, सांप गले में क्या है, विष
0: हलाहल।
1: इतना हलाहल होते हुए भी भगवान शिव कैसे हैं,
0: शांत।
1: हम यदि शिव की उपासना करते हैं, हमें कैसा होना चाहिए,
0: शांत।
1: और अगर हम शिव की उपासना करके अगर शांत नहीं हो रहे हैं, तो जरूर हमारे उपासना में या हमारे अंडरस्टैंडिंग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, उनकी पत्नी तेज तर्रार, दस दस हाथ में शस्त्र लेकर खड़ी है, और ये कुछ कमाते धमाते नहीं है, दिन रात गणेश जी को खाना खिलाना है, तो पत्नी को कितना काम करना है। ऐसी तेज तरार पत्नी है, फिर भी इन दोनों में जो प्रेम है, इनकी जो लव स्टोरी है दुनिया में, वैसी लव स्टोरी नहीं हो सकती कि

0: जब सती सती ने प्राण त्याग दिए थे केवल उनके पति का डिसरेस्पेक्ट हो गया था इसके लिए, उन्होंने क्या आदर्श रखा, और भगवान शिव ने भी वही आदर्श रखा कि मैं इनके अतिरिक्त किसी को अपनाऊंगा नहीं। कैसा प्रेम उस परिवार के अंदर है, जब हम अपने भगवानों को देखें तो उस परिवार के प्रेम को देखते हैं। हमको अगर ये प्रेम करने नहीं आ रहा है, हम रात दिन भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, दुनिया भर के रिचुअल्स कर रहे हैं, लेकिन यदि अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम नहीं कर पा रहे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में अभी कमी है, हम अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे। तो इनके गले में सर्प है और ये हलाहल में भी शांति से हैं, इनके हाथ में 10 शस्त्र हैं फिर भी अपने शस्त्रों को कंट्रोल करके रखी हुई हैं, और ये इनके जो कार्तिक हैं वो बैठते हैं मोर के ऊपर, मोर वो सर्प को देखता रहता है, बोलता है अभी मैं तुझे अटैक करने वाला हूँ, है ना, जंगल का राज है ना इधर, अभी अटैक करने वाला हूँ। सर्प गणेश जी को चूहा को देखता है, अभी अटैक करूँगा, अभी अटैक करूँगा, अभी अटैक करूँगा। और इनका नंदी बैल है,
1: नंदी
0: शेर नंदी को देखता है, नंदी वहां से तू मुझे क्या दिखाएगा, मेरा मेरा देख सिंह देख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब ये घर का जो माहौल है, सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लग रहा है ना, है ना, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये लोग कितनी पीसफुल फैमिली है, ये एक दूसरे को कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। गणेश जी ने तो आदर्श दिया कि माँ बाप सर्वोपरि है, गणेश जी में और उसका उनके भाई में कॉम्पिटिशन लगे, हर घर में होता है ये, लेकिन फिर भी माँ बाप को तो छोड़ा नहीं, समझ में आया। तो जब भी हमारे भगवानों को देखो, मैं शिव जी का आदर्श परिवार लेकर के आई हूँ, क्योंकि इन्होंने ही हमें श्री विद्या दी है, ये हमारे गुरु है, इनका आदर्श परिवार है, ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। तो हमारे हिंदुओं में जो सनातन धर्म में हमको यही सिखाया गया कि आपको जो परिवार दिया गया इनके साथ आपका ऋणानुबंध है, आप भगवान को अपने जीवन में उतारो, शिव की पूजा करो, लक्ष्मी की पूजा करो, देवी की पूजा करो, और अपने घर की जो पत्नी है, अपने घर की जो स्त्री है, या घर की स्त्री छोड़ दो, सारी स्त्रियाँ ये देवी का स्वरूप है, ये स्त्री है, आपकी गर्लफ्रेंड है वो भी इस देवी का स्वरूप है। जब व्यक्ति इस प्रकार से उनको देखता है, उनको रिस्पेक्ट देता है, तो वो स्त्रियाँ नेचुरली पुरुष को रिस्पेक्ट देती हैं। अगर हम एक दूसरे को प्रेम से देखने लगेंगे तो जो जीवन में जो आज के ज़माने में जो हो रहा है कि हमें प्रेम ही नहीं मिल रहा है, हमें प्रेम नहीं मिल रहा है, डिवोर्स हो रहा है, ये नहीं होगा, ये रुक जाएगा। बच्चे माँ बाप को आदर तो दे रहे हैं लेकिन माँ बाप बच्चों के दुख दर्द को नहीं समझते कि बच्चे भी ट्रॉमा से गुजरते हैं, है ना। माँ बाप क्यों नहीं समझ रहे, क्योंकि माँ बाप धन के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें लगता है हमने धन कमा लिया, हमने बच्चे को धन दे दिया तो बच्चे का काम हो गया। माँ बाप जिस गरीबी से जूझ रहे थे वो उसको हटाना चाह रहे हैं और बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं एक्सपेक्टेशन का, ऐसा होना नहीं चाहिए। माँ बाप अपने सपनों को फुलफिल करें, बच्चे अपने सपनों को फुलफिल करें, तो बच्चों के साथ वो प्रेम का संबंध, ये हमको देखना पड़ेगा कि हम कैसे प्रेम करें। हम राजा राम का यदि उदाहरण लें तो उनके वहाँ राम जी को घर छोड़ने का कारण ही क्या था कि माँ ने वो एक एक्सपेक्टेशन रखा ना कि ये राजपाट मेरे दूसरे बच्चे को मिलना चाहिए, उसी की वजह से परिवार में बिखरा हुआ। लेकिन जब परिवार में बिखरा हुआ उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, सभी के सब दुखी थे, उस परिवार में अंत तक सुख नहीं मिला। तो परिवार के मुखिया को ये एक लेसन है कि मुझे मेरे परिवार को डिवाइड होने देना नहीं है। ये सारे लेसन हमको हमारे पुराणिक कथाओं में मिलती है, लेकिन हम उन कथाओं को समझ नहीं पा रहे और उसी वजह से हम उनके मॉरल वैल्यूज को ले नहीं पा रहे। हमारे रूट्स बड़े एंशंट हैं लेकिन उसके विजडम को हम समझ नहीं पा रहे। तो जब मैं मॉरिशस में आई हूँ, हालांकि मैं मैसेज तो ये लेके आई थी, लेकिन अब मेरा ऐसा है कि नहीं, मैं यहाँ के लोगों को उनके एंशंट रूट से जोड़ करके उसके असली स्वरूप को बता करके मैं परिवारों को रिकनेक्ट करवाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति का जागरण करो और अपने जीवन के मार्ग को बदलो, सनातन धर्म को पुनः स्थापना करके इसको एक विश्व के लिए एक रोल मॉडल बनाओ। ये मेरा लक्ष्य इस समय मॉरिशस में आया हुआ है।
1: जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर श्री विद्या की को लेकर के जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है गुरु माँ के माध्यम से, अपने आप में बहुत ही सफल होने वाला है, हम यही कामना करते हैं। जिंदगी में बहुत सारे लोग एक इंतज़ार में हुए हैं, इंतज़ार रोटी का, रोटी इंतज़ार गेहूँ का, गेहूँ इंतज़ार कर रहे हैं बीज का, बीज इंतज़ार कर रही है मिट्टी का, मिट्टी का इंतज़ार कर रही है बारिश का, बारिश का इंतज़ार कर रही है बादल का। हम इंतज़ार करते करते उस भूख को मिटाने के लिए

उस आध्यात्मिक यात्रा को भूल गए हैं जो हमें फिर से लौटना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी जो भूख है अपने आप में मिटेगी। श्री विद्या की अवधारणा यही है, उस भूख को मिटाने के लिए उस आध्यात्मिक यात्रा का चयन करें और उससे गुजर करके जाइए। क्योंकि पता क्या होता है गुरुमा, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में एक धुंधलापन महसूस होता है,

0: आगे बढ़िए, धुंधलापन और मिटता जाएगा, और आगे बढ़िए, धुंधलापन और मिटता जाएगा, तब जाकर के हमें वो क्लैरिटी मिलेगी। इसीलिए आज बहुत सारे लोग कतराते हैं, वे लोग उन लोगों में एक झिझक है, वो नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही कठिन है। अब आप हमें ये बताइए कि मॉरिशस में आप यहाँ पर खासकर क्यूपिप के स्वस्तिका मंदिर में बहुत ही विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में कौन भाग ले सकता है, आप वहाँ पर क्या सिखाएंगे, श्री विद्या के पूरे जो तरह के जो खासकर जो अनजान है, मुझे अब सीखने का मौका मिल रहा है, तो उन लोगों को सिखाने के लिए आप किस तरह के जो अनुभव हैं उसके बारे में आप उन लोगों को आप साझा करने वाले हैं।
1: तो बहुत अच्छा आपने बताया, ये बात आपने जो बताई कि लोग नहीं जाना चाहते हैं या धुंधलापन है, हमारे शास्त्रों में एक बात बताई गई है, ये धुंधलापन मिटाने वाला एक ही होता है, गुरु। अज्ञानति मीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मीलतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि मैं अज्ञान के अंधकार में खोया हुआ हूँ, ना अज्ञान का घोर तिमिर छाया हुआ है, लेकिन इस अज्ञान के घोर तिमिर में हे गुरुदेव आप प्रकट हुए हैं प्रकाश रूपी टॉर्च लेकर के, और आपने मेरी आंखों को खोल दिया है, इसलिए हे गुरुदेव मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ क्योंकि मुझे आपने इस धुंधले रास्ते में रोशनी दिखाई है। मैं आप मुझे गुरु माँ कहते हैं, गुरु मैं अपने गुरुओं को लेकर के यहाँ पर आई हूँ, मेरे हृदय में बैठे उनके मैसेज को लेकर के आई हूँ, और स्वस्तिका मंदिर ने मुझे वो स्थान दिया जहाँ से मैं इस मैसेज का प्रसार कर सकूँ। मैं इतना ही लोगों से कहना चाहती हूँ कि गुरु तो मेरे गुरु हैं लेकिन मैं माँ हूँ, आप मुझे गुरु जैसे मत देखो, आप अपनी माँ को मिलने आ रहे हो, आप ये रास्ता कठिन ही नहीं है, जैसे छोटा बच्चा माँ का आंचल पकड़ लेता है, माँ का हाथ पकड़ लेता है, माँ छोटे बच्चे को गोद में उठा करके दुनिया घुमा करके लेके आ जाती, आप उस भावना से मेरे साथ आकर के जुड़े, मैं आपको उस श्री माँ से, उस श्री विद्या से, उस श्री माता से जुड़ना चाहती हूँ। गुरु का पद बड़ा ऊंचा होता है लेकिन माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है वो सारे बांधों को तोड़ देता है। मैं माँ स्वरूप में मॉरिशस में आई हूँ, तो स्वस्तिका में जो भी सीखना चाहते हो, देयर इज़ नो एज बैरियर, आपको कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे किंडरगार्टन जैसे आपका एनरोलमेंट, आप ऐसे आना, आपको मैं माँ से मिलाना चाहती हूँ, ठीक है। और हर एज के लोग आ सकते हैं, सरल तरीके से श्री विद्या क्या है मैं बताऊँगी, और ये श्री विद्या का जो ऊंचा जो लेवल है जहाँ पर श्री यंत्र का जो मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, इसको हम कैसे पूजा कर सकते हैं, इसमें श्री यंत्र में कम से कम 360 देवी देवता है, तो कहाँ कहाँ बैठे हैं आप, छोटी सी जैसी श्री यंत्र है ना, अब आप खोलो, अभी मैं आपको ऑडियंस को बता देती हूँ, स्वस्तिका आ गए तो बहुत अच्छे, नहीं आ पाए तो भी मौका छोड़ती नहीं हूँ, जैसे यहाँ पर बैठे हो ना, यहाँ पर सिद्धियाँ बैठी होती, अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति भुक्ति मुक्ति, ये सिद्धियाँ बैठी हैं, हमको यही तो चाहिए, छोटी छोटी सिद्धियाँ, यू नो सिंपल। जैसे मैं कल मॉरिशस उतरी और हम जहाँ ठहरे थे तो वो स्थान मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो सवेरे से मेरा मन था कि मुझे ना एकदम बीच पर रहना है, मतलब बीच वॉकिंग, अब सवेरे से मेरे दिमाग में चढ़ चुका है बीच पर जाना, अब मुझे मॉरिशस का इतना आता पता नहीं था, हम लोग यहाँ पर बोवेलॉन मॉल है शायद
0: जी, जी, जी।
1: तो हम लोग वहाँ पर खाना खाने चले गए, खाना खाने बैठे तो उस मॉल के जो ओनर थे उनको हमने कहा कि हमको एक अकोमोडेशन अच्छा दिखाओ, तो वहाँ पर चलते फिरते जिस होटल में मैं भी रही हूँ ब्लू रूफ करके है
0: जी।
1: उनके ओनर वहाँ पर चलते फिरते आ गए, मैं अणिमा सिद्दीक आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, उनको मेरी बारे में पता चला, उन्होंने बोला आप हमारे होटल में आके रह लीजिए। जब मैं होटल गई, होटल लाइक बीच के ऊपर है, मैं सवेरे से सोच रही हूँ मुझे बीच पर होटल चाहिए, अब देखो ये अणिमा सिद्धि है, समझ में आया ना, अब महिमा सिद्धि कह दो, मैं मॉरिशस में आई हूँ, मैं तो नहीं जानती थी क्या हो रहा है यहाँ पर, आज मैं यहाँ पर बैठ करके भगवान की महिमा गा रही हूँ ना, वो महिमा से किसकी महिमा हो रही है, इस शरीर की महिमा हो रही है, महिमा सिद्धि गरिमा सिद्धि, हर ये छोटी छोटी सिद्धि जो आप सोचते हो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बड़ी, ये सब यहाँ पर बैठती है। मैंने 14 साल की उम्र से इनकी पूजा की है, ये सिद्धियाँ मेरे आगे पीछे दौड़ती हैं, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पर और भी शक्तियाँ बैठती हैं, योगिनियाँ बैठती हैं, और फिर ये बिंदु पर जब आप आते हो यहाँ पर शिव और शक्ति कामेश्वर कामेश्वरी बैठती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सृष्टि का विस्तार होता है, यहाँ से यहाँ लेकर के सृष्टि जाती है, ये जो स्थान है इसको हम मणिद्वीप कहते हैं, हम सब यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ आकर के अपने असली पता को भूल गए। तो जो लोग स्वस्तिका में आएंगे उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस, आप भगवान के साथ जुड़ने आए हो, तुम्हारा क्या स्थान है, तुम कौन हो ये बताऊँगी। तो बड़ा सरल तरीके से कहानियों के माध्यम से। तो स्वस्तिका में कल है प्रोग्राम 5:30 से 8:30 बजे, फिर

0: सैटरडे को, फिर संडे को है सुबह 9 बजे से, और उसके बाद हम लोग ने एक और प्रोग्राम रखा है सितंबर 4 तारीख को, जहाँ पर मैं यंगस्टर्स को स्पेसिफिकली इनवाइट करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि ये कठिन मार्ग नहीं है, आप जब जुड़ोगे हमारे एंशियंट रूट से ना, आप देखोगे इसमें बहुत आनंद है और आपके जीवन को ये बहुत प्रशस्त करेगा, आपको एक बहुत अच्छा नागरिक बनाएगा, आपके जीवन में सौंदर्य और आनंद ये भर देगा गीता के मैसेज को. तो एक कॉम्पिटिशन भी अरेंज कराया गया है और साथ में गीता के ऊपर सेमिनार भी होंगे, गीता के ऊपर चर्चा भी होगी. तो मैं परिवारों को इन्वाइट करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को खास करके लेकर के आइए और इसको साथ में बैठ करके सुनिए. एक माँ से आप मिलेंगे, माँ से हमारी पुरानी कहानियाँ सुनते सुनते आप भगवान से जुड़ेंगे. बस मैं आपको आपका असली परिचय कराना चाहती हूँ, आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप दैवी हो, आप शिव के अंश हो, आप देवी के अंश हो, यही बात मैं मॉरिशस वालों को बताना चाहती हूँ.
1: गुरु माँ, अब हम अंतिम पड़ाव में पहुँच गए हैं. जाते जाते जितने सारे लोग इस वक्त ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो आप दुख अनुभव कर रहे हैं, उस दुख को आप इतने सीरियसली लो मत. आपके पास वो ताकत है कि आप अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर शक्ति का स्वरूप है. मैं मॉरिशस आई, छोटे छोटे ऐसे स्टोन्स हैं यहाँ पर, तो मैं मॉरिशस में बहुत वोल्केनिक स्टोन्स हैं, मैंने ऐसे ये स्टोन पहन के रखा हुआ है. तो इन स्टोन्स में इतने चार्जिंग है, समझ में आया? तो मैं मॉरिशस वालों को बोलना चाहती हूँ कि आप जहाँ बैठे हो, आप एक शक्ति का पुंज हो, आप अपने आप को श्री विद्या सीख करके उस शक्ति को अपने घर में लेकर के जा सकते हो, उस शक्ति को चार्ज कर सकते हो. और साथ में कुछ कुछ स्टोन्स हैं, इनको चार्जिंग की मेथड आप सीख लो, अपने जीवन को आप चार्ज होकर के जियो. जैसे रोज बैटरी चार्ज करते हैं, वैसे अपने जीवन को भगवान से जुड़ करके चार्ज होकर के जियो. गीता के ज्ञान को पाओ. डू नॉट जस्ट इनहेरिट द रिचुअल्स ऑफ योर एंसेस्टर्स, इनहेरिट देयर विजडम. डू कम, डू मीट, डू लिसन. उस विजडम को अपने अंदर जगाओ, अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल डालो, जीवन में सुख को अनुभव करो, पूर्णता से जीवन जियो, भोग भी पूरी तरह से लो और साथ में मोक्ष का भी रास्ता को प्रशस्त करो. यही मॉरिशस वालों को मैं कहना चाहती हूँ.
1: बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ कि आज आप यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही दूर होकर के यहाँ पर आकर के आप अपने जो संतान यहाँ के हैं, यहाँ के भूमि के जो बच्चे हैं, उनको श्री विद्या के माध्यम से आध्यात्मिक जो ज्ञान है आप दे रहे हैं. इसके लिए MBC की पूरी टीम की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कृतज्ञ हैं कि जिस प्रकार से आप यहाँ पर आकर के अपने जितने सारे जो ज्ञान हैं उसका साझा कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: बहुत बहुत अच्छा लगा विदय. थैंक यू टू MBC फॉर इन्वाइटिंग मी और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ से मैं इस ज्ञान को मैं लोगों तक बांट पाई. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर.
1: जी हाँ बिल्कुल. आज की चर्चा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होने से पहले इस बात को गौर से सुनना कि हम दूसरों पर ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, हम भूल गए हैं खुद पर भी हमें उम्मीद रखना चाहिए. हो सकता है सब लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर खुद से खिलाफ हो जाएंगे तो काम नहीं होगा. खुद पर विश्वास रखिए, इस विश्वास को दृढ़ बनाइए और श्री विद्या का पूरा आनंद उठाइए. अगर आप स्वस्तिका मंदिर जाएंगे तब तक अभी को दीजिए अनुमति. नमस्कार और प्रणाम.

0: Time check, 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान व्यापार घाटे में बढ़ोतरी को लेकर अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी ने एक बुनियादी बात की तरफ संकेत किया है। मॉरिशस अपने इस्तेमाल का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है, इसमें ईंधन सबसे महत्वपूर्ण है और हाल में वैश्विक अस्थिरता के साथ इसकी कीमत बढ़ने से आयात में खर्चे सीधे तौर से बढ़े हैं। हालांकि उनका ये भी मानना है कि मॉरिशस में आयात किए जाने वाले सामानों में कुछ ऐसे हैं जिनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। वे खास तौर पर पर्यटन सेक्टर का जिक्र करती हैं, एक ऐसा उद्योग जो विदेशी मुद्रा तो कमाता है लेकिन साथ ही आयात से जुड़ा काफ़ी खर्च भी करवाता है। होटल बनाने से लेकर रोज़मर्रा के कामकाज तक इस्तेमाल होने वाले सामानों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है, इसलिए मनीषा दुकोनी के अनुसार संरचना के स्तर पर ही बदलाव की आवश्यकता है। वे इस बात पर जोर देती हैं कि समस्या मात्र आयात तक सीमित नहीं है बल्कि मॉरिशस के निर्यात को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायिक क्षेत्र में असाइजेज अदालत के स्तर पर सजा सुनाए जाने के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 54 के मुकाबले 2025 में 104 लोगों को सजा सुनाई गई, खासकर ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए। ये जानकारी न्यायपालिका की 2025 की सालाना रिपोर्ट में सामने आई है जो कुछ दिन पहले ऑनलाइन प्रकाशित हुई है। 2025 में देश की अलग अलग अदालतों में 92,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। मॉरिशस में बारिश की मौजूदा कमी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के जरिए पानी के जिम्मेदार इस्तेमाल और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। गुरुवार को जोन 4 के 15 से सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों ने वाकवा में सतत विकास पर आधारित एक शैक्षिक परियोजना के नतीजे प्रस्तुत किए। ग्रीन हाउस, सब्जियों के बगीचे, कंपोस्टिंग, बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम और स्थानीय तथा औषधीय पौधों वाले बागीचे, कुछ 155 छात्रों ने 3 महीनों के अंदर अंदर 32 प्रोजेक्ट डिजाइन करके तैयार किए। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को सब्जियां उगाना और पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाना सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ये पहल देश के चारों एजुकेशनल जोन्स तक बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 600 तक पहुंच गई है जबकि लापता हुए लोगों की तादाद 3,000 पार कर गई है। इनमें 500 से ज़्यादा विदेशी मूल के लोग हैं। राहत कार्य जारी है। भारत की तरफ से 50 टन मूलभूत सामान और दवाइयों का कंसाइनमेंट भेजा गया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।

पुकारना मना है या ए कहना मना है, तो फिर मस्जिद में जो जमात होती है, जमात के अंदर जो हम अत्तहियात पढ़ते हैं, चाहे हम अकेले नमाज पढ़ें, तो अस्सलामु अलैका अय्युह नबी तो जरूरी है। अच्छा, इनसे कोई पूछे कि मैं मस्जिद में हूं और किसी से कहता हूं, ए भाई जरा मेरी बात सुने, तो मैंने तो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा, तो फौरन सामने से जवाब आएगा, आपने खुदा समझ के नहीं पुकारा। तो यही जवाब है कि अस्सलामु अलैका अय्युह नबी जब हम कहते हैं तो हुजूर को खुदा समझ के नहीं कहते, अल्लाह का बंदा समझ के कहते हैं। यहां मुराद है इबादत। और रद मुशरिकीन मक्का का है जो 360 बुत की पूजा करते थे। तो मस्जिद में अल्लाह की इबादत करो, बुतों की पूजा मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत अता फरमाए। असल में मुसलमानों पर शिर्क का इल्जाम लगाना ये एक बहुत बड़ा शैतान का वार है। शैतान किसी को इबादत से नहीं रोक सकता, तो उन्हें इस जुर्म अजीम में मुब्तला कर देता है। इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क जरूर जुल्म अजीम है, मगर मुसलमान पर शिर्क का इल्जाम लगाना यह भी जुल्म अजीम है। यहां तक के हदीस पाक में फरमाया, तफसीर इब्ने कसीर में इस हदीस पाक को इब्ने कसीर ने लिखा। इब्ने कसीर की तफसीर का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो वो लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स कुरान पढ़ेगा, चेहरे पर कुरान का नूर होगा, इस्लाम उसकी चादर होगी, मगर नूरे कुरान से भी महरूम हो जाएगा और इस्लाम की चादर भी उसकी दूर हो जाएगी, यानी इस्लाम से बाहर हो जाएगा। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों होगा? तो आपने फरमाया, वो अपने पड़ोसी मुसलमान पर शिर्क का इल्जाम लगाएगा। सहाबा ने फरमाया, मुशरिक कौन होगा? फरमाया, ये कुरान पढ़ने वाला, ये अल्लाह अल्लाह करने वाला मुशरिक होगा। मुसलमान पर शिर्क का इल्जाम लगाने वाला खुद दारे इस्लाम की फिक्र करे कि ये शिर्क अब उसकी तरफ लौटेगा। तो मुसलमान पर शिर्क का इल्जाम लगाना, भाई मुसलमान कहते किसे हैं जो मुशरिक ना हो? तो मुसलमान पर शिर्क का इल्जाम लगाना दर हकीकत खुद ईमान से महरूम होना है। तो शैतान ने इस तरह गुमराह किया कि बात बात में शिर्क शिर्क शिर्क शिर्क। शिर्क की हकीकत क्या है? कौन सी चीजें शिर्क हैं, कौन सी चीजें शिर्क नहीं? जो चीजें शिर्क हैं उनसे किस कदर बचना जरूरी है? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए क्या पैगाम दिया कि आपने फरमाया, वल्लाहु इन्नी मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी वलाकिन अखाफु अन तनाफसु फीहा। खुदा की कसम, अपने विसाल से सिर्फ 3 दिन पहले आप फरमाते हैं, खुदा की कसम, बेशक मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, मेरी उम्मत मेरे बाद शिर्क नहीं करेगी। हां, इस बात का खौफ है कि मेरी उम्मत, तुम लोग दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे। आज दुनिया की मोहब्बत में सभी गिरफ्तार हैं, लेकिन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा है, आपकी दावत तौहीद का सदका है कि ईसाइयों ने चंद मौजजात देखे तो हजरत ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा समझ लिया, लेकिन कितना ही गुनाहगार मुसलमान हो, कितना ही दीन से दूर हो, लेकिन उससे पूछें तो वो यही कहेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत बुलंद बाला है, मगर आप खुदा नहीं, इला नहीं, माबूद नहीं, खुदा के बेटे नहीं, बल्कि आपको जो कमाल हासिल है वो अल्लाह की अता से है, बिइज़्निल्लाह है। ईसाइयों का जब रद्द किया गया तो ईसाइयों को यही बताया गया, इस्लाम मानता है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को शिफा दी, लेकिन कुरान ने यह कहा बिइज़्निल्लाह, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की अता से उन्होंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज दीन से कितना भी दूर हो मुसलमान, वो यही कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुदा है, ना इलाह है, ना माबूद है, ना खुदा के बेटे हैं, आपको जो ताकत है वो अल्लाह की अता से है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं। ये जुमला हर मुसलमान कहता है। जब इतना अकीदा है तो शिर्क का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया।

0: बिला वजह जबरदस्ती मुसलमानों पर शिर्क का इल्जाम लगाना, और खुसूसन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरी उम्मत शिर्क कर ही नहीं सकती, तो हम हुजूर के फरमान को सच्चा माने या लोगों की बातें माने कि लोग कहें कि आज मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क में मुब्तला हो गई। अलमान वल हफीज, इसकी हकीकत जानना जरूरी है, ये कैसेट जरूर सुने, शिर्क की हकीकत।
1: وأنه لما قام عبد الله يدعوه और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसकी इबादत करने खड़ा हुआ, कादू यकूनून अलैह लिबदन, तो वो उनके पास इस कसरत से जमा हुए कि करीब था वो इन पर आ पड़े। इससे मुराद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वादिये नखला में नमाज़े फजर को अदा फरमाया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत तिलावत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम की इक्तिदा नहायत अजीब और पसंदीदा जिन्नात को मालूम हुई। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा मंजर न देखा था और ऐसा बेमिसल कलाम न सुना था।
0: कुल, ऐ महबूब आप फरमाइए, इन्नमा अदउ रब्बी, मैं तो अपने रब ही की इबादत करता हूं, वला उशरिकु बिही अहदन, और मैं उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराता, मद्द मुकाबिल खुदा इला माबूद नहीं समझता। कुल, ए महबूब आप फरमाइए, इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदन, जाती तौर पर मैं तुम्हारे लिए मालिक नहीं हूं, ना नुकसान का और ना ही नफे का, मुझे जो ताकतें हैं वो अल्लाह की अता से हैं। ये अकीदा हमारा भी होना चाहिए। खैर, ये तो मुशरिकों का जवाब दिया गया, लेकिन हम में जो ताकत है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा ओहदा है, हमारी इज्जत है, शौहरत है, सलाहियतें हैं, तो सिर्फ जबान से ना, दिल से भी तस्लीम करें कि हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो रब की अता है। हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी। कुल, ए महबूब आप फरमाइए, इन्नी लन युजीरनी मिन अल्लाहि अहदुन, बेशक हरगिज अल्लाह से मुझे कोई भी बचा नहीं सकता, यानी मैं खुदा नहीं हूं, अल्लाह का महबूब बंदा हूं, तो मैं अल्लाह से मुकाबला कभी नहीं करूंगा और ना कोई कर सकता है। ये मुशरिकों को समझाया गया कि नबी तो पाक हैं, मासूम हैं। मुशरिकों को समझाया गया कि तुम अल्लाह का मुकाबला कैसे करोगे जब अल्लाह का अजाब आएगा। वलन अजीदा मिन दूनिही मुल्ताहदा, और अगर मैं अल्लाह को नाराज कर लूं तो अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह मुझे ना मिले। नबी तो मासूम है, हमारी तालीम है कि तुम गुनाह करके अगर अल्लाह को नाराज कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत जिनकी खातिर तुम गुनाह करते हो ये तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। इल्ला बलागम मिन अल्लाह व रिसालातिही, मगर अल्लाह की तरफ से पहुंचाना है और पैगाम है जो मैं तुम्हें देता हूं, तुम मेरी बात समझो और इन बातों पर गौर करो। वमन यअसिल्लाह, और जो कोई अल्लाह की नाफरमानी करे, वह रसूलहू, और उसके रसूल की नाफरमानी करे, फइन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदन, पर बेशक उसके लिए जहन्नम की आग है, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। देखिए, ये फिर अर्ज करूं कि टीवी पर जो अक्सर मुफस्सिरीन आते हैं उनमें से बाज ऐसे हैं जो आलिम भी नहीं है, कोई जानवरों का डॉक्टर है, कोई इंसानों का डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, थोड़ा तर्जमा सीख लिया, थोड़ी अरबी सीख ली और ये मुफस्सिर बन गए। अब ये किसी आयत पर जब तबसरा करते हैं तो पूरे कुरान पर या पूरी अहादीस के जखीरे पर या तफासीर पर नजर नहीं होती। तो टीवी पर एक साहब आए और उन्होंने नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ये बात कह दी कि कुरान पाक की तफसीर करते हुए अपनी तरफ से ये उन्होंने ये बात कह दी कि कहीं होगा खालिदीन फीहा, जहन्नमियों का जिक्र होगा और वहां ये होगा कि हमेशा रहेंगे। तो कहने लगे, देखे जहां भी जन्नत का जिक्र है वहां अबदन के अल्फाज हैं, और जहन्नम का जिक्र है वहां।

अबदन के अल्फाज नहीं। लिहाजा अगर कोई काफिर जहन्नम में गया भी तो फिर बिल आखिर वो भी जन्नत में चला जाएगा, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो देखिए यहां पर तो फ़इन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदन के अल्फाज यहां पर तो हैं और कई मकामात पर हैं। तो कुरान की ऐसी तफसीर करना हराम है कि जो दूसरी आयत से टकराए। तो इन्होंने कहा कि पूरे कुरान में अबदन के अल्फाज जहन्नमियों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं। तो ये नादानी है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की गलत तशरीहात से हमें महफूज फरमाए। तो जो काफिर है जिसका खात्मा कुफर पर हुआ वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। हत्ता इदा रऔ मा युअदूना, यहां तक कि जब वो देखेंगे जिस अजाब का उनसे वादा किया जाता है। फसयालमूना मन अदअफ नासिरन, पसंद करीब वो जान लेंगे कि कौन कमजोर मददगार है। वो अकल्लु अददा, और किसकी तादाद कम है। काफिर कहते थे कि मुसलमान कमजोर हैं, इनकी तादाद कम है। तो फरमा कल बरोज़े क़यामत पता चलेगा कि तादाद किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। कुल ए महबूब, आप फरमाइए। इन अदरी अकरीब मातू अदूना अम यजअलू लहू रब्बी अमदा, हो सकता है जिसका वादा तुमसे किया जाता है वो करीब हो, और हो सकता है मेरे रब ने उसे दूर रखा हो। मुराद ये है कि कयामत के साल का तायुन और अजाब और मोहलत कब खत्म होगी इसका तायुन बताने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया। तो फरमाए तुम ये गौर करो, हो सकता है ये अजाब अब करीब आ चुका हो, जैसे मौत है। तो हम अल्लाह के नेक बंदे अगर अल्लाह की अता से जान भी लें कि फलां मर जाएगा इतने दिनों के बाद, तब भी उन्हें बसा वक्त इजाजत नहीं होती कि वो बताएं। तो वो ये कहेंगे हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का एक लम्हा बाकी हो सकता है साल बाकी हो, तुम जिंदगी का आखिरी दिन समझ कर उसकी तैयारी करो। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदन, गैब का जानने वाला अपने गैब का इल्म किसी को नहीं देता। यहां तक तो आयत में इतना ही हिस्सा है, लेकिन जब कुरान पाक की आयत को आधा लिया जाए या मफहूम को आधा लिया जाए, ये आयत तो मुकम्मल है, लेकिन देखें इस पर 26 आयत पर ला लिखा हुआ है। ला के माना क्या होते हैं? इस पर रुकना नहीं है, आगे मिलाकर पढ़ना है। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसने ये लिखा, वो किताब आज भी मेरे पास मौजूद है, उसने ये लिखा तफसीर करते हुए कि अल्लाह ताला गैब का इल्म किसी को नहीं देता। फिर ये आयत करीमा यहां तक लिखी आहदन तक, हालांकि यहां पर ला लिखा हुआ है कि यहां पर वक्फ दुरुस्त नहीं, आगे जाकर आप वक्फ करें। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी आहदन, और क्या ये तो कुरान पाक में है, गैब का जानने वाला किसी को गैब का इल्म देता ही नहीं। कितनी बड़ी नादानी है कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदलते हैं। अल्लामा इकबाल ने दुरुस्त कहा, इल्ला मन तदा मिर रसूलिन, आम लोगों को गैब का इल्म नहीं देता मगर अपने रसूलों को चुन लेता है, माना यह उन्हें गैब का इल्म अता फरमाता है। और फिर जब यह गैब का इल्म अता फरमाता है, यह असल में काहिनों की मजम्मत है जो कहते हैं कि जिन्नात हमें गैब का इल्म देते हैं। फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि, जब गैब का इल्म अल्लाह ताला अता फरमाता है नबियों को रसूलों को, तो इनके आगे वमिन खल्फी, और इनके पीछे रसदन, फरिश्तों का पहरा चलता है। कोई जिन उस गैब को चुरा नहीं सकता, लिहाजा जिन्नात को गैब का इल्म नहीं, अल्लाह के नबियों को गैब का इल्म अल्लाह की अता से है, और नबियों से फैज मिला औलिया को, जितना अल्लाह ने चाहा उन्हें गैब का इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया। ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم, ताकि अल्लाह इस बात को जाहिर फरमा दे कि बेशक इन सब रसूलों ने अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए। وأحاط بما لديهم, और जो कुछ उनके पास है सब का अल्लाह ने इहाता फरमा लिया। وأحصى كل شيء عددا, और हर चीज की गिनती को उसने पूरा किया। हर चीज अल्लाह ताला के
इल्म और कुदरत के तहत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान

यूं ही शैतान हमारे अक्ल के दरवाजे पर दस्तक दे तो फौरन हमने पांच काम करने हैं। उन पांच उमूर की जो बंदा आदत बना लेता है उसके ख्यालात पर शैतान को काबू हासिल नहीं होता, शैतान को तहक्कुम हासिल नहीं होता, शैतान इंसान के ख्यालात पर कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी इन पांच किस्म के ख्यालात को अगर इब्तिदा से ही हम जड़ से निकाल फेंकें तो शैतान हमारे दिल के उन बंद दरवाज़ों को, गुनाहों के वो दरवाज़े जो हम बंद कर चुके हैं उनको एक मरतबा फिर ओपन करने में कामयाब नहीं हो सकता। और अगर हम तौबा कर रहे हैं और अगर इब्तदाई पहले दरवाजे पर भी मेहनत कर रहे हैं और उस दौरान भी अगर शैतान बार बार इस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बार बार हमें गुनाहों के इर्तिकाब की जानिब रागिब करने की कोशिश कर रहा है, तो इन पांच ख्यालात का याद रखना, इनको जहन नशीन कर लेना इंतहाई ज़रूरी है। और इसकी तरतीब क्या है नाज़रीन किराम, जो ही ये पहला ख्याल आए जिस शख्स को हर वक्त अपनी सांस के ज़रिए अल्लाह अल्लाह की सदाएँ बुलंद करने की आदत हो, इसे कहते हैं ज़िक्र पास अनफास। यानी जब इंसान सांस लेता है तो अपनी नाफ से अल्लाहू अल्लाहू का विर्द जारी रखे। मिसाल के तौर पर जब सांस लें, हर सांस के साथ जो शख्स अल्लाहू की आदत बना ले और कोशिश करे कि दिन का अक्सर वक्त जब भी सांस ले, जब भी इनहेल करे, जब सांस लेता है अल्लाह का नाम ले और बाहर निकाले तो हु की सदा बुलंद हो। जिस शख्स को इसकी आदत हो जाए उसके जहन पर शैतान कंट्रोल हासिल नहीं कर पाता। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ही हाजिस की कैफियत पैदा हो, मिसाल के तौर पर जो ही ख्याल पैदा हो, पहला ख्याल आए कि गुनाह का इर्तिकाब कर या फकत ख्याल आए कि गुनाह का मौका है तो गुनाह कर सकता है, तो उस ख्याल के आने पर फौरन तौबा की चार शरायत के साथ तौबा कर ले। अगरचे गुनाह का इर्तिकाब नहीं हुआ, जिस तरह मैंने इब्तिदा में बयान किया था कि अगर इंसान गुनाह करता नहीं है, बगैर गुनाह के तौबा की चार शरायत के साथ तौबा कर लेता है तो ये तकवा है, परहेजगारी है। जो ही वो ख्याल आया फौरन तौबा की चार शरायत के साथ तौबा कर ले। उसके बाद फौरन ये कहे या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। मुस्नद इमाम अहमद की ये रिवायत है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। या मुकल्लिबल कुलूबी, ये लिख लीजिएगा, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, है दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। इसका तकरार हो, इस विर्द को जारी किया जाए। यानी सबसे पहले ये आदत बना लें, जब भी सांस लें अल्लाहु अल्लाहु। और नाज़रीन इकराम, एक ऐसी प्यारी आदत है कि इंसान को जब ये आदत इंसान बना लेता है तो इंसान सो रहा होता है लेकिन उसकी सांस अल्लाहु अल्लाहु का विर्द कर रही होती है। इंसान को जब आदत बन जाती है, और हमारे यहाँ बरतानिया में बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल किया, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया, वो काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, दुनिया का काम कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त अल्लाहु अल्लाहु की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। ये आदत बना लें। दूसरा, जो ही हाजिस की कैफियत पैदा हो, जो ही शैतान इंसान के दिल पर, इंसान के दिमाग पर, इंसान की अकल पर ख्यालात पैदा करने की कोशिश करें, फौरन तौबा की चार शरायत के साथ तौबा कर ले, प्लान के साथ तौबा कर ले। पॉइंट नंबर थ्री, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, है दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर कायम फरमा। नंबर तीन। नंबर चार, दुरूद शरीफ की कसरत शुरू हो जाए। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद

दो सलाम के फूल निशावर करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। बार बार दुरूद पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी जूं ही ख्याल आए तो दुरूद शरीफ की भी कसरत हो। पॉइंट नंबर चार। पॉइंट नंबर फाइव, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, इसकी कसरत कर दें। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه। حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابي موسى رضي الله تعالى عنه کو کہ اپ کہیں پڑھیں لا حول ولا قوه الا بالله, کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین اکرام, جو شخص ہر وقت حاجز کی اگر کیفیت پیدا ہوگی تو فوراً अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए इन पांच उमूर पर अमल कर ले। फिर अगर शैतान का हमला मजीद बढ़ता है तो हाजिस से खातिर पर चला जाता है, यानी बार बार ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, फिर फौरन इन पांच उमूर पर अमल करें। और फिर अगर खातिर से हदीस नफ्स तक चला जाता है फिर इस पर अमल करें, हदीस नफ्स से अगर हम तक चला जाता है फिर इन पांच पर अमल करें, और आदत बना ले। ऐसी आदत बन जाए नाज़रीन किराम कि इंसान ये पुख्ता अहद कर ले कि मैंने अगर दिल के दरवाजे बंद भी नहीं किए, अगर तौबा के मराहिल इब्तिदा से भी शुरू हैं, अगर मैं फ़कत आँख पर भी अमल कर रहा हूँ तो इन पाँच चीज़ों को याद रखूँगा, हाजिस, खातिर, हदीस नफ्स, हम और आज़म, और कभी भी शैतान को आज़म तक नहीं पहुंचने दूंगा। जब हम ये रुकावटें शैतान की राह में खड़ी कर देंगे, ये ऑब्स्टिकल्स, ये हर्डल्स खड़ी कर देंगे, तो शैतान अपने हमलों में कामयाब

अल्लाह ने हर इंसान के साथ एक मुहाफिज फरिश्ता पैदा किया, और अगर वो मुहाफिज फरिश्ता इंसान के साथ ना हो, शयातीन इंसान को वैसे मार डालें, इंसान को कत्ल कर डालें, अगर अल्लाह ने हिफाजत के लिए फरिश्ता मामूर ना किया हो। ये इंसान के दुश्मन है, और इंसान को शयातीन राह मुस्तकीम से हटाने के लिए दिन रात कोशिश है। फिर ये इतना मक्कार दुश्मन है, हर एक को एक लाठी से नहीं हांकता, इसे पता है कि किसको कैसे भटकाना है। एक शब जिंदादार जिसको सहरी के वक्त उठ के आंसू बहाने का लुत्फ मिलता है, अब शैतान उसको कहे कि सहरी के वक्त उठा ना कर, तो वो शब जिंदादार जब उसके आंसू मुसल्ले में जज्ब होते हैं और वो उतरते हुए आंखों से आंसू इतनी लज्जत उसे देते हैं कि दुनिया माफीहा की लज्जतें एक तरफ और याद खुदा में रोना एक तरफ। अब शैतान किसी को कहे कि सहरी के वक्त उठा ना कर, तो कोई शैतान की ये बात थोड़ी मानेगा, तो शैतान उसे ये कहता भी नहीं है, उसे कहता नहीं नहीं उठा कर, लेकिन सुबह बता दिया करके मैं तहज्जुद गुजार हूं, उसे रिया में मुबतला करेगा। एक शख्स जिसकी तबा में फयाजी गुंदी हुई है, अब शैतान उसको कहे कि तू सखावत ना किया कर, बुखल का दरस दे, तो तबअन जो सखी शख्स है जिसकी फितरत के अंदर फयाजी है, तो वो शैतान की इस बात को तो नहीं मानेगा, शैतान उसे यह कहता भी नहीं कि तू बुखल कर, उसे फजूल खर्ची की तरफ लगा देगा, उसे उन कामों में खर्च करने की तरकीब देगा जिसका उसको और मुआशरे को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए शैतान रुख बदलता है। एक शायर जिसकी तबा के अंदर लताफत है, नरमी है, मोहब्बत है, अब शैतान उसको कहे कि फलां को कत्ल कर दे, तो शायर तो शाख से फूल भी नहीं तोड़ सकता, तो फिर वो किसी का सर काट दे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। शैतान एक शायर को यह कहता भी नहीं, उसे वो शराब और शबाब के पीछे लगा देता है। अब इतना सख्त दुश्मन, इतना मक्कार दुश्मन, हजरत सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे ऊपर सहाबे नूर छा गया और आवाज आई, अब्दुल कादर तूने अल्लाह की इतनी इबादत की है, इतनी रियाजत की है कि शरीयत का हम तुम्हें अब मुकल्लफ नहीं रहने देते, और अब तू नमाज ना पढ़े और दीगर आमाल ना करे तो तुझे कोई पकड़ नहीं, मैं तेरे ऊपर ऐसे राजी हो गया हूं। तो ऐसे बादल से आवाज आई, कहते मान मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर इबादत का मुकल्लफ ना होना होता तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भड़कर कौन अल्लाह का मुकर्रब था। हत्ता ततवर्रमा कदमा हो, हुजूर जब नमाज पढ़ते और इस कदर लंबा क्याम करते, हुजूर के मुबारक पांव सूज जाते, लेकिन उनको तो कहा गया वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, उन्हें तो कहा गया कि आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत करनी है, तो मैं कौन हूं कि मुझे कहा जाए कि तू अब इबादत का मुकल्लफ।

हलफ नहीं रहा, कोई बात नहीं है। तो कहते हैं मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा तो वो जो मुझे नूर नजर आ रहा था वो स्याही में बदल गया। तो वो इबलीस था जो इस रंग में मुझे भटकाना चाहता था। कहा अब्दुल कादर इस मर्तबे पे पहुंचे हुए कितने लोगों को मैंने गुमराह कर दिया, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। तो मैंने कहा जालिम मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया। तो कहा फिर बच गया है, कई मैंने यूं लूट लिए। तो इतना मक्कार दुश्मन हो जो हमारे ऊपर मुसल्लत है और दिन रात कोशा है हमारी मताए अमल लूटने के लिए, मताए ईमान लूटने के लिए, तो फिर मुझे बताओ कि हम क्या गाफिल होके बैठेंगे? ऐसे नापाक वजूद का मुकाबला कोई आसान है जो हमारी मताए अमल लूटता है, मताए ईमान लूटता है, हमें अमल करने नहीं देता, करें तो वसवास डाल रहा होता है, करने तो रिया में और तकब्बुर में मुबतला करके, उजब में मुबतला करके किया हुआ अमल भी लूट लेता है। मुझे बताओ ये कोई जो है वो सोखा काम है कि हम मुकाबला करें?

रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, कहकशां राह गुजर चांद सितारे जर्रे सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते

अहले ईमां के लबों पर है दुरूद और सलाम। यौमे मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं, उनकी आमद के पयामी है सबा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आ

सल्ले अला की है सदाएं लब पर, लोग सदके हुए जाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं।

खालिक ने कुछ इस तरह उतारे हैं मोहम्मद, खालिक ने कुछ इस तरह उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दर जहरा पे ये जिब्रील ने सोचा, पैगाम किसे दूं कि ये सारे हैं मोहम्मद, सारे हैं मोहम्मद।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से काशी के निवासियों को सूचित किया जाता है, खासतौर रू भाले, टाने, टमाटाव, एडगर ओबेर, सेलेस्टे, रश्वर्फ और रिजर्व के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 30 अगस्त 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: हेलो, मौज करवा गुजराती गीतोना प्रोग्राम गीत बहार नी साथे। गीतोनी बहार, गीत बहार, गीत बहार।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: नमस्कार सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। इस समय 2:15 बजे हैं। हमारा आपका साथ है रेडियो मॉरिशस पर। हम हैं सुरेखा आपके साथ और दुआएं हमारे दिल में यही हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप खुश खुश रहें और मन आपका आनंदमय रहे। इस उम्मीद के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी पसंद कार्यक्रम।

0: आपकी पसंद।
1: और आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जहां से भी हमें सुन रहे हैं आप, बस इतना याद रखिएगा कि आपका ख्याल हमारे मन में बहुत रहता है। आपको खुश रखने का इरादा हमारा बड़ा प्यारा सा रहता है। सो आपकी पसंद कार्यक्रम में भाग लीजिएगा फ़ोन के ज़रिए या फिर मैसेजेस के ज़रिए। 5251700 आप मैसेजेस के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जो कॉल करना चाहते हैं तो आप कीजिएगा हमको कॉल 4028085 पर। आपकी पसंद के गाने आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, जहां भी होंगे आप हमें कॉल कीजिए या फिर मैसेज ज़रूर कीजिए। चलिए पहला गाना लेकर आए हैं आपके लिए, आपके नाम करते हैं हम। ये है धड़कन मूवी का गाना आपके नाम। आपकी धड़कनों में हमेशा बहुत ही प्यारे से धुन रहे, ये हमारी दुआ है।

तो चलिए हम आपकी पसंद कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं फिल्म ममता का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। ये गीत हम पेश करते हैं विश्वानी दुमन जी के लिए। विश्वानी जी ने मांगा है ये गाना वाकवा से अपनी बहनों के लिए शारदा और इंदिरा और सहेलियों के लिए नीला और प्रतिभा, शोभा जी, गीता गजाधर जी के लिए और हमारे सभी श्रोताओं के लिए।

तो चलिए अब धीरज जी की पसंद के गाने की ओर चलते हैं। थोयोले के धीरज जी ने मांगा है जो गाना वो है फिल्म तकदीर से लिया गया, और तकदीर मूवी का ये गीत हम पेश करते हैं थोयोले के धीरज जी के नाम हमारी पूरी टीम की तरफ से। ये है गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

तो चलिए जरा सुनते हैं हम मन मूवी का ये गाना। उदित नारायण की आवाज़ का ये गाना है और इस गाने की फरमाइश कर रही है फ्लिक ऑफ फ्लाक की अनीता जी, और उन्होंने ये गाना अपने पूरे परिवार और सभी दोस्तों के लिए मांगा है। तो चलिए जरा पेश करते हैं उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ों का ये गीत।

और अब चलिए जरा हम नॉर्थ डैम की रेहाना जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। रेहाना जी सुनना चाह रही हैं फिल्म जिंदगी का ये गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आप सुनवाना चाह रही हैं रेहाना जी अपनी सखी माला फवदार जी को और अपनी ननद प्यारी सी ननद सुरेखा जी को। तो चलिए रेहाना जी आपकी पसंद का गाना, आपकी दोनों सहेलियों के नाम।

और इस बार विद्यानंद जी की पसंद का गाना और लिया है हमने ये गाना मूवी पूनम से। विद्यानंद जी ने मेबग से इस गाने की फरमाइश सोहंती जी के लिए की। अमित, शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, राजीव, स्वीटी, हरवेश और अपने दोस्त विष्णु गजाधर के लिए जो रहते हैं शिवाला लोन मेबग, और मेबग की ही अपनी बहन बिंदु कालीचंद जी के लिए।

इस समय 2:45 बजे हैं और हम पेश कर रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। तो चलिए बहू बेगम मूवी का ये गाना हम लता मंगेशकर माफ कीजिए आशा भोसले की आवाज़ में पेश करते हैं। और बताना चाहेंगे हम अमीना जी को पोफाले की अमीना जी, ये गाना हम आपके लिए आशा भोसले की आवाज़ में पेश कर रहे हैं। सो आपकी चार बहनों के लिए फ़ाइमा, नाज़मा, फ़ज़ीमा और मुनीज़ा के लिए आपने ये गाना मांगा। सो उनके नाम करते हैं ये गीत, और आपके दोनों भाइयों के लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए। सो अमीना जी, ये गाना आपके लिए चल पड़ा।

और अब जो गीत पेश करेंगे आपके लिए वो होगा अलका याग्निक विनोद राठौड़ की आवाज़ों में कृष्ण अवतार मूवी का ये गाना। हम ब्रितानिया की संध्या जी के नाम करते हैं और संध्या जी के साथ साथ यही गाना हम पेश करते हैं।

इस समय 2:57 हुए हैं। पेश करते हैं आप लोगों के लिए अमानत मूवी का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये गाना हम सोनिया जी के लिए बजवा रहे हैं। सोनिया जी जो मोसेल मौसम तौंगे रहती हैं, उनके पति राजीव जी के लिए उन्होंने ये गाना मांगा है। सो इस गाने के साथ ही हम थोड़ा सा रोकेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम को, जो तीन बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए सक्रिय समाचार। सक्रिय समाचारों के बाद मिलते हैं हम कम्युनिके और कम्युनिके के साथ, और इसके बाद लेकर आएंगे आपके पसंद कार्यक्रम जिसे हम जारी रखेंगे 4 बजे तक। तो फिलहाल ये प्यारा सा गाना सुनिएगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: afternoon, everyone. I check your time. It's already 3 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ है। आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 10 महीने तक 3 पुलिस स्कूलों में प्रशिक्षण पाने के बाद 360 नए रिक्रूट्स पुलिस फोर्स में शामिल हुए हैं। उन्होंने आज सुबह वाकवा में आयोजित औपचारिक परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सोहजवाली की मौजूदगी में ये परेड लगी। प्रधानमंत्री ने पुलिस बल में शामिल हुए नए

0: जवानों से अपनी वर्दी का सम्मान करने और हमेशा निष्पक्षता के साथ अपनी सेवा निभाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में उनकी नियुक्ति देश और राष्ट्र के प्रति एक गंभीर और पवित्र प्रतिबद्धता है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने यह भी कहा कि वे सुब्रमण्यम कृष्णन की मौत की जो गुठी है वो सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश में सोमवार सुबह 10 बजे तक ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी रहेगी। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ज्वार के वक्त लहरें तट तक पहुंच सकती हैं। खासकर दक्षिण और पश्चिम में आम जनता से मछुआरों से और लेजर क्राफ्ट ऑपरेटरों से सावधानी बरतने की मांग की जाती है और तटों के पास से भी दूर रहने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी समंदर में। इसके अलावा तेज हवाएं भी बहेंगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। क्रॉसविंड्स के कारण सड़कों पर भी सावधानी बरतने की मांग की जा रही है। महात्मा गांधी संस्थान में आज सुबह देश के विरासतों, खासकर ऐतिहासिक जगहों और स्मारकों पर आधारित एक फोरम का आयोजन किया गया। इसमें गणराज्य के राष्ट्रपति और साथ में कला एवं संस्कृति मंत्री ने भी भाग लिया। इन विरासतों, स्थलों और स्मारकों की रक्षा के लिए और उनके मरम्मत के लिए कई कदमों का ऐलान किया गया। विदेश समाचारों में, नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या 600 पार कर गई है, जबकि 2400 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। आज चौथे दिन बचाव अभियान जारी रखा गया। हालांकि बारिश के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके में से एक त्रिशूली में बचाव अभियान में कई बाधाएं उत्पन्न हुई। मृतकों में कई विदेशी नागरिक शामिल हैं जो पर्यटक के रूप में वहाँ घूमने या फिर हिमालय की तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz पर Radio Mauritius.
3: NBC Radio 24 hours a day.
4: चलिए ज़रा हम आपके लिए पढ़ते हैं दो विज्ञप्तियाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सीबी अलेजी वेजे रोड और पेरेबिया के निवासियों को सूचित करता है। अलेजी वेजे रोड पेरेबिया के निवासियों को सूचित करता है कि कल रविवार 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी और सीबी सोचीज सीतेल लुमियर ग्रांबे के निवासियों को तथा गोंबे के पुलिस स्टेशन के आसपास के निवासियों को, आजुआ पराडाइज के निवासियों को और ओकिदे के निवासियों को सूचित करता है कि कल रविवार 30 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। सो ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 3:05 हुए हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम जारी है। वैसे हमने 2:15 से शुरू किया आपकी पसंद कार्यक्रम, इसे बढ़ा रहे हैं हम आगे, लेकर चलेंगे ये प्रोग्राम 4 बजे तक। सो चलिए हम सेंट जूलियन विलेज की नेताजी की पसंद का गाना आप तक पहुंचाते हैं। ये गाना है फिल्म अमर से लिया गया और नेताजी ने ये गाना पूरे खेदनी परिवार के लिए मांगा है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये गीत है।

चलिए, इस समय 3:09 हुए हैं, सो हम पढ़ते हैं, हम पेश करते हैं ये गाना, अजय मूवी से लिया गया, कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत हम पेश कर रहे हैं। पृथ्वीराज सैंट पियर की सुनीता जी की तरफ से, उनके पापा वसुदेव और उनकी मामा अर्शक उनके नाम।

और चलिए जरा अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी का ये गाना है। आतिफ असलम की आवाज़ का ये गाना हर कोई पसंद करता है। और फिलहाल तो ये फरमाइश है वृंदा जी की, जो कौंथोगिल की रहने वाली है। उन्होंने ये गाना अपनी सखियों के लिए मांगा है, सुनिधि, मीनाक्षी, गिनिमा और हेमी के लिए। तो चलिए ज़रा वृंदा जी की पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: Seven days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
2: और आपके पसंद कार्यक्रम है ये, हमसे रेखा आपका साथ दे रहे हैं, लेकर आए हैं आपके लिए हम लाट साहब मूवी का गाना। और ये गाना हम मोसीदा की कविता जी की पसंद पर पेश कर रहे हैं उनके पूरे परिवार के लिए जो शमी कपूर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और हमारे सभी सुनने वालों के लिए भी कविता जी ने इस गाने की फरमाइश की है।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: चलिए जरा हम मोहब्बत के दुश्मन मूवी का ये गाना सुनते हैं आशा जानू जी की पसंद पर. कोटेज से आशा जानू जी सुनना चाह रही है ये गाना और सुनवाना चाह रही है मामा कुमारी को, नेफ्यूज शुभम ऋषभ को, दीदी आरती और जीजू राज को, पूरे जानू परिवार को और चित्रा जी, भाई विजय जी के लिए और सभी सुनने वालों के लिए आशा जी ने इस गाने की फरमाइश की है.

बस चलिए ये गाना हम पेश करते हैं इस बार आप लोगों के लिए, होगा फिल्म आया सावन झूम के मूवी से लिया गया ये गीत, और ये गाना हम अब बंधु फैमिली के लिए बजवा रहे हैं तो ये लेके

ये है मोहम्मद रफ़ीक की आवाज़। ये गाना हम जैसु गुलाम जी की तरफ से बजवा रहे हैं रीता बखोरी जी के लिए, जो वैली भट्ट की रहने वाली हैं।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सो रेडियो मॉरिशस पर जानी अनजानी मूवी का ये गाना मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ है। आप सुनिएगा शांति जी की पसंद पर। कटेज की शांति जी ने ये गाना अपनी तीन बेटियों के लिए, तीन दामाद के लिए, दो नाती और एक नातिन के लिए और अपने पति के लिए तथा हमारे सभी सुनने वालों के लिए मांगा।

ये गाना है फिल्म सरस्वती चंद्र मूवी से लिया गया, लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गीत हम पेश कर रहे हैं माला जी के लिए जो कि वह जौंपा की रहने वाली हैं। उन्होंने ये गाना कनिष्क कविश सत्यम और कनिष्क के लिए मांगा है, उनके चार नातियों के लिए।

ये है अंतिम गाना हमारे आपके पसंद कार्यक्रम का। ये है दुश्मन मूवी का गाना जगजीत सिंह के स्वर में दर्द भरा। ये गाना है सुरागिनी जी ने इस गाने की फरमाइश की है अधीन परिवार और रघु परिवार के लिए, जो अपने परिवार के दो सदस्यों की याद में ये गाना मांगना चाह रहे हैं। और इस गाने के साथ ही हमारा आपका ये साथ यहाँ पर समाप्त होता है। आपकी पसंद कार्यक्रम समाप्त होता है, 4 बजे एक प्रोग्राम समाप्त होगा आपकी पसंद। उसके बाद आप सुन पाएंगे आज का साहित्य दर्पण कार्यक्रम, जिसे लेकर आ रही है डॉक्टर अलका दनपत। हमारी आपकी अगली मुलाकात कल सुबह 6 बजे होगी। तब तक के लिए शुभ शाम, शुभ शनिवार, नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण। प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की। दर्पण, साहित्य दर्पण। नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप? पूरी उम्मीद होगी कि थोड़ी बढ़ती ठंड में अच्छा लग रहा होगा। पिछले सप्ताह तो लगने लगा था कि बस गर्मी आ गई, और मन ने मान भी लिया था कि बस सब कपड़े धो के अब रख दो। अरे, अभी तो धुले ही नहीं कपड़े और सर्दी फिर से लौट आई। यही तो है मौसम का बदलना, मन का बदलना, मौसम का बदलना बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। मन के घोड़े भी सेकंड्स में कहाँ भागते हैं पता ही नहीं चलता। और बड़े प्यारे गीत आपने सुने मेरे साथ। तकनीकी सहायक के रूप में यज भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। तो श्रोताओं, हम लोग इतने फिल्मी गाने सुनते हैं सुबह से शाम तक, कुछ मनोरंजक गाने, कुछ अपनी पसंद के गाने, कुछ किसी को सुनाने के लिए हम मांगते हैं गीत। लेकिन आप देखिए, इन गीतों ने हिंदी को आगे बढ़ाने का कितना बड़ा काम किया, और इन गीतों में भी जीवन का साहित्य छिपा हुआ है। मतलब कुछ गीत तो ऐसे हैं कि जो आपको जीवन भर एक संदेश दे जाते हैं। आप अकेले हैं, आप दुखी

0: की हैं, आप सुखी हैं, आप हंस रहे हैं, आप नाचना चाहते हैं, आप शादी कर रहे हैं, आप जन्मदिन मना रहे हैं, कुछ गीत तो एवर ग्रीन है जो हर समय ही बजते हैं और सुनने को मिलते हैं और सुनाने को भी, सुनने को भी अच्छे लगते हैं। अब बात आती है हिंदी की और हिंदी साहित्य को पढ़ने में रुचि पैदा करने की। सचमुच फिल्मी गीतों ने हिंदी को देश विदेश तक बहुत दूर तक पहुँचा दिया। इन गीतों के कारण ही कितने विदेशी बच्चे बॉलीवुड फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और फिर उन फिल्मों को समझने की कोशिश करते हैं और हिंदी पढ़ना सीखते हैं ताकि वे समझ सकें कि डायलॉग क्या बोले जा रहे हैं। यद्यपि आजकल तो डबिंग या आजकल तो हम नीचे हमें उनके शब्दार्थ या उनके अर्थ अंग्रेज़ी में मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब उस भाषा को हम जानते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो वह मज़ा मैंने देवदास फिल्म फ्रेंच में देखी, पूरी तरह से डबिंग की हुई और बिल्कुल नहीं लगता था कि माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय को फ्रेंच नहीं आती है। इतने आजकल तो मशीनें एडवांस हैं कि डबिंग भी और लिप सिंकिंग इतनी बढ़िया होती है कि लग रहा था कि वे फ्रेंच ही बोल रही हैं। सोचिए, देवदास फिल्म की फ्रांस में डिमांड हुई और उसकी फ्रेंच में डबिंग की गई। तो श्रोताओं, ये जो गीत संगीत है ना, ये बड़ी ताकत रखता है और इसी के कारण आदमी फिर और आगे पढ़ना, समझना, लिखना चाहता है। और यही किया इन फिल्मों ने। असल में तो 1931 में पहली फिल्म आलम आरा आई जो बोलती थी। इससे पहले वाली सब फिल्में गूंगी फिल्में थी, उसमें ऑडियो का कोई विधान ही नहीं था। लेकिन 1931 में अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। तो आलम आरा फिल्म जो थी वह बोलने वाली फिल्म आई और वहीं से ही आप समझ लीजिए कि गीत संगीत भी शुरू ही हो गया। बस उसके बाद जो गीत संगीत फिल्मों में शुरू हुआ, तो आज तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि किसी फिल्म में नाच ना हो, गाना ना हो, तो वह फिल्म अधूरी सी लगती है। यहाँ तक कि कभी कभी फिल्म की कहानी कमज़ोर होती है लेकिन उसके गीत इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि उसी के कारण फिल्म लोग देखने जाते हैं। तो देखिए गीतों में कितनी ताकत होती है और अनेक गीतों ने देश विदेश में हिंदी को आगे बढ़ाया। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी सिनेमा ने, बॉलीवुड ने हिंदी को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। इसी तरह से 1951 में जब आवारा फिल्म आई, अरे आवारा हूँ या गर्दिश हूँ, आसमान का तारा हूँ, यह जो गीत था इसने तो सोवियत रूस में धूम ही मचा दी थी। आज भी इस गीत को वहाँ के लोग गाते हैं। यदि कभी कोई भारतीय लोग वहाँ पहुँच भी जाएँ तो उसे ये गीत वे सुनाते हैं। और ये गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ था, मुकेश के स्वर में था। इस गीत ने जहाँ वहाँ पर जैसा प्रभाव डाला, इसके साथ साथ मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, ये इस गीत ने भी कमाल कर दिया। और आज भी लोग वहाँ पर, ये श्री 420 का गीत था और इसे 1955 में ये फिल्म आई थी श्री 420, लोग आज भी इन गीतों को गाते हैं। और भारतीय पॉलिटिकल लोग कभी वहाँ पहुँचते हैं तो फंक्शन में ये सब गाए जाते हैं। तो आप देखिए, इस गीत को गाते गाते वहाँ के लोगों ने हिंदी से प्यार करना शुरू कर दिया, हिंदी सीखनी शुरू कर दी। और एक दिन तो ऐसा भी आया कि रशिया में रामचरितमानस का रशियन अनुवाद भी किया गया। आप सोचिए, गीतों ने अंदर कितनी प्यास जगाई कि ये कैसी भाषा है जिसका गीत इस तरह का है। इसी तरह से कवि प्रदीप का लिखा गीत 1940 का बंधन फिल्म का, चल चल रे नौजवान, और अनिल विश्वास के संगीत में कवि प्रदीप ने एक और लिखा, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ऐसे गीतों ने तो भारत में भी, जहाँ साउथ इंडियंस हिंदी नहीं जानते थे, वहाँ पर भी इन गीतों ने हिंदी की धूम मचा दी। और आज अगर आप तमिलनाडु चले जाएं, कन्याकुमारी चले जाएं, त्रिची चले जाएं, मतलब भारत के किसी क्षेत्र में जाएं, इन फिल्मी गीतों के कारण ही हिंदी प्रेमी, हिंदी को समझने वाले, हिंदी की बॉलीवुड की फिल्मों को सराहने वाले लोग आपको सब जगह मिलेंगे। तो चलिए हम एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: सच है ये कोई इल्जाम नहीं है, अरे सच...

0: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
1: श्रद्धा, आपने गीत सुना और उसमें गीत में पंक्ति थी, कौन है जो जोरू का गुलाम नहीं है। जानते हैं ना, ये एक मुहावरा है, जोरू का गुलाम होना। तो देखिए, गीतों के माध्यम से हम व्याकरण भी पढ़ लेते हैं। अब आदमी सोचता है भी जोरू का गुलाम, फिर वो इसका अर्थ जानना चाहता है, तब उसको पता चलता है ओहो, इसका अर्थ है पत्नी की बहुत ज़्यादा मानना। तो श्रोताओं, देखिए, गीत संगीत के माध्यम से मुहावरे, लोकोक्तियाँ, व्याकरण की चीज़ें, यहाँ तक कि कारक सारे। मेरे साथ एक छात्रा काम करती थी, उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्लास में कारक सिखाए फिल्मी गीतों के माध्यम से, जैसे तुमको मुझसे प्यार हो गया, को से, उसका उसने यह किया, का के, तो कारक गीतों के माध्यम से सिखाए और बच्चों ने बड़ी आसानी से समझा और सीखा। एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के मुताबिक पता चलता है कि जो भारतीय सिनेमा है या हिंदी सिनेमा विशेष रूप से, उसमें भाव, भाषा, साहित्य, संवाद बड़े ही तीव्र होते हैं और भारत को छोड़ के विश्व के किसी भी देश की फिल्मों में गीत संगीत की परंपरा ही नहीं है। उनके म्यूजिकल कॉन्सर्ट होते हैं, लेकिन फिल्मों में जैसे हमारे यहाँ 3 मिनट का गीत होता है, 6 मिनट का होता है, फिर उसके साथ कभी नृत्य भी होता है, उसके साथ दुख सुख श्रृंगार, जो 9 रस हैं हमारे, वह भी चलते हैं। तो भारतीय फिल्मों में गीतों की जो परंपरा है ना, वह अपने आप में बड़ी अनूठी है। और हमारे यहाँ पे नाटकों में भी आप देखिए, नट और नट्टी जब स्टेज पर आया करते थे तो एक ढोल या मृदंग बजाते हुए आते थे और नृत्य करते हुए अपने नाटक के बारे में बताया करते थे। तो जो संगीत वाली परंपरा है ना, वो हमारे यहाँ साम वेद से, राग रागिनियाँ, सुर स्वर व्यंजन उच्चारण, ये सारी चीज़ संगीत को समर्पित हैं और व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के ढेरों अवसरों और क्रियाकलापों पर यही गीत संगीत ही चलता है और यही सब बाद में चलचित्रों में उभरा। तो मतलब जो जीवन में अभिनय चल रहा था, समझो वही नाटक में आके और उसके बाद जब पर्दे पर आया तो वही गीत संगीत भी उसके साथ साथ चलते गए। तो हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, हम उनको लेते हैं। हेलो, शायद लाइन कट गई है, आप फिर से जुड़ सकते हैं 4028085 पर। तो श्रोताओं, ये जो गीत संगीत भारतीय जीवन का एक अंग है, वह फिल्मों का एक प्रमुख उपांग बन गया। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: फर्स्ट क्लास। सुनाइए, आज क्या सुनाएंगी?
2: सुना रही हूँ कि आपकी खिस्सा सुन रही हूँ, जोरू का गुलाम।
1: ये एक मुहावरा है ना,
2: कभी कभी खिस्सा सुनने में कितना मजा आता है।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: नवीन करनी, नवीन किसी के वो जाते हैं जोरू का गुलाम। इसी को कहते हैं जोरू का गुलाम, जिसके साथ में एक लय नहीं है, जिसके साथ

0: में एक बूढ़ी नहीं है, उसको कमी नहीं है, उसको घर जाने के लिए अपने पास जाना, इसी को कहते हैं जोड़ू का फुलाम बन जाते हैं, कहते
1: चलिए, बहुत
0: हैं ना
1: धन्यवाद, आप
0: इसी
1: हमारे साथ
0: तरह।
1: जुड़ी, बहुत बहुत
0: ओके
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू वेरी मच,
1: आपको शुभ
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक
1: संध्या। ओके जी,
0: यू,
1: ओके,
0: थैंक
1: शुभ संध्या। चलिए एक और को लेते हैं। हेलो,
2: हेलो।
1: अरे चित्रा जी, बहुत दिनों बाद सुनाई दिया, कहाँ खो गई?
2: मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बिजी
1: अरे
2: रही थी,
1: इतना
2: बाद में
1: बिजी,
2: बोलूंगी। नहीं, आपको तो मेरे मन में, मेरे हृदय में बसी
1: क्या
2: हुई
1: बात
2: थी।
1: है, आप भी बड़े बड़े गीत गाती हैं, सुनाइए कुछ,
2: हाँ,
1: सुनाइए।
2: मैं सुनाऊंगी जरूर। तो गीत मेरी मेरी बहुत बहुत प्यारी प्यारी गीत मेरी मन में थी।
1: जी
2: जब कपड़े धो रही थी तो मन मन में गुनगुना रही थी
1: चलिए
2: मैंने।
1: सुनाइए।
2: तो एक गीत मेरी

0: दे मेरी हो तू भी ले गया कोई
1: वाह
0: गीत गाता चा साथी गुनगुनाता चा ओ बंधुरी हंसती हंसाती बीते हर घड़ी हर पल गीत गाता चा साथी गुनगुनाता चा।
1: मुझे लगता है आज आपके कपड़े भी चमक गए होंगे गाना सुनकर।
0: तो हमेशा हमेशा तो ये खास मेरी श्रीमती अलका दुत्ते जी के लिए और मेरी दीदी उमा मेरी ननद है भोपाल की निवासी हमेशा भाग लेती है रेडियो।
1: अच्छा।
0: तो वो सुन रही थी बहुत प्यार दुलार से, तो अनुमति दीजिए
1: आपको अनुमति और आपकी ननद उमा जी को बहुत प्यार। ओके नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: चलिए एक और श्रोता भी जुड़ गए। हेलो
2: हेलो डॉक्टर जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते धनी जी, सुनाइए कुछ
2: जी। आपने ये सच कहा, इन गीतों में बहुत शक्ति है,
1: सचमुच
2: बहुत ज्ञान है।
1: हाँ
2: बहुत ज्ञान है इन गीतों में, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि ये गीत बहुत महान लेखकों ने लिखा।
1: हाँ,
2: है
1: सच कह रहे हैं, कुछ तो साहित्यकार ही थे मूलतः, शैलेंद्र हैं, प्रदीप हैं, ये सब लोग साहित्यकार ही थे, गीतकार थे ये लोग।
2: ये गीतों को सुनकर अच्छा लगता है। हाँ, हमें खुशी मिलती है
1: जी।
2: और समझकर जो दुखी है उनको रोना भी आता है,
1: रोना चाहिए, मन हल्का हो जाता है
2: जी।
1: चुपचाप बैठ के जब गीत सुनो आंसू गिर।
2: कहूंगा
1: जी
2: डॉक्टर जी
1: जी,
2: न पैरों का कोई निशान, न खत न खबरिया, तुम चले गए न पैरों का कोई निशान। वो तो आत्मा है, वो उड़ कर चला जाता है,
1: यादें छोड़ जाता है शरीर,
2: यादें रह जाती है
1: जी जी।
2: और वहाँ डाक खाना नहीं है,
1: चिट्ठी ना कोई संदेश,
2: चिट्ठी ना कोई संदेश
1: ना जाने।
2: तो मैं कहूँगा परिवार में
1: जी,
2: चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो
1: जी,
2: चाहे बच्चे हो
1: जी जी,
2: हम मिल कर रहना चाहिए, तभी हमें पछतावा नहीं होगा।
1: सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं,
2: तभी हमें पछतावा नहीं होगा। मान रखो हर किसी का
1: जी,
2: खासकर
1: बड़ों का
2: भी,
1: बड़ों का बिल्कुल,
2: बड़ों का भी इज्जत करो,
1: क्योंकि बड़ों को केवल सम्मान चाहिए। हाँ, केवल सम्मान चाहिए।
2: माता पिता का सेवा करो
1: जी जी, बिल्कुल।
2: किस घर में जब मृत्यु होती है तो रोना नहीं होता है, किस घर में,
1: बिल्कुल,
2: तब पछतावा होता है चले जाने के बाद।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
2: चले जाने के बाद कम से कम प्रेम रखो, अपने से प्यार करो, अपनों से प्यार करो, इज्जत दो उसे, ताकि पछतावा ना होए।
1: बहुत अच्छा धनी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और सचमुच ये गीत हमारे दुखों को कम करते हैं, खुशियों को बढ़ाते हैं और मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो।
0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कैसे हैं?
0: मैं बसंती जी।
1: हाँ?
0: तो मैं चोरी चोरी के एक गीत सुनाने जा रही हूँ।
1: जरूर सुनाइए
0: जी। वो तीन पैराग्राफ के हैं, बहुत हैं, दो मिनट आधा लगेगा मुझे।
1: अच्छा?
0: बहुत है।
1: तो
0: अच्छा शुरू करें
1: तो आप दो सुना दीजिए, तीन पैराग्राफ क्यों सुना रही हैं?
0: क्यों आप क्या बोला?
1: दो पैराग्राफ सुना दीजिए।
0: ओनली टू।
1: हाँ ओनली टू। ओके
0: ओनली टू
1: जी, सुनाइए।

आजासनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमान, कहता है दिल और मचलता है दिल, मुरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं।

0: नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद की बहकती नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। कहता है दिल और मचलता है दिल, मुरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। और एक पैराग्राफ है प्लीज।
1: अरे बहन जी, लाइन में लोग लगे हुए
0: ओ थैंक ओ
1: हैं।
0: ये अच्छा ठीक है
1: बहुत
0: ठीक है।
1: धन्यवाद, लेकिन आपने बहुत सुंदर गीत सुना है, बहुत
0: जी
1: सुंदर।
0: जी जी अलका जी
1: हाँ सचमुच, कहाँ दिल लगता है बिना चांद तारों के। तो बहन जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। चलिए हम अपने एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्ते जी,
2: नमस्ते बहन जी।
1: क्या हाल है आपका?
2: ठीक है, आप ठीक है?
1: हाँ मैं ठीक हूँ। आपका शुभ नाम?
2: हम हैं तारा।
1: आज
2: आपसे
1: तारा
2: पहली बार
1: जी,
2: बात होती है।
1: अच्छा बढ़िया, तो हर बार बात किया करें।
2: हम हरदम सुनते हैं सुनते हैं, हमारी नहीं, आज हम आपको फोन करेंगे।
1: ये तारा जी, तारे ना दिखाई दे तो रात ही अधूरी रह जाए। सुनाइए कुछ।
2: एक छोटा सा गीत गाते हैं,
1: हाँ
2: बहुत पसंद करते हैं हम गीत को।
1: हाँ लेकिन चार पंक्तियां केवल,
2: हाँ
1: ठीक प्लीज
2: हाँ
1: जी।
2: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इस जीवन में नहीं मिलेंगे मिलते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जन्म
2: शुक्रिया।
1: जन्म का साथ है, अगली बार
2: हाँ
1: भी फोन करिएगा जरूर। ओके
2: हाँ ठीक है,
1: बहुत
2: अच्छा
1: धन्यवाद, शुभ
2: शुक्रिया।
1: संध्या आपको। चलिए हमारे साथ एक और श्रोता भी जुड़े हैं, उनको भी हम लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, शायद उनका कट गया। एक और श्रोता को लेते हैं चलते चलते। हेलो,
3: हेलो नमस्ते,
1: हाँ
3: सब है
1: नमस्कार
3: ना?
1: जी, कैसी
3: हाँ
1: हैं आप?
3: मैं इंदिरा हूँ,
1: जी
3: ठीक
1: इंदिरा
3: हूँ मैं
1: जी,
3: ना।
1: जी
3: मैं सुन रही हूँ कब से सुंदर सुंदर गाने चल रहे हैं, तो मैं भी क्यों भाग नहीं लूंगी,
1: जरूर
3: मैं भी
1: भाई,
3: कोशिश
1: इन
3: करूंगी।
1: गानों
3: हाँ
1: ने तो ताकत दी है हिंदी बोलने की,
3: हाँ
1: समझने की।
3: मैं तो बोलती हूँ, जैसे मैं सवेरे उठती हूँ तो मैं तो रेडियो सेट ऑन कर देती हूँ, माने कि मेरा मूड सेट हो गया अभी।
1: वाह क्या बात है,
3: हाँ
1: रेडियो और
3: ये
1: आपका
3: मेरा,
1: मूड। हाँ
3: हाँ ये मेरा पहला कदम है, जैसे
1: बहुत
3: मैं उठी
1: सुंदर।
3: थी तो पहला
1: हाँ
3: कदम मेरे किचन में रेडियो सेट ऑन।
1: भजन गीत विचार
3: हाँ सब बोली
1: फिलोसफी
3: विचार
1: सब सुनने
3: वो,
1: को मिलता
3: हाँ
1: है,
3: सदाबहार गाने वो
1: गाने
3: सब
1: जी
3: सच कुछ। हाँ
1: बहुत अच्छे
3: दिल
1: हैं,
3: को
1: बहुत।
3: खुश कर देते हैं ये सब प्रोग्राम। हाँ
1: जी
3: मैं ये गाना गाऊंगी।
1: जरूर, दो लाइन सुनाइए।
3: दो ही मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमीं
1: वाह
3: आसमां। मस्ती भरा है समा।
1: बहुत अच्छा, बहुत
3: शुक्रिया
1: धन्यवाद।
3: बहन जी,
1: हाँ
3: शुभ
1: लेकिन अपना
3: शुभ
1: रेडियो सेट
3: संध्या।
1: बंद कर दिया करें एक
3: हाँ
1: बार।
3: ओके थैंक यू।
1: ओके जी, शुभ संध्या। तो चलिए हमारे साथ एक और श्रोता भी चलते चलते जुड़ रहे हैं। हेलो प्रणाम,
2: हेलो, प्रणाम, बारंबार प्रणाम मेरी प्यारी सी डॉक्टर जी।
1: कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, मैं संगीता हूँ मोरहल से जी।
1: संगीता संगीत में भाग ना ले तो काम अधूरा।
2: कहाँ लेंगे, आप
1: सुनाइए
2: इंतजार कर रही हूँ, कब आएंगे आप? बस बस ठीक हूँ, हम
1: सुनाइए।
2: बात करेंगे आपसे तो,
1: हाँ जरूर
2: आपसे।
1: जरूर जी।
2: हाँ देखिए, हाँ हमारी डॉक्टर जी बोलती हूँ।
1: हाँ
2: देखिए हाँ जी, ये

0: ये सब नहीं है, हम लोग अकेले रहती हूँ,
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: सब गाना भजन इतना
1: हाँ
0: ही होता,
1: कितनी
0: कैसे
1: ताकत
0: जिए,
1: देता है,
0: कैसे जिएंगे हम।
1: लगता है घर में कोई
0: हाँ
1: है
0: है,
1: ना,
0: लेकिन
1: जब
0: उसके
1: रेडियो
0: साथ
1: और
0: साथ
1: गीत चलते हैं तो
0: रेडियो
1: लगता
0: के
1: कोई
0: साथ साथ
1: है।
0: हम लोग गाते चलते हैं,
1: जी जी
0: गाते
1: बिल्कुल सही कह
0: अच्छा
1: रहे हैं।
0: लगता है, घर खुशी खुशी भर जाती है, खुशहाली।
1: जी।
0: हाँ ये तो बहुत अच्छा लगता है, एक प्रोग्राम है, नहीं
1: हाँ
0: तो बच्चे लोग चला जाता, सब कोई तो अकेले रह जाती घर पर
1: हाँ ये
0: ना।
1: आप ही का प्रोग्राम है और आपके लिए है।
0: हाँ हमारे हैं, कभी रामायण पढ़ती, कभी गाना गाती, कभी
1: वाह
0: रेडियो सुनती,
1: बहुत
0: तो
1: अच्छा,
0: हमारा दिन बीत जाते ऐसे,
1: बहुत
0: सब
1: बढ़िया
0: बच्चे लोग
1: संगीता
0: आते
1: जी।
0: हैं उसके लिए तैयार करते हैं कुछ खाना, फिर से रेडियो 3 बजे फिर ऑन कर
1: क्या बात है,
0: देती।
1: बहुत सुंदर
0: हाँ
1: बहुत सुंदर
0: हाँ एक छोटे
1: जी। दो लाइन
0: से
1: सुनाइए। हाँ दो
0: दो
1: लाइन
0: लाइन
1: जी।
0: यही ये वो सांझ अर सवेरा, यही ये वो सांझ अर सवेरा, जिसके लिए तड़पी हम सारा जीवन भर, यही ये वो सांझ अर सवेरा,
1: बहुत सुंदर बहुत
0: यही
1: सुंदर
0: ये वो सांझ अर
1: बहुत
0: सवेरा,
1: सुंदर।
0: यही ये वो सांझ अर सवेरा, यही शाम और सवेरा
1: यही
0: हम
1: है
0: लोग के
1: हर
0: लिए
1: रोज और आपको भी शुभ
0: रोज।
1: संध्या। तो श्रोताओं सचमुच यही है वो शाम और सवेरा जिसको हम सब याद करते हैं और हर रोज आता है हमारे जीवन में एक और श्रोता।
0: चैतन्य
1: हेलो,
0: हवन।
1: हाँ नानी जी हैं।
0: नानी नानी बड़ी अथी कराता, अतान कराता नानी कब्जे से। हाँ
1: नहीं तो आपका रेडियो सेट ऑन है, सुनाई नहीं
0: बेटी,
1: देते
0: हाँ
1: तब
0: हमारे
1: मुझे।
0: लड़का सुनलक, हमारे बेटी, हमारा पे बेटी टेलीफोन उठैला,
1: अच्छा
0: बहुत खुशी के बात बा। अच्छा
1: बोलो।
0: आवाज आना बेटी,
1: हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए बस।
0: नानी भी अच्छा बा, एगो हरदी में जात बेटी, अभी
1: हाँ तो
0: एगो
1: नानी
0: हरदी में जात है,
1: हरदी में जा रही है तो नानी तैयार
0: नानी के
1: होके
0: हरदी
1: जा
0: में
1: रही
0: आज
1: होगी। नहीं तो आज खूब तैयार होके जा रही
0: सुनत
1: होंगी।
0: हवा ना,
1: हाँ सुना था
0: नातिन के हरदी बा आज।
1: अच्छा तो वहां गाना गाओगी।
0: हाँ पहले हर दिया हमारे बिपरा चढ़ावेलन, बिपरा चढ़ावेलन, तबा हो सजना सब लोग, सिर चढ़ैया बिपरा

0: आशीष पहिल हरदिया मरे बाबा चढ़ावेलन, बाबा चढ़ावेलन तब हूँ सजन सब लोग सिर में चढ़ैया बाबा अंगवे उतरिया हो, अंगवे उतरिया हो हृदय भर दिया तू आशीष।
1: बहुत धन्यवाद नानी जी, बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, सचमुच नानी आज एक हल्दी में जा रही हैं तो खूब तैयार होके अपना निकल रही होंगी और गीत गाने के लिए कितनी उत्साहित है। पर देखिए गीतों में कितना जीवन है। पहला विप्र मतलब जो ब्राह्मण है, जो आशीर्वाद देते हैं, जो पंडित पुरोहित है वे पहले, उसके बाद पिता। वही धनी जी ने कहा ना कि माता पिता बड़ों को सम्मान, तो हल्दी चढ़ाने में भी पहले बड़े माता पिता। तो ये वही परंपरा है जो हमारी संस्कृति की उन गीतों में बोलती है। अन्यथा गीत वैसे ही हो सकता था कि एक्स वाई जेड कोई भी हल्दी चढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है। पहले कौन चढ़ाएगा फिर कौन चढ़ाएगा। तो देखिए गीतों में किसी देश की संस्कृति भी कितनी बात करती है। चलिए हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े, उनको लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्ते बहन अलका जी।
1: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
2: जी मैं देवी हूँ।
1: कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैं हाईलैंड से बोलती हूँ।
1: अरे आप तो बहुत ऊपर बैठी हैं, बोलिए। क्या सुनाएंगी आज?
2: तो एक दुलाइन।
1: जरूर, स्वागत आपका।
2: ये प्रोग्राम जो है गीतों पर आधारित है।
1: ये प्रोग्राम इस पर आधारित है कि गीतों ने हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी हिंदी को कितनी ताकत दी है।
2: हाँ सच में जी।
1: जी
2: तो मैं एक दो लाइन सुनाती हूँ।
1: जरूर सुनाइए।
2: सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को ना...

0: आएगा, बस इतना ही?
1: बहुत है, आपने इतना
0: सही है
1: सुना दिया,
0: आपका?
1: हम तो आपको सिर्फ सुनना चाहते थे।
0: और
1: सचमुच बहुत सुंदर गीत है। वैसे तो ये जीवन का दर्शन है इस गीत में कि आप अपने आज को कल परसों के चक्कर में खराब मत करिए, मत सोचिए, आज को सुंदर बनाइए। देखिए गीत कैसे जीवन की व्याख्या करते हैं। हेलो,
0: हाँ बहन जी, नमस्ते। अच्छी
1: नमस्ते, कैसी हैं बहन जी? श्यामा जी,
0: हूँ बहन जी।
1: चलिए स्वास्थ्य आपका रहे, बस यही चाहिए।
0: हाँ बहन जी, ये तो उम्र का तकाजा है ना बहन जी, क्या करेंगे, कभी कैसे
1: हाँ,
0: कहते अप एंड डाउन।
1: ये चलता है बिल्कुल जी। सुनाइए
0: तो
1: कुछ।
0: हाँ बहन जी, तो आज मैं आपको वो अनसुने लोकगीत सुनाने जा रही हूँ जो अब नहीं सुनाई
1: अरे वाह,
0: सुनने
1: क्या
0: को
1: बात
0: मिलता
1: है,
0: है।
1: जरूर सुनेंगे।
0: हाँ, तो गीत में वो रस है बहन जी जो कानों को भेद कर हृदय को झकझोर देता है और मन को
1: सुनाइए
0: प्रफुल्लित कर देता है बहन जी, हमें खुश
1: सुनाइए।
0: रखने के लिए। हाँ,
1: अच्छा,
0: तो मेरा गीत आप सुनिए और लुत्फ़ उठाइए बहन जी।
1: जरूर।
0: बीचे समुंदर खारी सुहाग मन बोवन उगे लागल सूरज गरहनिया सुहाग मन बोवन लागे दादा के बचन बड़ी भारी सुहाग मन बोवन लागे जब हो सुहागा जमान लागे सुहाग मन बोवन लागे उगे लागल सूरज गरहनिया सुहाग मन बोवन लागे। नहीं बहन जी,
1: बहुत सुंदर है रे, मैं तो खो ही गई उसका अर्थ ढूंढने में कि बहन
0: हाँ बहन
1: जी।
0: जी, अब कहाँ मिलता है ऐसे गाने, वो तो हमारे बचपन की
1: हाँ
0: यादें हैं बहन जी, मैंने संजो कर रखा है धरोहर के रूप में
1: मैं
0: इसे
1: तो
0: बहन
1: आपको
0: जी।
1: कहती हूँ, जितने पुराने गीत याद हैं उनको लिख डालिए, हमें
0: हाँ
1: दीजिए,
0: बहन
1: हम
0: जी,
1: उसे टाइप कर
0: मेरे
1: देंगे।
0: मनस पटल पर लिखा गया है बहन
1: ना,
0: जी।
1: उसको कागज पर उतारिए या कंप्यूटर
0: हाँ
1: पर
0: बहन जी,
1: उतार के उसको रखिए बहन जी, व्यक्ति
0: हाँ बहन
1: चला
0: जी,
1: जाता है, चीजें ना चली
0: हाँ
1: जाएं कभी उसके साथ।
0: हाँ बहन जी,
1: बहुत
0: अच्छा
1: धन्यवाद,
0: आपने
1: बहुत
0: कही।
1: सुंदर आपने सुनाया। तो श्रोताओं देखिए, धरोहर कैसे इन लोग संभाल के रखी हुई है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम इन लोगों के मुख से ये सब सुन पाते हैं। तो देखते हैं यहाँ। हेलो,
0: हेलो हेलो, नमस्ते बहन जी,
1: नमस्ते, आपका शुभ नाम?
0: मैं बोसों से बोल रही हूँ, सुबिता।
1: सुभीता, क्या बात है, नाम तो बड़ा प्यारा है, क्या सुनाएंगी आज जी?
0: थैंक यू, मुझे लाइन मिल गई बहन जी, मैं बहुत खुश
1: अरे,
0: हूँ।
1: जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, चिंता मत
0: लॉटरी
1: करो।
0: लॉटरी
1: अरे वाह, क्या बात है, लोटो खुल गया आपका।
0: गई।
1: सुनाइए कुछ सुविता जी।
0: मैं एक बहुत पुराने गाना गाऊंगी
1: अरे हमें बहुत अच्छा लगेगा, सुनाइए।
0: जी।

0: बहुत
1: मेरे
0: धन्यवाद।
1: मन में फिर भी अंधियारा है, रात और
0: बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर,
1: दिन।
0: बहुत सुंदर। तो श्रोताओं देखिए, इतना सुंदर गीत उन्होंने सुनाया, रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा। ये है साहित्य का चमत्कार। देखिए इसका सीधा अर्थ नहीं है कि दीप जल रहा और मेरे मन में, यहाँ मतलब चारों ओर उजाला हो रहा है लेकिन मैं किसी की इंतज़ार कर रही हूँ। चलिए तो श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। चलिए, अरे एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए, देखते हैं कौन जुड़ा है। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते जी, क्या सुनाएंगी बहन जी?
2: मैं दो लाइन सुनाऊंगी बहन जी।
0: तो अपना नाम तो बताइए पहले हमें।
2: मैं मीला हूँ घोंघोप से बहन जी।
0: तो मीला जी, हम आपसे मिल लिए, सुनाइए।

0: जी हाँ जी हाँ
1: सुनाइए सुनाइए।
0: संगीत ही जीवन है, संगीत ही गगन है, संगीत हमारे रूह को छुए, संगीत से हम खूबसूरत सुर हुए, जो मिला दे मन का मीत, पूरा करे जिंदगी का गीत, ऐसे सुरीली दास्तान है जिसका नाम है संगीत। बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद एक प्यारी सी कविता सुनाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभ संध्या आपको। तो श्रोताओं, आप हमारे साथ खूब जुड़े और बहुत आनंद आया। बढ़ते हैं आगे।
2: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण। प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।

0: जापानी।
1: सचमुच भाई, दिल तो हिंदुस्तानी ही है। कोई कपड़ा पहन ले, कोई जूता पहन ले, लेकिन दिल तो इन गीतों में, इस फिलॉसफी में बसता है। और हमारे साथ और श्रोता भी जुड़ गए हैं, तो उनको लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते कवित्री, तुम तो खुद ही लिखती हो
2: जी। और आज तो संगीत सरिता बह रही है।
1: क्या
2: तो
1: बात है,
2: इसमें एक डुबकी मैं भी लगा लेती।
1: क्यों नहीं, डुबकी नहीं लगाओगी तो मजा क्या आएगा।
2: और डुबकी लगाने से पहले ये एक अब कविता तो जोड़नी पड़ेगी।
1: हाँ हाँ जरूर।
2: गीतों के सागर से मोती चुन लेना, गीतों के सागर से मोती चुन लेना, दो पल की जिंदगी है, कुछ गुनगुना तो लेना।
1: वाह क्या बात है।
2: तो वैसे इतने सारे गीतों में मैं अपने लिए क्या गाऊं बहन जी। चलिए मैं कविता लिखती हूँ तो मैं अपने ही लिए खुद गा लेती हूँ।
1: चलो सुनाओ।

0: बहुत सुंदर आशा जी, सचमुच जीवन की फिलॉसफी है भाई, सब पल दो पल का ही है, पता नहीं कब कौन निकल जाए कौन जानता है।
1: जैसे आज मैं हूँ, कल पता नहीं कौन
0: हाँ,
1: होगा,
0: कौन
1: क्या
0: जाने,
1: होगा,
0: बस वो चलता ही रहेगा पल। बहुत धन्यवाद, इसीलिए तो
1: बहुत
0: गीत
1: बहुत
0: जीवन की
1: धन्यवाद।
0: व्याख्या करते हैं, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आशा जी जुड़ी, अपनी कविता सुनाई, देखते हैं अब और कौन जुड़ा है हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते अलका दीदी,
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ, आप कैसी हो?
0: ठंड
1: बोलिए।
0: का मजा ले रही हैं?
1: ठंड का मजा? और नहीं, अंदर घर में हूँ,
0: हाँ, और गर्मा गर्म
1: बाहर नहीं
0: चाय पी
1: जा।
0: रही हैं?
1: हाँ जी
0: क्या
1: हाँ,
0: बात
1: आप
0: है,
1: भी
0: क्या बात
1: पीजिए,
0: है।
1: टेलीफोन करिए।
0: सुनाइए,
1: नहीं
0: क्या
1: नहीं मैं
0: सुनाएंगी?
1: आपके विषय पर ऐसा कहूंगी कि जैसे पानी हमारा जीवन है, वैसे संगीत हमारा जीवन है।
0: सही, बिल्कुल सही।
1: हाँ, अगर संगीत नहीं होगा तो असमान जानो कुछ बिना
0: अधूरा
1: कैसा,
0: रह जाएगा कुछ।
1: अधूरा अधूरा। हाँ, मैं अपनी ओर से एक मेरे ददुआ ससुर की एक संझा था,
0: अच्छा,
1: वो मैं अभी बैठा बैठा सुन रही हूँ
0: तो
1: बैठे
0: याद आ
1: बैठे।
0: रही है उनकी,
1: हाँ नहीं, याद है,
0: सुनाइए फिर।
1: मैंने कहा आपको सुना दूँ।
0: अरे वाह, सुनाइए सुनाइए,
1: हाँ,
0: स्वागत,
1: धन्यवाद।
0: सुनाइए।
1: सर सर सर सर संझा काली, सोने रूपे गिरवर धारी, जो जने गिरवर के भेव, नितुत पूजे गणपत देव, गणपत पूज के का करीजे, पहिल फूल सरस्वती लीजे, दूसर फूल विनायक के लिए। ऐसे ऐसे बहुत पुराना, वो गुजर गए हैं,
0: मुझे याद आ
1: लेकिन
0: गया,
1: मैं
0: एक
1: नाती नतुनू
0: इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब वहां इसकी पंक्तियां पढ़ी तो लोगों ने
1: है।
0: इतनी तालियां बजाई कि मॉरिशस ने कैसे उस समय अपनी ही भोजपुरी से, अपने देवताओं की वंदना से कक्षा शुरू की हिंदी की। बहुत
1: अभी जब
0: सुंदर।
1: मैं समझती हूँ ना दीदी, अभी जब मैं शादी कर रही थी 19 बरस में, तो अभी तो 60 साल पास से हो गया श्वसन कैंसर। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि दादाजी ददुआ सुरपति के दादा हैं
0: अच्छा,
1: वो। हाँ, वो ये सब बोलते थे और
0: वाह।
1: मुझको कहते थे कि चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। तो
0: देखा,
1: मैं हिंदी पढ़ती हूँ, मैं तो पढ़ाती
0: हाँ,
1: थी,
0: कितना कुछ दे
1: लेकिन
0: गए वे, कितना कुछ दे गए
1: हाँ,
0: चलते
1: बहुत
0: चलते।
1: चीज दे गई, बहुत चीज। बहुत धन्यवाद बहन
0: बहुत
1: जी,
0: धन्यवाद
1: आपने
0: जोड़ने के लिए बहन
1: हमको
0: जी,
1: समय दिया।
0: और ये पुराना हमने बैठका का गीत सुना,
1: हाँ,
0: बहुत
1: बैठ
0: धन्यवाद, बहुत
1: का
0: धन्यवाद। तो श्रोताओं, सचमुच क्या क्या चीज़ें व्यक्ति को याद आने लगती हैं बड़ों की, देखते हैं और कौन जुड़ रहा है। हेलो हेलो,
1: हेलो जी, नमस्ते, कैसे
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: हो?
0: मैं
1: बहुत
0: ठीक
1: अच्छी हूँ,
0: हूँ।
1: हर हफ्ते मैं आपकी वाणी सुनती हूँ।
0: तो आज हम आपको सुन रहे हैं, आपका नाम क्या
1: हाँ,
0: है?
1: मैं गीता हूँ, और देखो वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सुनने में बहुत मजा आए।
0: अरे, गीता गीत गाएगी तो क्या बात बनेगी।
1: सुनो, मैं बोल रही हूँ, मेरे मेरे जो जो बात कर रही हूँ थोड़ा सा हट के है।
0: अच्छा, बोलिए।
1: देखो,

0: आप जो विषय पर बात करते हमेशा कोई उस पर थोड़ा कम बोलता है।
1: अच्छा जी।
0: कविता हो तो ऐसी हो जो सुनने के लायक हो, वरना कोई वक्त बर्बाद करता है, गीत गाता है, ना ना सुर
1: चलिए।
0: है ना ताल है, आपको कहता है कि रेडियो बंद कर दूं मैं, न सुनू। आपकी आपकी छोटी छोटी सी बातें इतनी अच्छी लगती है सुनने में,
1: बहुत
0: परखने में।
1: धन्यवाद। अरे आप लोग
0: ऐसा तो
1: मेरी
0: कोई बात नहीं,
1: ताकत है।
0: कोई बात नहीं, हंसते हुए भी अच्छा लगता है। कोई कोई कम हंसता है, लेकिन आप हंसते हैं तो बहुत मजा आता
1: अरे
0: है।
1: हम तो
0: लेकिन
1: कहते हैं
0: ऐसी कोई,
1: हंसो, जिंदगी बड़ी थोड़ी
0: हाँ
1: है, हंस लो।
0: हाँ कब ना चाह था कोई कुछ बुझ जाए, लेकिन हंसते रहो बोलते, और अच्छी वाणी बोलो, ना
1: हाँ
0: सुर के
1: सच
0: मत
1: बात है,
0: बोलो, ना ना सुर
1: बिल्कुल
0: है ना ताल है,
1: बिल्कुल
0: सुनने में तो
1: बिल्कुल
0: मजा
1: सच
0: नहीं है
1: बात।
0: ना।
1: ऐसा बोलो जो किसी के दिल को ना दुखाए।
0: वाह, नहीं, अच्छी वाणी बोलो जो किसी के सुनने में मजा आए।
1: बिल्कुल ठीक, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
0: बिल्कुल
1: औरन
0: सही
1: को
0: बात।
1: शीतल करे भीतर शीतल होए।
0: हाँ देखो ना, ये दो सी बातें मैंने आपसे की,
1: बहुत
0: आपने जवाब
1: धन्यवाद।
0: दे दिया, कितनी अच्छी है। वरना तो कोई, मैं सुनने में बहुत तकलीफ होती है,
1: चलिए
0: मत
1: हम आपके साथ है
0: जाओगी।
1: ना, अगली बार फिर फोन करिएगा, ठीक?
0: बहुत अच्छा,
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद,
0: जी।
1: शुभ संध्या आपको। तो श्रोताओं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें, आप ही लोग तो ताकत देते हैं हमें, ये सब बातचीत आपकी बातचीत से ही होती है। चलिए एक और को लेते हैं। हेलो,
2: काजी और सभी
1: नमस्ते
2: गीत
1: जी,
2: प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: आपका शुभ नाम।
2: मेरा शुभ नाम प्रभा है, बेंगलोर
1: प्रभा का मतलब है चमक, प्रभा जुड़ गई तो
2: से।
1: चमक आ गई वातावरण में। बोलिए प्रभा जी।
2: जी आका जी, सोचो ना, अगर इस संसार में गीत संगीत नहीं होती
1: तो हम
2: तो
1: सारे राक्षस हो
2: कितनी
1: जाते।
2: सुनी सुनी होती ये
1: सुनी
2: दुनिया।
1: नहीं, हम राक्षस हो जाते।
2: और मे भी आपने सुनी होगी कि अमेरिका में डॉक्टरों को, मरीजों को ठीक कर रहे हैं गीतों के
1: हाँ,
2: द्वारा
1: एक
2: से।
1: संगीत थेरेपी चल रही है और रागों को बीमारियों के अनुसार एक सेटिंग करके प्रयोग चल रहा है कि कौन सा राग कौन से मरीजों के लिए ज्यादा सुखद है और उनको दिक्कत में नहीं, उनकी दिक्कत कम करता है, दर्द कम करता है। ये प्रयोग चल रहे हैं अभी,
2: एक
1: बहुत सुंदर।
2: मेडिसिन जैसे है। और आका जी,
1: जी
2: मैं सोच रही हूँ गीतों की प्रोग्राम हो रही है तो क्यों मैं पीछे
1: दौड़ो
2: रहूँ।
1: दौड़ो, सुनाओ एक गीत।
2: तो एक लाइन, आप मुशस में आप देख रहे हैं एक बहुत जोरदार से हवा चल रही है, तो हवा के में गाना गा रही
1: चलिए
2: हूँ।
1: सुनाइए।

0: जाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो।
1: वाह, हमने आपके प्यार को झोली में ले लिया।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू।
1: शुभ संध्या, शुभ संध्या। तो श्रोताओं, इतने प्यारे प्यारे गीत आपने हमें सुनाए, एक और श्रोता को भी देखते हैं वे क्या सुनाने वाले हैं। हेलो,
2: शुभ नमस्कार अलका बहन।
1: अरे नमस्कार भाई साहब, इस ठंड में क्या सुनाने जा रहे हो?
2: यश को भी सादर सप्रेम।
1: हाँ, यश भी आपको नमस्कार दे रहे हैं।
2: ठंडा में चल रहा है,
1: घर के अंदर सब छुपे हुए हैं अभी।
2: हाँ, और आपको सुनता हूँ तो भाग तो लेना चाहिए
1: जरूर। अरे भाई साहब, भाग नहीं लेंगे तो बहनों को क्या मजा आएगा। जी
2: बहन जी, हालांकि जब मुझे हिंदी का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन जब मैं हिंदी फिल्म सुनता था तो ये मेरे दिल ये भावनाएं पहुंच जाते थे इन गीतों का।
1: हाँ हाँ, इन गीतों में जो रस है, जो शब्दावली है, जो व्याकरण है, उसे आदमी जल्दी पकड़ लेता है।
2: इसके अलावा मुझे जब हवन होता था, जब भजन कीर्तन का जी लोग बजाते, तो मैं वहाँ पहुँच जाता था।
1: अच्छा, तभी आज आप अपने आध्यात्मिक गुरु के यहाँ भी जाते हैं और अच्छा समय बिताते हैं।

0: क्वालिटी टाइम मैं कहूंगी इसे।
1: कल ही अभी हम सत्संग करते हैं,
0: टाइम तो वे भी बिताते हैं जो पीने के लिए जाते हैं, टाइम वे भी बिताते हैं जो नाचने जाते हैं, लेकिन जो अपने विकास आध्यात्मिक विकास के लिए जाते हैं ये सुपर क्वालिटी टाइम है।
1: बहुत अच्छा
0: जी।
1: देखिए आज तक मुझे ना ताल ना राग ये सब मालूम है, फिर भी मैं गुनगुनाता हूँ कुछ गीत, और कभी कभी जब मैं छोटा था जोर जोर से गाता था।
0: हाँ, तब झिझक नहीं होती ना।
1: अब जाता झुका हूँ लेकिन सुनता हूँ गीत, जाता झुकता हूँ भजन कीर्तन की तरफ।
0: कोई बात नहीं, हर उम्र का अपनी मांग होती है ना। जब बचपन है तो और तरह का, जवानी है तो कुछ उछलते हुए गीत अच्छे लगते हैं, जब ठहराव आने लगता है तो भजन अच्छे लगते हैं। ये अपने अपनी आयु और परिपक्वता के अनुसार चलता है।
1: आपके विषय पे कहूंगा बहन जी, ये हिंदी फिल्म यानी बॉलीवुड, ये आवाज और लोकप्रियता पूरी दुनिया में गौरव
0: बिल्कुल
1: खाया सुना जाता है
0: सचमुच, और हिंदी सीखते हैं उसके कारण लोग।
1: कितने लोगों ने हिंदी सीखी।
0: देखिए मॉरिशस में जो नॉन हिंदी लोग हैं वे इसलिए हिंदी, कई बार मैं पूछती हूँ आप क्यों हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी फिल्मों का आनंद लेने के लिए, हिंदी गीतों को समझने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो आकर्षण है उसके म्यूजिक का, उसके गीतों का, कहानी का, सेट का, और वे लोग हिंदी सीखते हैं। फिर
1: मेरे छोटी भाभी वो तो जब कोई शब्द ले लेता है तो मुझसे बात उसी में करते।
0: अच्छा अच्छा।
1: बोलो बोलो बोलो हिंदी। और यहाँ पर मैं कहूँगा बहन जी की सिर्फ मनोरंजन के साधन ही नहीं बल्कि के अलावा विदेशों में, जैसे आपने कहा रूस,
0: जी जी बिल्कुल,
1: हमारा अपना देश मॉरिशस है
0: जी,
1: अफ्रीका है, अमेरिका इत्यादि मुल्कों में ये आप मानेंगे कि ये गीत सांस्कृतिक पहचान बन चुके हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी दीपावली पर न्यूयॉर्क में जो मेन रोड है वहाँ ये संगीत,
1: हाँ
0: यूरोप में दीपावली के गीत चलते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स पर लगता है ये सब कुछ।
1: आपने राज कपूर का अच्छा उदाहरण दिया।
0: जी जी,
1: आ रहा हूँ तो जानते हो जी, इस ये गीत में गम और खुशी भी है।
0: हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल
1: बहन जी। भारतवर्ष से दूर ये भारतीय वंशजों जहाँ जहाँ है, ये गीत के माध्यम से अपनी जड़ों संस्कृति

0: मैंने इत्यादि पर ये गीत बेहद पसंद
1: करते। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत धन्यवाद नवीन जी जुड़ने के लिए। चलते चलते आप जुड़ ही गए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समय भाग रहा, लेकिन एक श्रोता को और लेते हैं, वे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
2: हेलो नमस्ते।
1: हाँ विजय जी, कैसे हैं आप?
2: सब ठीक बना
1: जी? जी बहुत अच्छा, सुनाइए कुछ।
2: हाँ सब कुछ बच्चा तो बहुत मन मन बोली आज बहुत हमरो सन पाछिसवे होई के
1: बोलिए।
2: एगो बहुत पुराना गीत है रफी के।
1: हाँ हाँ, दो लाइन सिर्फ प्लीज जी।
2: दौलत के नशे में तू हो के तू चूर, तू रहती गरीबों के दुनिया से दूर। कभी एक दिन ऐसा आएगा, सब माटी में सब मिल जाएगा।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
2: माटी बिहोरन माटी बिछावन, माटी के तन बन जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा।
1: बहुत सुंदर विजय बंधन जी, बहुत धन्यवाद। सचमुच कितना सुंदर संदेश है कि सब कुछ एक दिन मिट्टी में ही चला जाना है। तो अंतिम श्रोता को लेते हैं, इसके बाद तो समय भी नहीं बचेगा। हेलो धनेश्वर जी।
3: हेलो नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते जी, सुनाइए, समय भाग रहा है।
3: हाँ थोड़ा देर से, क्योंकि मैंने तो विषय नहीं सुना। मैं
1: विषय तो आज संगीत, गीत और बॉलीवुड की फिल्मों की ताकत, गीतों ने कैसे हिंदी को का परचम फैलाया, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं।
3: तो बॉलीवुड के जो राग है,
1: सिर्फ दो लाइन सुना दीजिए। हाँ, समय अब बिल्कुल नहीं है जी, सुनाइए।

धन्यवाद धनेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय भाग रहा है इसलिए मुझे काटना पड़ रहा है। मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़कर शिव के यह भक्तिमय गीत को सुनाया। तो श्रोताओं देखिए, गीत और संगीत की ताकत, आप कितने लोग जुड़ गए कि समय ही नहीं बचा कुछ और बताने के लिए और समय भाग रहा है। सचमुच इस गीतों ने देश नहीं विदेश तक इतना हिंदी को फैलाया है कि आज जो नॉन हिंदी वाले लोग हैं वे इसको सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन गीतों का संगीत, उनके भाव, उनके शब्द, उनके मुहावरे, व्याकरण, ये सब उनके भीतर एक उत्साह भरते हैं और एक नई चीज़ सीखने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। तो सचमुच श्रोताओं, ये गीत हमारी ताकत हैं और सुंदर गीत ज़्यादा बड़ी ताकत हैं। तो चलिए, इस गीत के साथ ही मैं आपसे विदा लूँगी और आप मुझे अनुमति दें अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके साथ जुड़ेंगे। आप सभी को इस ठंडी प्यारी सी संध्या में शुभ शुभ नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: जी हाँ, रेडियो मॉरिशस के साथ एक शाम आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार और सलाम।
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी।

जी हाँ, शाम के 5:02 हो गए हैं। स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे साथियों, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम तो आप ही के लिए है परम मित्रों। हमेशा आप कहते रहते हैं कि रेडियो मॉरिशस के बिना मुश्किल है जीना। 100% सच बात।

कही आपने। आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में हम तो गाने चलाएंगे ही, पर साथ ही साथ प्रश्न भी होंगे, और आज है सामान्य ज्ञान पर प्रश्न, जनरल नॉलेज पर। दिमाग का खेल, ज्ञान का मेल। स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, लैंग्वेज, लिटरेचर और फिल्मों पर होंगे तरह तरह के सवाल। बस आप दिखाइए अपना कमाल। तो चलिए, पहला गाना चलाने का समय आ गया है और पहला प्रश्न भी होगा फिल्मों पर आधारित, यानी बॉलीवुड पर। और अभी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई, बटवारा 1947, जिसमें सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा जी नजर आई थी, और साथ ही साथ आवारापन 2, जी हाँ, जो सीक्वल है आवारापन का। 2007 में आवारापन रिलीज हुई थी ये फिल्म, और उसका जो दूसरा भाग है आवारापन 2, ये रिलीज हुई अभी हाल ही में। पहले आवारापन में इमरान हाशमी के साथ श्रेया सरन और मृणालिनी शर्मा थी, और दूसरे आवारापन में इमरान हाशमी तो है ही इस फिल्म में, उनके साथ हैं शबाना आजमी और दिशा पठानी। तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि इमरान हाशमी जो दोनों फिल्मों में नजर आते हैं लीड हीरो के रूप में, उसका नाम क्या है फिल्मों में। 4028085 पर बताइए हमें कि इमरान हाशमी जो है आवारापन में 2007 में और 2026 में आवारापन 2 में, उसका नाम क्या है। एक ही नाम है, ये फिल्म एक सीक्वल है आवारापन का। तो बताइए हमें 4028085 पर जवाब दीजिए। और पहला गाना फिल्म आवारापन से जो रिलीज हुई थी 2007 में।

चाहे हो मीना, मोहिनी या मारिया, किसी की है ये तो माहिया। जी हाँ, माहिया माहिया, सुजान की मीठी आवाज में अभी आपने आवारापन फिल्म का गाना सुना। और हमने आपसे प्रश्न किया कि इमरान हाशमी जो दोनों फिल्म में लीड हीरो के रूप में नजर आते हैं, उनका नाम क्या है दोनों फिल्मों में, और सही जवाब है शिवम पंडित। जी हाँ, अंडरवर्ल्ड का एक खिलाड़ी, बाद में अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करता है शिवम पंडित। और सही जवाब केवल दो श्रोताओं ने दिया है, पहली है मेबक की इंदिरा जी और दूसरी है वाक्वा की शोभा जी। चलिए, जहां पर ये फिल्म रिलीज हुई थी हाल ही में आवारापन दो, वहीं पर एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका शीर्षक है आर्यभट्ट की जीरो। जी हां, आर्यभट्ट का जीरो, जिसमें न्यू कमर हिमांश कोहली नजर आए थे। उनके पिताजी का नाम आर्यभट्ट है और ये फिल्म जो है, पिताजी अपने बेटे को समझते हैं कि वो जीरो है, बिल्कुल जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया अब तक का, लेकिन बाद में बेटा जीरो से हीरो बन जाता है। आर्यभट्ट क्यों? क्योंकि आर्यभट्ट ही ने जीरो का आविष्कार किया था, जो नंबर प्लेसिंग सिस्टम है, डेसिमल, वहां उनका आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। तो आप हमें जल्दी जल्दी बताइए, ये जो प्रश्न है आधारित है गणित विज्ञान पर, यानी मैथमेटिक्स पर, जो आपका प्रिय विषय है। तो आप हमें बताइए, जीरो से लेकर 100 तक, बिल्कुल जीरो इंक्लूसिव एंड 100 आल्सो इंक्लूसिव, दोनों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, साथ में लेना पड़ेगा। जो नंबर्स हैं जीरो से लेकर 100 तक, आप उसे जल्दी जल्दी बताइए हमें, उसको ध्यान में रखते हुए कि जीरो से लेकर 100 तक 100 तक कितने जीरोज है। इतना आसान सा प्रश्न लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फ्रॉम 1 फ्रॉम 0 टू 100, और आप

0: नंबर मिलाइए 4028087472 8085 पर, जल्दी जल्दी जवाब दें। और यहाँ पर कोई हीरो है तो कोई जीरो है।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

जी हाँ, हमने सवाल किया था कि 0 से लेकर 100 तक कितने जीरोज हैं। बहुत से लोगों ने कहा 11।

लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न था। और सही सही जवाब है 12, यानी 12 जीरोस, यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 में दो जीरोस है, एक ही नहीं, इसीलिए 12 जीरोस कुल मिलाकर। और सही जवाब दिया मोडालविया से इंदिरा जी, क्रापेट से बस्तुपुर से विजय भाई, लिस्कालिये से अली जनाब, बुबासे से बसंती जी, देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स और सिरिक भाई फ्रॉम फिनिक्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के ये का ये जो सिलसिला है इसे हम आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग बाहर देखेंगे तो मौसम है हवादार, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, लेकिन आजकल ये हवा जो है खुशबू नहीं लुटा रही है, थोड़ा हंगामा मचा रही है, तेज हवाएं बह रही हैं, आपको क्या कहें हम। तो चलिए आपके लिए एक सामान्य ज्ञान पर एक प्रश्न हो जाए। प्लीज कृपया आप लोग हमें बताइए कि उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं जो हवा की गति को नापता है। हाउ डू वी कॉल दैट इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ विंड, हवा की गति और दिशा को नापता है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ये जो खेल खिलाड़ी प्रोग्राम है ये सभी वर्ग के लोगों का है, बच्चे हो, बड़े हो, नौजवान हो, पुरुष महिला, नवयुवती नवयुवक, सभी लोग भाग ले सकते हैं। दिमागी कसरत करने का मौका आपको कहां मिलेगा। 4028085 402 80 85 पर आप लोग जवाब दें।

दीवाना, सचमुच मैं दीवाना हूँ आपके सही जवाबों का। सवाल था कि इतनी तेज हवाएं बाहर बह रही हैं कि हम आपसे क्या कहें। सावधानी बरतिए जब आप बाहर जा रहे हो तो। और सवाल था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हवा की गति और दिशा को नापता है। An apparatus, an instrument which measures the wind speed and direction. और सही जवाब है anemometer. जी बिल्कुल, किसी ने कहा barometer, लेकिन वो तो atmospheric pressure को measure करता है. Anemometer is the right answer. और ये जो शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, और anemos को कहते हैं हवा, विंड, और इसी से बनता है anemometer. और ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है किलोमीटर्स पर आवर. और सही जवाब दिया एक बार फिर हाईलैंड्स से देवी जी, बसंती जी फ्रॉम बोबासे, इंदिरा जी फ्रॉम ओदालबेया, सुरेखा जी फ्रॉम मेनिल, इंदिरा जी फ्रॉम एबर्ग, अली साहब फ्रॉम लेस्कालिये और उमा जी फ्रॉम रोजबेल. चलिए और एक प्रश्न आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज यानी इंटरनेट

इंटरनेशनल न्यूज और सभी की नजरें, सभी की जो सोच है आजकल नेपाल के साथ है। उस देश में एक फ्लैश फ्लड हुआ, आपको तो पता है, अचानक से बाढ़ उतर आई और कितने लोगों की जानें चली गई। ये जो प्राकृतिक प्रकोप है बहुत ही भारी पड़ा आर्थिक स्तर पर नेपाल के लिए। ईश्वर करे ये जो उन लोग गुजर गए उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। तो चलिए नेपाल पर ही हम एक सवाल करते हैं आप लोगों के लिए। और जो माउंट एवरेस्ट है, जहां जी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, उसकी चढ़ाई 29 मई 1953 को हुई थी सर एडमुंड हिलारी और एक नेपाली व्यक्ति साथ उन्होंने दिया था। सर एडमुंड हिलारी जो न्यूजीलैंड का नागरिक था, उनके साथ एक नेपाली नागरिक था, शेरपा जिसे कहते हैं, एक पहाड़ी कबीला का जो सदस्य था शेरपा। तो उसका नाम क्या था? 4028085 पर हमें बताइए कि सर एडमुंड हिलारी के साथ और वो कौन सा नेपाली व्यक्ति था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सबसे पहले की थी। 4028085 4028085 पर प्लीज आप लोग जवाब दें।

0: सही बात है ना, जीवन तो उसी ने हमें दिया है, परमपिता परमेश्वर, वही हमें संभालेंगे धरती पर हमें उन पर अटूट विश्वास रखना है। और हमने आपसे सवाल किया था कि माउंट एवरेस्ट सबसे पहले जिसने चढ़ाई की थी वो थी सर एडमंड हिलारी ऑफ न्यूजीलैंड, और एक नेपालीज शेरपा यानी पहाड़ी जो व्यक्ति था वो कौन थे। सही जवाब है तेंजिंग नोगे। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, तेंजिंग नोगे ही सही जवाब है। और जवाब देने वालों का नाम रंजना जी मेबर्ग से, दीपा जी कौतूहल से, शोभा जी वाकवा से और इंदिरा जी मेबर्ग से। पांच बजकर 35 मिनट हो गए हैं।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।

जी हाँ, खेल खिलाड़ी में पुनः आप लोगों का हम यहाँ पर शानदार स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस AM2 की लहरों पर और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज पर हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और साथ ही साथ आप लोगों के मनोरंजन के लिए गाने भी चला रहे हैं। अगर आप लोग फोन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, घर बैठे अपने परिवार के साथ खेल सकते हैं, दिमागी कसरत कर सकते हैं। ये एक चुनौती है आप लोगों के लिए, आप प्रश्नों का जवाब ढूंढिए। और इस दूसरे भाग में चलिए हम आपके लिए प्रश्न लाते हैं फुटबॉल पर। और फुटबॉल पर हम चर्चा करेंगे बेशक इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां पर कल मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को

0: पीटा 4-1 के स्कोर से, और अकेले अभी वो प्रीमियर लीग टेबल में पहले स्थान पर है 6 अंक लिए। मैनचेस्टर सिटी इज ऑन टॉप और अर्लिंग हैलैंड ने 2 गोल्स अब तक स्कोर कर लिए हैं। और आज का जो अर्ली किक ऑफ है वो लिवरपूल अनफील्ड रोड में नॉटिंघम फॉरेस्ट का स्वागत उन्होंने किया था, और स्वागत करते हुए क्या हुआ, लिवरपूल 2 और नॉटिंघम फॉरेस्ट 2। एक समय पर लिवरपूल की हार हो रही थी 2-1 से, बाद में लिवरपूल ने ड्रॉ किया पहले मैच में, ड्रॉ न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ 2-2, और वहां पर भी अंतिम गोल ज़ुबोस्लाई ने स्कोर किया था तो मैच हो गया था 2-2, और यही सिनेरियो इस मैच में भी देखने को मिला। 2-2 लिवरपूल का ये जो स्कोर है लगता है उन लोगों के लिए प्रिय है, कुछ खास नहीं कर पा रही है ये टीम। और आज के जो फिक्स्चर्स हैं इस प्रकार हैं, कोवेंट्री सिटी वर्सेस हल, और बॉर्नमुथ वर्सेस एवर्टन, स्पर्स वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड, और कल का जो बहुत ही धमाकेदार मैच होने वाला है वो है चेल्सी वर्सेस ब्राइटन। ब्राइटन बहुत ही ठीक तरह से उन्होंने खेला, एस्टन विला के खिलाफ 4-0 से उनकी जीत हुई थी, और ब्राइट फ्यूचर है ब्राइटन का, लेकिन चेल्सी ने भी फुलहाम को हराया था, तो बहुत ही सुंदर मैच होने वाला है। और कल के जो मुकाबले में लीड्स वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, सन्डरलैंड वर्सेस फुलहाम, और मैनचेस्टर यूनाइटेड स्वागत करेगा इप्सविच टाउन का। और अंतिम मैच खेला जाएगा रात्रि सोमवार की रात्रि, और वो भी 11 बजे की रात्रि, एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल। करंट चैंपियंस आर्सेनल से लोहा लेगा भी एस्टन विला, जो उन्होंने मैच हारा था ब्राइटन के खिलाफ, लेकिन ये पहला मैच है, दूसरे मैच में सब कुछ भूल जाना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए फ्रेशली। तो आप हमें बताइए 4-0-2, 8-0-8-5 पर की प्रीमियर लीग में जो तीन न्यूली प्रोमोटेड टीम्स हैं वो कौन से हैं, कौन से तीन नई टीम प्रीमियर लीग में आ गए हैं इस सीजन से। 4-0-2, 8-0-8-5, 4-2-8-5 पर जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दें।
1: एक हसीन सफर रेडियो मॉरिशस।
0: लिवरपूल के दिल पर तो चोट सी लगी है, क्या करें।
2: Hey.

जी, हमने सवाल किया था कि कौन से तीन नई टीम्स आ गई हैं प्रीमियर लीग में इस सीजन से, यानी 2026-2027। बड़ा आसान सा प्रश्न था और सही जवाब है हल सिटी और कोवेंट्री सिटी, जो आज इन दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा है रात्रि को। और साथ ही साथ इप्सविच टाउन, जो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ ये टीम खेलेगी। और सही जवाब दिया ट्रियोले से धीरज भाई, क्लब सेबास्तोपोल से एक बार फिर विजय भाई, और साथ ही साथ वक्वा से शोभा जी। चलिए, फुटबॉल तो एक बड़ा ही निराला सा खेल है जो दिलों से बढ़ाता है दिलों का मेल। तो चलिए, और एक खेल के बारे में हम आपसे सवाल करना चाहेंगे। और उस खेल का नाम है डोमिनो। ये एक इंडोर गेम है, एक फैमिली गेम है जो आप सभी लोग बेहद ही पसंद करते हैं। तो आप हमें बताइए, जब आप एक न्यू डोमिनो सेट खरीदते हैं, तो सवाल जरा ध्यान से सुने, जब आप एक न्यू खरीदते हैं डोमिनो सेट, तो उसमें बहुत से टाइल्स होते हैं, यानी पीसेस, पीस, रेक्टेंगुलर टाइल्स जिससे आप लोग खेलते हैं। अगर चार चार खिलाड़ी हैं तो सभी चार खिलाड़ियां जो है, जो चार खिलाड़ी हैं, वो छः छः टाइल्स लेंगे अपने हाथों में। तो हमें बताइए आप कि जब आप एक डोमिनो सेट खरीदते हैं नया नया, तो उसमें कितने टाइल्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। 4028085 पर बताइए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीसेस और टाइल्स इन ए डोमिनो सेट व्हेन यू जस्ट परचेज ए सेट। 4028085 4028085 पर प्लीज आप लोग जवाब दें।

जी हाँ, सवाल था कि एक डोमिनो सेट में कितने पीसेस होते हैं, कितने टाइल्स होते हैं। जब आप खरीदते हैं तो आपको मिलते हैं 28 टाइल्स, लेकिन आप खेलते हैं केवल 27 से, यानी 27 टाइल्स से। एक जो है उसमें कोई नंबर नहीं है, डबल यानी डबल ब्लैंक, जिससे हम नहीं खेलते हैं उससे। और सही जवाब दिया सबसे पहले अली जनाब फ्रॉम लिस्कालिए, सेंचुबिया से माला जी, विजय भाई क्लब सेबास्तोपुल से, रामदत्त भाई वाकवा से, शोभा जी वाकवा से, इंदिरा जी मेबर्ग से, इंद्रानी जी लिस्कालिए से और इंदिरा जी मादाबिया से। चलिए एक अंतिम प्रश्न हो जाए। हमने आपसे कहा था कि ये जो रेक्टेंगुलर टाइल्स है, रेक्टेंगल, हाँ ये जो पीसेस हैं उसका जो शेप है वो रेक्टेंगल है, तो हमें आप बताइए कि दुनिया में केवल एक ही ऐसा झंडा है जो रेक्टेंगल नहीं है। कौन सा देश है जिसका झंडा रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है? मॉरिशस का जो झंडा है वो तो रेक्टेंगुलर शेप्ड है, फ्रांस का भी, इंग्लैंड का भी देखेंगे तो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां भी ले लीजिए सभी जो फ्लैग्स हैं वो तो रेक्टेंगुलर है, क्वाड्रिलैटरल। लेकिन केवल देश, एक ही देश है, एकमात्र देश है दुनिया भर में जिसका जो झंडा है, फ्लैग है, वो रेक्टेंगुलर नहीं है। 4028085 4028085 पर प्लीज आप लोग जवाब दें।

सवाल था कि दुनिया में वो एकमात्र झंडा है, फ्लैग है, जो रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है। दरअसल वो टू ट्राइंगुलर शेप का है, ऊपर है चांद, नीचे है सूरज। और सही जवाब है नेपाल। बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं ने दिया। वे है ऋषि भाई फ्रॉम वाशेगी और कौतूहल से दीपा जी, बेनिता जी पहली बार के लिए रोजील से, लिस्कालिये से अली जनाब और लिस्कालिये से ही इंद्रानी जी। और इसी के साथ आज का ये जो खेल खिलाड़ी प्रोग्राम है यहाँ पर संपन्न हो चला। आप लोगों ने बड़े प्यार से इस प्रोग्राम में भाग लिया, प्रश्नों का जवाब ढूंढा और फोन करके दिया भी। और जिन लोगों की लाइन नहीं लगी उन लोगों से हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आप लोग फिर से कोशिश कर सकते हैं क्योंकि जिंदगी में कोशिश जारी होनी चाहिए। और वादा तो आप जानते ही हैं कि आप लोग अपने आप को फिट एंड फाइन रखेंगे ताकि आप लोग जिंदगी में करें शाइन और जिंदगी में सब कुछ हो जाए फाइन फाइन। ईश्वर ने आपको मानव का शरीर दिया है, इसे आप लोगों को रखना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहिए, क्यों नहीं, अच्छा दिखना चाहिए आप लोगों को जब आप लोग अपने आप को आईना में देखते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, व्यायाम, तनाव से दूर और खान पान पर ज्यादा ध्यान, सिगरेट्स, अल्कोहल और ड्रग्स से आप बिल्कुल रहें दूर, तभी तो चेहरे पर छाएगा नूर। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आप लोगों को।

0: खेल खिलाड़ी वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 6 बजे हैं। नमस्कार और आदाब। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे आज पहले आज की सुर्खियां। वाकवा जिमखाना में 360 नए पुलिस अधिकारियों ने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पारंपरिक पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। समारोह में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही नेशनल क्राइम एजेंसी बिल राष्ट्रसभा में पेश करेगा। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। इसमें शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में ड्राइविंग करने पर वाहन जब्त करने और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के कारण भारी तबाही में के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बुधवार को नेपाल तिब्बत सीमा पर आए इस संकट में 600 से ज्यादा लोगों की मौत। मोका स्थित महात्मा गांधी संस्थान में ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायस्पोरा इनिशिएटिव्स की पहल पर मॉरिशस की विरासत स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों को समर्पित एक मंच आयोजित किया गया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। इस शनिवार 360 नए पुलिस अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग के समापन पर पारंपरिक पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। यह आधिकारिक समारोह वाकवा के जिमखाना में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और बड़ी संख्या में आए उनके परिवारजनों की उपस्थिति में संपन्न हुई। वाकवा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही नेशनल क्राइम एजेंसी बिल राष्ट्रसभा में पेश करके पुलिस बिल में पूर्ण सुधार करने की योजना बना रही है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग किसी पुलिसकर्मी का अपमान करते हैं या उस पर हमला करते हैं उनके प्रति वे सख्त कार्रवाई करेंगे। इस समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने प्रेस के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री दफ्तर के लिए एक नई गाड़ी की खरीद पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि स्थिति कैसी भी हो लेकिन एक सरकारी नेता को सुरक्षा की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। बालक आद्रियानो की मौत को लेकर डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये एक गहरी त्रासदी है। उनको सुनते हैं।
3: Il y a une tragédie. Ça ne fait pas bien arriver ça. La ROSAC, chacun nous apprend son responsabilité. Prenez l'un d'affaires. Nous apprenons son responsabilité, nous tous.

0: रूप से देश के दक्षिण पश्चिम तट को प्रभावित कर रही हैं। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय सावधानी बरतने की मांग की है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में पेश है।
1: इसका असर खासतौर पर पश्चिम से दक्षिणी तट तक के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह से ही प्लीकॉम्फ्लाक से लेकर लिमोन तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस बीच समंदर में कुछ पर्यटक भी नजर आए। कुछ लहरें हैं, हम दूर समुद्र में नहीं जा रहे, गहरे समुद्र में जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, सावधान रहना चाहिए, खतरा हो सकता है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली तेज लहरें न केवल मॉरिशस बल्कि रोड्रिग्स में भी समुद्र की स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें आने की आशंका है। इसी वजह से तेज समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो सोमवार तक लागू रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया है कि उच्च ज्वार के समय बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में निचले तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है, खास रूप से पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में हवाएं भी तेज हो रही हैं और झोंकों के साथ चल रही हैं। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
0: कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की डर्बन में आयोजित हालिया सादक शिखर सम्मेलन में भागीदारी के परिणामों पर विचार किया गया। मॉरिशस के प्रस्तावों में शामिल है मॉरिशस को एक इलाकाई डिजिटल और तकनीकी केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए डिजिटल एम्बेसी विलेज का निर्माण, साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के लिए बढ़ा हुआ समर्थन। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनवरी 2025 में 8 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का भुगतान करके सदक के भीतर मॉरिशस की वित्तीय स्थिति को नियमित करने की भी जानकारी दी। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में शराब, नशीले पदार्थ और मादक पदार्थों के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन को जब्त करने और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान है। इसमें रोड रेज को भी एक अपराध घोषित करने का प्रावधान है। इसके अलावा डेंजरस ड्राइविंग से मौत का कारण बनने और सार्वजनिक सड़क पर अवैध रेसिंग जैसे अपराधों के लिए भी अधिक कठोर दंड का प्रावधान इसमें किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कल इस पर गौर किया गया। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ साथ MITD प्रशिक्षण केंद्रों के कर्मचारियों के लिए स्कूल अवकाश घोषित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इसका जायजा लिया। कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मॉरिशस म्यूजियम्स काउंसिल के सहयोग से 18 सितंबर 2026 को सचिव सागर रामगुलाम की 126वीं जयंती मनाने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उनकी स्थायी विरासत का सम्मान करना, उनके कार्यों का मार्गदर्शन करने वाले एकता और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को याद दिलाना तथा युवा पीढ़ी को मॉरिशस की पहचान के निर्माण और विकास में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायस्पोरा इनिशिएटिव्स की पहल पर आज सुबह मोका के महात्मा गांधी संस्थान में मॉरिशस की विरासत, स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों को समर्पित एक मंच आयोजित किया गया, एक फोरम लगाया गया। इस कार्यक्रम में कई महानुभावों ने भाग लिया, जैसे गणराज्य के राष्ट्रपति तथा कला एवं संस्कृति मंत्री वहां उपस्थित रहे। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: पुराने पत्थरों के पीछे कई आवाजें छिपी हैं, कई जिंदगियां, मुलाकातें, बिछड़ने की कहानियां और कभी कभी ऐसे जख्म भी जो पीढ़ियों से चली आई हैं। मॉरिशस में ये निशान कई अलग अलग स्मृतियों से बनी एक साझा कहानी बयान करते हैं। ऐसी ही ऐतिहासिक स्मृति पर आधारित देश के ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों पर ये फोरम आयोजित किया गया। उद्देश्य इन धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विचार करना कि अलग अलग इतिहासों को आने वाली पीढ़ियों तक किस तरह पहुंचाया जाए। गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा, कहते हैं अलग अलग जहाज़ों में आए, अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन आज सभी एक ही जहाज़ में हैं। सभी को साथ में मिलकर पतवार चलाना है। ऐसे स्थल हैं जिसकी

0: बदौलत हमें धरोहर में प्राप्त समाज को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और साझा समाज के निर्माण पर चिंतन किया जा सकेगा भावी पीढ़ी के लिए। इस विचार विमर्श के साथ कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेमोन के सांस्कृतिक परिदृश्य के पुनर्वास के लिए 3 वर्षों में 124 मिलियन रुपए और म्यूबर्ग के राष्ट्रीय इतिहास म्यूजियम के लिए 100 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। ऐसे 100 मेमोरियल सेंटर को भी जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। मंत्री महेन गुंडिया ने कहा, मंत्रालय इन ऐतिहासिक स्थलों के रक्षा के लिए काम कर रहा है। कार्य की प्रगति के वास्ते विशेषज्ञों की भी मदद मिलती है। उनकी रिपोर्ट का इंतजार है ताकि आगे बढ़ सके। इन संरक्षण परियोजनाओं के पीछे उद्देश्य इस ऐतिहासिक स्मृति को जीवंत बनाए रखना है। एक बहुआयामी स्मृति है जो अलग अलग इतिहासों और समुदायों से मिलकर बनी है, जिसने मिलकर मॉरिशस के निर्माण में योगदान दिया है।
1: मॉरिशस से 415 किलोमीटर उत्तर में स्थित सेंट मार्टिन में देश के बाकी हिस्सों के साथ संवाद करना कभी भी आसान नहीं रहा है और अब तक वहाँ काम करने वाले लोग मुख्य रूप से रेडियो और सैटेलाइट टेलीफोन के ज़रिए ही अपने परिवार वालों से संपर्क कर सकते थे और इंटरनेट कनेक्शन अब सुरक्षा बलों और मछली पकड़ने के ऑपरेटरों के दैनिक जीवन को आसान बना रहा है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: सैंपाउडों में लंबे समय तक सैटेलाइट फोन और रेडियो ही मॉरिशस से संपर्क में रहने का मुख्य साधन रहा है। ये उपकरण अटोल पर काम करने वाले लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन महंगे होने के साथ साथ इनकी सुविधाएं भी सीमित हैं। ऐसे में इंटरनेट कनेक्शन की शुरुआत ने पूरी स्थिति बदल दी। इस परियोजना के लिए टेंडर जीतने वाली कंपनी एमटेल अब सैंपाउडों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अटोल पर रहने और काम करने वाले लोगों ने इसे पहले ही एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में स्वागत किया।
2: Ce qui s'est passé maintenant, c'est vraiment très important.
0: राफेल फिशिंग कंपनी के बेथॉन बुले ने कहा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि संचार जब नहीं होता तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए दूरदराज कंपनी का प्रबंधन तभी बेहतर होगा जब जान पाएंगे कि क्या हो रहा है।
3: Face beaucoup moins de difficultés dans les passés, surtout quand il y a search and rescue operations qui nous tiennent là-bas.
0: Vishwanath Virasamy ne kaha, vigat mein kai kathinaiyan hui rahat operation ke dauran sandesh pahunchane mein aur report bhejne mein bhi. Wahan kaam karne wale logon ki zaruraton se badhkar ye naya connection अधिक समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है, खासकर गणराज्य के सबसे दूरदराज इलाकों के लिए। मंत्री अविनाश राम टोहल ने कहा, अब सैंपाउडों को भी कनेक्ट किया गया है लियो टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी लो ऑर्बिट सैटेलाइट। इसकी लागत कम है, कनेक्शन भी ज़्यादा शीघ्र
4: है।
0: तसराजन पिले चिदम्बरम ने कहा, अगालिगा के बाद राफेल टापू और सैंपाउडों को जोड़ रहे हैं। सभी मॉरिशियन चाहे जिस भी टापू पर हो कनेक्टिविटी का अधिकार रखते हैं। एमटेल के लिए भी ये परियोजना मुख्य आबादी वाले क्षेत्रों से बढ़कर कनेक्टिविटी का विस्तार करने और गणराज्य के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे के और करीब लाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मौसिलो आलिमान ने कहा, हमारा मिशन इस कनेक्शन को स्थापित करना ताकि सभी इससे जुड़ सके, व्यापार, मनोरंजन आदि के लिए। समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और स्थापना का काम शुरू हो गया है। इस तरह सैंपाउडों में मॉरिशस गणराज्य की कनेक्टिविटी के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।
1: ऑटिज्म के प्रति जागरूक करना, जानकारी देना और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलना है। ईस्टर्न वेलफेयर एसोसिएशन फॉर डिजेबल्ड ने आज सुबह फ्लैक में इसी उद्देश्य को समर्पित एक मार्च का आयोजन किया। ये उचित सहायता और मार्गदर्शन के महत्व की याद दिलाने का एक अवसर था, साथ ही उन परिवारों को अपनी बात रखने का मंच देना था जो इस वास्तविकता को

0: हर दिन जीते थे। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे, इस शनिवार 360 नए पुलिस अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग के समापन पर पारंपरिक पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। ये औपचारिक समारोह वाक्वा के जिमखाना में लगा। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: ये गर्व के साथ अपनी नई वर्दी पहने हुए हैं ये युवा रिक्रूट 10 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्हें शारीरिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि पुलिस सेवा में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए वे जरूरी कौशल और क्षमताएं हासिल कर सकें। केवल 20 साल की उम्र में इस युवा रिक्रूट को अपनी बैच का सर्वश्रेष्ठ रिक्रूट चुना गया है। कोई राज की बात नहीं, इसके लिए केवल कड़ी मेहनत, समर्पण, ईमानदारी और त्याग की आवश्यकता है। ये एक नेक पेशा है जहां हम पुलिस बल में हर रोज देश व जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। 360 युवा महिला और पुरुष रिक्रूटों ने प्रधानमंत्री के साथ साथ पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आधिकारिक रूप से परेड की। ये प्रदर्शन उन विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में से एक था जिनसे इन रिक्रूटों को गुजरना पड़ा। ये वर्दी मेरे त्याग को दर्शाता है जिससे मैं यहाँ खड़ी हूँ। प्रशिक्षण में हमें अनुशासित होना सिखाया गया जिससे हम जनता की सेवा कर सकें। ये एक पारामिलिटरी प्रशिक्षण है जिससे मेरे चरित्र को दृढ़ बनाया गया है और मानसिक शारीरिक रूप से मैं प्रशस्त और अनुशासित भी बना हूँ। अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध ये अधिकारी सबसे पहले देश और जनता की सेवा करना चाहती हैं। पुलिस एक नेक पेशा है, हम समाज की सेवा करते हैं, जनता के संपर्क में होते हुए जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। बचपन से मैं एक पुलिस अफसर बनना चाहता था, देश और जनता की सेवा करना चाहता था तथा मेरे दादा जो एक पूर्व एसीपी थे उनसे मैं प्रेरित हुआ हूँ। गर्व के इस पल को उन्होंने अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने दूर रहकर भी हमेशा उनका समर्थन किया। 10 महीने दूर रहे, ऐसा पहली बार हुआ कि हम इतने लंबे अरसे के लिए दूर रहे, पर ये भी समझ गया कि एक बार पुलिस फोर्स में कदम रखना मतलब सब कुछ बदल जाता है। इसका हौसला बढ़ाया गया, बहुत सलाह दिया, फिर इसने अपना रास्ता खुद तय किया। पूरे ट्रेनिंग में इसका समर्थन किया हमने, माँ बाप भाई बहन सभी का साथ मिला। अब ये नए रिक्रूट अपनी अपनी यूनिट में शामिल होंगे और अपने प्रशिक्षण के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। इस बार वास्तविक परिस्थितियों में काम करते हुए वे अपने अनुभव और कौशल को और मजबूत करेंगे।
0: और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें नेपाल तिब्बत सीमा पर आए विनाशकारी अचानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या आज 600 पार कर गई है और करीब 2400 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें कई विदेशी भी शामिल हैं जो वहां पर पर्यटन के लिए या फिर हिमाचल में तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे और अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और नेपाल में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए 4 से 5 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है जो उसकी अर्थव्यवस्था का 10वां हिस्सा है। इस आपदा के बाद भारत 62 टन आपातकालीन सहायता पहुंचाने वाला पहला प्रमुख देश बना। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। देश में सोमवार 10 बजे तक ऊंची लहरों और तेज़ हवाओं की चेतावनी बरकरार रखी जा रही है। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज़ हवाएं और ठंडी हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज पूर्वी दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। कल दिन के दौरान भी मौसम बरसाती रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 13 से 15, अधिकतम 17 से 20। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर में, खासकर दक्षिण पश्चिम में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी।

दूर समंदर में तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों तथा तटों पर भी न जाने की मांग की जाती है, खासकर ऊंचे ज्वार के समय। और हवा भी तेज रहेगी, यहाँ वहाँ उड़ती चीज़ों से बचने, ऊंचाई वाली जगहों पर काम करने से बचने और सड़कों पर क्रॉस विंड्स के कारण ज़्यादा सतर्कता बरतने की मांग की जाती है। कल सुबह सूर्योदय 6:20 पर, शाम को सूर्यास्त 6 बजे होगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग तकनीकी पर शिव का साथ रहा। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: शोक समाचार सुनिए। नंबर 13 प्रिंस दे गाल रोजिल में, नंबर 13 प्रिंस दे गाल रोजिल में 93 साल की 93 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सुकिया जीवलाल, श्रीमती सुकिया जीवलाल पैदाशी नाम छतु और जो नोएली के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान नंबर 13 प्रिंस दे गाल रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 2 PM। मिस्यू लीन लालुई कैथोबोन में, मोंसेयर लीन लालुइज कैथोबोन में 93 साल की 93 इयर्स ओल्ड की श्रीमती आनी रागू, श्रीमती आनी रागू पैदाशी नाम लक्ष्मण और जो आनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:30 ला शापेला दांत दिलियन सन सब बासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM। मोसेलमान डी प्रिवा ओलिविया बेलिया रिविया सेश में, मोसेलमान डी प्रिवा ओलिविया बेलिया रिविया सेश में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती एलामा रामिया, श्रीमती एलामा रामिया जो कमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान मोसेलमान डी प्रिवा ओलिविया बेलिया रिविया सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शुमे माशिन पालमा काथोबोन में, शुमे माशिन पालमा काथोबोन में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री कुपुसामी मामुंजी, श्री कुपुसामी मामुंजी जो मनोज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे मोगा पिचित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। आनंद रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में, आनंद रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दुलारी सिबालक, श्रीमती दुलारी सिबालक जो मैडम रोजी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनके मकान आनंद रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:30 PM। नंबर 7 इमाम मुस्तफ़ा अदमद स्ट्रीट कॉयलोफ पोटरी में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शिंगफू यिपुन सन, मिसिज शिंगफू यिपुन सन पैदाशी नाम लाम चान की और जो आफुक के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, गुजर गई है। उनका जनाजा, उनका ताबूत कल दिन के 1 बजे लाशा पेलाओ दान दो मोरा पिचित रिविया से उठाकर दफनाने के लिए शिबेल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

सीबी की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां सुनिए। सीबी की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां। बॉ शेरी ग्रैंड बॉ ले ग्रैंड रोड NHDC ग्रैंड बॉ और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 30 अगस्त 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। एक और विज्ञप्ति सुन लीजिए। ग्रांबे सोचीज सीते लुमियर ग्रांबे और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है। आजू पैराडाइज रुई ओ की दे पुलिस स्टेशन ग्रांबे के आसपास और बाकी के रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से कल रविवार 30 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे के बीच सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बासर रोड केनेडिया लेन हाइलैंड्स और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बुधवार 2 सितंबर 2026 को मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना सूचित किए फिर से बिजली की सप्लाई को जारी की जाएगी। इन असुविधाओं के लिए सीबी क्षमा प्रार्थी हैं।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: श्रावणी महोत्सव के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वधान में रविवार 30 अगस्त को दोपहर के 3 बजे पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। रुष्टय के आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा पुरुष एवं महिला समाज शाखा 5 में गांधी भवन महात्मा गांधी रोड रुष्टय में। आर्य सभा मॉरिशस और वेद प्रचार समिति के तत्वधान में श्रावणी मास के उपलक्ष में इन समाजों में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सावान आर्य जिला परिषद, श्रावणी यज्ञ पूर्णाहुति, श्यामुनी आर्य समाज, शुक्रवार 28 अगस्त 2026 से रविवार 30 अगस्त 2026 तक दोपहर के 3:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। श्रावणी महोत्सव के उपलक्ष में गहलोत राजपूत महासभा त्रियोले के राजपूत समाज शाखा नंबर 4 में पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस रविवार 30 अगस्त को सुबह के 9:30 बजे से राजपूत मंदिर रॉयल रोड ट्रॉबुचिक ट्रियोले में। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी

सभा श्रवण मास के संदर्भ में यज्ञ एवं प्रवचन का आयोजन कर रहे हैं। इस रविवार 30 अगस्त 2026 को इन सभाओं में विवेकानंद सभा तोम्बुबे शाखा नंबर 2 रविवार 30 अगस्त को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक श्री दयानंद गणपत रेसिडेंस रिवरव्यू कॉम्प्लेक्स तोम्बुबे में। वेल आर्य रविवेद सभा शाखा नंबर 26 इस रविवार 30 अगस्त को सुबह के 9 से 12 बजे तक सर ए आर एम रोड अपवेल में। आर्य रविवेद फेडरेशन शाखा नंबर 6 एवं रोष्टेय शाखा नंबर 5 यहाँ पर इस रविवार 30 अगस्त को दोपहर के 3 से शाम के 6 बजे तक गांधी भवन महात्मा गांधी रोड रोष्टेय में प्रवचन दिया जाएगा। यहाँ पर आचार्य मनोज आर्य श्रुबंधु द्वारा जो अर्श गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम एमपी भारत से आए हैं। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा श्रावणी उपाकर्म के संदर्भ में शाखा नंबर 5 फेडरेशन नंबर 6 श्रावणी पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं रविवार 30 अगस्त 2026 को दोपहर के 3:30 बजे से गांधी भवन महात्मा गांधी रोड रोष्टेय में।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोतागण को अनीता का करजोर नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप आध्यात्मिक कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो रेडियो मॉरिशस द्वारा प्रसारित हो रहा है। श्रोतागण, कहा गया है कि सिद्धि ही तो लीलिया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम असिद्धि ही शब्देन उक्तम जले लिखितम अक्षरम। अर्थात सज्जन पुरुष जो बात हंसी मजाक में भी कहते हैं, वह पत्थर पर लिखे अक्षर के समान स्थायी होती है, परंतु दुष्ट जन शपथ लेकर भी जो कहते हैं, वह पानी पर लिखे अक्षर के समान क्षणभंगुर होती है। तो आइए इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन, हितोपदेश में कहा गया है कि ना कश्चित कस्य छिद्रे पुहु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवसत था। अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म से ना किसी का मित्र होता है ना शत्रु। मनुष्य के उचित और अनुचित व्यवहार से ही मित्रता और शत्रुता उत्पन्न होती।

प्रियजन, कहा गया है कि गतम ना शोचामि कृतम ना मन्ये, भविष्य दर्थम ना च चिंतयामि, वर्तमान कालें तु वर्तमाने कालस्य त्वत्वम नाहि वेद मूढ़। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बीती हुई बातों का शोक नहीं करता, किए हुए कर्मों को लेकर पछतावा नहीं करता और भविष्य में होने वाली बातों की भी चिंता नहीं करता, अपितु वर्तमान समय में वर्तमान के अनुसार ही रहता हूँ, क्योंकि मूढ़ मनुष्य ही समय के वास्तविक स्वरूप और उसके महत्व को नहीं समझता।

भक्तजन, कहा गया है कि संसार के भोगों को भोगते भोगते हम थक गए, किंतु भोग कभी समाप्त नहीं हुए। समय अपनी जगह स्थिर

हैं, किंतु हमारी आयु बीत गई, अंततः हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन मन में छिपी इच्छाएं और तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं हुई, इसलिए संतोष ही जीवन का अंतिम आनंद है।

श्रोताओं, बहुत ही अच्छा कहा गया है कि ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ही विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार

को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है। तो इन्हीं सुविचारों के साथ श्रोताओं, यह कार्यक्रम समाप्त होने चला। आपने साथ एवं ध्यान दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दुरूद पाक से रोशन हों दिल के सब चिराग, दुरूद पाक से रोशन हों दिल के सब चिराग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से महके हमारी ज़िंदगी का बाग। मौज़े सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आप जहाँ से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका आज की इस मजलिस में दिली खैर

आइए समात फरमाइए। एक हदीस, एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 6 अशरफियाँ थीं, 4 तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च कर दी और 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच रहीं। उनकी वजह से आपको तमाम रात नींद ना आई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि मामूली बात है, सुबह उनको खैरात कर दीजिएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुमैरा, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब है, क्या ख़बर है मैं सुबह तक जिंदा रहूँ।

मौजूद सामईन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो किसी मुश्किल में हैं उनके लिए आसानी के दरवाज़े खोल दे, और जो खामोशी से तुझसे अपनी मुरादें मांग रहे हैं उनकी जायज़ दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस। भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का।
3: भोजपुरी धड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के जितना कोई श्रोता लोगन साथ देवत हवन अभी से लेके रात के 11 बजे ले आप सब कोई के साथ देवे खातिर रत्ना चलाल हवन। अभी रात के 9:02 हुआ था और भरपूर मनोरंजन के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जहाँ पर तू पसंदीदा गीत के तू मांग करे सकब 4028085 जी 4028085 पर औरी मिसाज भी विदा करे सकब 5251705 पर। तो चला तो ठंडा जस्ती मारता ठंडा जस्ती करता और ऐसा ठंडा के मौसम में तनी गर्माहट भरा कार्यक्रम और है कार्यक्रम मजेदार रही रात के 11 बजे ले। तो चला आज के लाजवाब कार्यक्रम के शुरुआत करब जाए गो बढ़िया गीत संगे और हई गीत है संभावती दुमन के आवाज में रखल आज के हई पहला गीत शिव सागर एल्बम से लेवल गए। तो चला करब जाएगो बढ़िया शुरुआत।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखल जाता और अभी 9:07 हो गल बाद ढेर कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन और सब कोई ये बोला था तनी तड़का मार द ताकि है जो ठंडा मौसम चलाता ऐसन ठंडा के मौसम में तनी गर्माहट चलाई और काहे न बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत जब सुनब तनी गर्मी ऐसने बढ़ जाला। तो चला हैजा पर हमनी के वाकवा से फुलवंती जी जुड़ गल हवन संगे हवन उनकर पति देवानंद बेटी भावना बेटा उषन और पीतो बगल से जुड़ गल हवन अमृता गणेश और उनकर दुगो नातिन परी और सोनिया संगे हवन बेटा विषम और पतो हवन मीनाक्षी और संगे संगे हैजा पर घों गोप से साथ देवत हवन सुनीता जी उनकर बहिन कुंगुमा से विमला जी और बहिन हवन वीना जे घों गोप से साथ देवत हवन और अमृता जी घों गोप से और वीना जी गुडलैंड बगल से। तो चला हंसते मुस्कुराते हैजा पर अनीता लाल जी भी साथ देवत हवन और सब ईतू परिवार गोगा परिवार नागेश्वर परिवार खातिन रोशन सदा सिंह के अगला गीत जन है उमांग करत हवन वंदना हमर सोना। तो चला लाजवा भाई कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिन हमनी के जोन चचा ह का जनी चचा हमनी के बोले जाने ल अभी बहुत है वो व्हाट्सएप से भी करता इंस्टाग्राम पे भी अपन अकाउंट बना देले हवन और बैठे बैठे पूरा दिन सब कोई के स्टेटस देखते रहेला। तो हमनी के बोले जाने ल हमर हौ दोस्त है न संगतिया है न व्हाट्सएप पे कल स्टेटस डाल देलक हम देखली हमर तो चक्कर खा गईली हम बोली का है चाचा ऐसे कौन चीज स्टेटस डाल देलक बोले हाँ ऐसे स्टेटस डलले बा है उम्र में का बोलब हम बोली का है कौन चीज दलन बोले हाँ एगो शायरी दल्ले बा शायरी में बोले इशक अधूरा बा त अधूरा रहे द इशक अधूरा बा त अधूरा रहे द जे पूरा हो गल त पड़ी हमनी के ठंडा में बर्तन धुआवे लौगा धुआवे झाड़ू मरावे हये से अच्छा बा हमर इशक अधूरा रह गल त रह गल बुझाता हमनी के ताना मारता का है चाचा तू लुगा धोएले ठंडा में ए धत सब कोई के नहीं बोले के

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का, तड़का।
1: भोजपुरी तड़का का कार्यक्रम जैसे चलता है, जितना भी गीत चलावत है सब तोहर पसंद के है, और बढ़िया बढ़िया गीत संगे आप सब कोई हमनी के बहुत प्यार से साथ देवत हवन है। जहाँ पर गायत्री जी नोएल फॉन्स से हा साथ देवत हवन, और बहुत खुशहाली के साथ बोले आज लागी नाही छूटे राम तनी हमर खातिन चला द बेटा अजय मामी हवन कल्याणी मोहन मेबक से भौज और उनकर नन भौजी हवन शकुंतला मोहता।

लोग से खास संगतिया हवन गीता बाई जनरल फोंस से ही हमनी के हमेशा साथ देते रहेलन और हई गीत मांगेलन चाची ललिता कुशल त्रियोले बगल से और उनकर सब बहिन लोग सुदेवी देवीना ज्ञानी छोटी साथ हवन दा भाई हरीश भाई आत्मा राम सुखलाल मौसी माला राम जावन और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिर और जाने ल हई गीत ढेर कोई खुशी रहेलन से सुने तो चला हई ये गीत जे तोहर पसीन के गीत है तो हई गीत तोहरो खातिन भी चलावत है और बढ़िया से बढ़िया गीत खातिन बस ऐसने साथ देते रहिए जा और ऐसन ठंडा के मौसम में चाचा के बड़ी मन कर लो ने को गीत शुरू कर दे लको इन दिन तो हम तो सोचली वाह चाचा तो कलाकार बन गल बा तो जाने ल गीतवा के तोड़ मरोड़ के कैसे गावे के शुरू करलन चाचा गावे के शुरू करलन बोले कैसे बनी हो चाय कैसे बनी चीनी हो गल महंगा बाय कैसे बनी हमर चाय कैसे बनी हमर चाय कैसे

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी धड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम लाजवाब कार्यक्रम संगे जितना कोई हमने के साथ देवत हवान सब कोई के चेहरा पर ऐसे ने हंसी बनल रही और चला अभी 9:20 हो गल बा मजेदार कार्य

कार्यक्रम संगे अगला गीत जन हा राजा बंधु के आवाज में रखल हई गीत के मांग कर ले हवन शांति जी तेगूश से उत्साह देवत हवन और दागोचिया के सब मराठी परिवार खातिन और खासकर अपन दागोचिया के उनकर भगिना ओम खातिन और उनकर एगो भैया हवन जे पॉम्पलेमूस में काम करेला लापुलिस हवन लापुलिस भैया बलराम खातिन तो चला बलराम भैया जे तू सुनत हव ती गीत तोहरों खातिर भी चलावत है नहीं खिस चाची शांति से खुशी से आज तोहर नाम जोड़ देले बा और आज मजेदार कार्यक्रम संगे चला आगे बढ़ब स औरी चाचा चाची के किस्सा औरी पप्पू भैया के किस्सा तो जाने ल पप्पू भैया बहुते संस्कारी ह कौन दिन भेटा गल चाचा से त चाचा के बोले चाचा दिनवा कैसे जाता बोला त चाचा बोले का बोला बेटा का बोला दिन भर ताने अरे रात में उदास गाने और बाकी तो सब भगवान जाने।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:27 हो गल बा और हईजा पर हमनी के संगे सजादा परिवार जुड़ गल हवन थियोले बगल से और साथ देवत हवन दीपशिका बुलोगाम और अगला गीत जो है पूर्णिमा फुकीरा जी की आवाज में रखल नदी किनारे सुनार है गीत के मांग कर ले हवन तो चला सब परिवार खातिन चलाओ अब जा है बढ़िया सन गीत औरी हमर चचा चाची के किस्सा जाने ला कौन दिन चचा चल गल दोगतिया हिया तो दोगतिया हिया जाके दोगतिया के बोले डॉक्टर साहब जाने ला हमनी के गत्ते गत्ते समझ में आवता तो दोगतिया बोले कौन ची चचा बोले है ये कि हर बात हमनी के गत्ते गत्ते समझ में आवेला तो डॉक्टर बोले अरे वाह चचा तू तो बड़ी समझदार हो गल हवा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला है जा पर एक गो और गाना पूर्णिमा फुकीरा जी की आवाज में और है गीत चलाओ अब जा चाची शांता सुकागी खातिन जी हमने के अभी साथ देव थवन से जमिल फोरसाइट से ढेर ठंडा करा था और ऐसा ठंडा के मौसम में मजेदार गीत चला उनकर पतो हवन किरण और बेटा हवन सुदेश गाविन सुजीत और अशोक साथ देव थवन भावेश और संजना और उनकर सब सुकागी परिवार खातिन अगला गीत चलाओ अब जा और जाने ल हमर पप्पू भैया जाके चचा से बोले चचा एगो बात पूछे के रहल है शादी के बेरा में जब सात फेरा लेब त चक्कर आवेला त चचा बोले नहीं बेटा घुमरी नहीं लगेला जब चार है सात फेरा जब शादी के समय में तू लेब तब तोरा घुमरी नहीं लगे पर बाकी पूरा जीवन में पूरा जिंदगी भर तोहर कपार घूमते रही ऐसन कलिते के तोहरा घुमरी लगी के का बोलब

0: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का तड़का
1: नौ बजकर 40 मिनट और ही चला है जा पर हमनी के साथ देवत हवन अमरोज नुएल देखु व्याज से और साजन के देवल सारी है गीत के उमंग कर ले हवन सुनीता नन को क्या आवाज में और साथ देवत हवन रोज बेल से नाजिया नाजिया और सुमेहरा आयान और फिजाल और सब बुचना परिवार बुचाना परिवार और लौतन परिवार नुएल देखु व्याज से चला मजेदार कार्यक्रम और अगला गीत के संगे संगे जाने ला हमर चचा जो है ना भगवान के बहुत पूजा करेला भगवान से जाके वो बोले हाथ जोड़ के ऐसन प्रार्थना में डूब गल और जोर जोर से लगे भगवान के बोले बोले भगवान तू हमनी के बचपन देलक औरी 15 बरिस में हमर बचपन छीन लेलक बाद में तू हमनी के जवानी देलक वो भी तू 10 बरिस में हमसे छीन लेलक अब शादी के बाद है लुगाई दे देले हवा तब वापस लेवे के भुला गल हवा का हम तक खाली याद दिलावत है भगवान तनी कृपा कर दो हमनी पे

0: भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का
1: चला है जहाँ पर बादवाग विदेशी जी हमने के संगे जुड़ गल हवन और कमल और विभा चिंतामणि के आवाज में रखल है अगला गीत करब जा उनकर खातिन और बस साथ देते रहिए जा काहे के है भी एगो बहुत बढ़िया गीत है और बस काम करते रहे के काम करे के बहुत एगो स्फूर्ति रहेला एगो ऊर्जा रहेला। तो चला आज के कार्यक्रम के संगे संगे जितना कोई काम करत हवन उनकर सब कोई खातिन और उनकर सब परिवार बादवाग विदेशी जी के परिवार खातिन चलाओ अब जा है अगला गीत और मजेदार गीत के बाद एक बार फिर उसे चचा चाची के किस्सा तोहरा सुनाओ अब जा।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला है जा पर हमने के साथ है देवा धवन अनीता जी फ्लिकॉन फ्लाक बगल से और अनीता जी हमने के है गीत के उमांग कर ले हवन मैंने प्यार किया फिल्म से लेवल गईल और है गीत चलाओ अप डाउन कर खातीन खासकर शोभा जी हवन अनुराधा और लक्ष्मी उनकर तीन गो बहिन और जितना कोई साथ है देवत हवन उन सब कोई खातीन है ये गीत चलाओ अब जा शारदा सिन्हा के आवाज में रखल और मजेदार गीत संगे सब कोई साथ है देते रहिए जा रात के 11 बजे ले अभी 9:53 हो गल बा आउरी हमर चचा गजोधर जाने ल कोन दिन एगो ऐसे बैठल बैठल कुछ काम करत रहल तब एक कुत ओकर कान में एगो आवाज एगो आदमी हल्ला करत रहन हाँ बाहर से हल्ला करत रहलन 100 रुपया में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ के खावे सकी तो चचा तो भाग के हाली से धौक के गल बाहर बोले 100 रुपया में कौन ची बेचता ऐसन की पूरा परिवार बैठ के खाए जो इसे बाहर जाके देखलन तो जानत हो वो आदमी कौन ची बेचत रहलन एगो चटाई बोले पूरा जिंदगी अपन परिवार संगे बैठ के खावे सकब

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
3: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बातें, और अभी एक घंटा बीत गलबा और एक और घंटा रह गलबा। रात के 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। हंसते मुस्कुराते

सब कोई बस साथ देते रहिए जा औरी बिल्कुल हमनी के तनी धीरज तनी धैर्य रखिए काहे कि हमनी के सब कोई बोले हमर गीतवा तनी पहिला चला दहो जरूर चलाओ अब त्राका नहीं कर और ये हमनी के साथ देते रहिए जा और ये चला अगला गीत जो है पंडित राज वर्मा खातिन चलाओ अब जाओ अगला गीत जो है उनकर माँ के याद में वो उनकर मामा जी के बहुत बहुत याद करेलन सर और सब बड़ुआ परिवार खातिन और पीतों से तू साथ देवत हवा पंडित राज वर्मा जी और पीछे काफ़े से सब भाई लोग खातिन और सेवास्तोपोल से हवन पंडित बंधु तो चला भोजपुरी बॉयज दुल्हा राजा एल्बम से लेबल गईल हई गीत करब जा तोहर खातिन और ई हंसते मुस्कुराते बस ऐसने साथ देते रहिए जा हंसते हंसते जीवन आगे लेके जाप सा तो चला अभी थोड़ा घड़ी में एगो और चुटकला तोहर खातिन हई गीत के बाद

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम लाजवाब कार्यक्रम संगे हैजा पर कुमारी जी दागोचे से साथ देवत हवन सब उस्ताविय परिवार के संगे सात गो बहिन और उस्ताविय परिवार के साथ साथ कौन मास के हवन रामफल परिवार खातिन और संगे संगे तीन गो बेटी लता प्रतिमा और सुधा और पतो हवन कामिनी और नाती हवन आयुष और अमृता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन अमृता गणेश भी साथ है देवत हवन संगे संगे हाइजा पर साथ देवत हवन गीता राधे किसुन अंजू अमिता फूलो और बड़की मनुआ खाती नगला गीत संभावती दुमन के आवाज में रखा है भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे बस साथ देते रहिए जा और चाची इतना खीस करके चचा के बोले जे हमनी के जानकारी मिलल कि तोहर संगे तू कोई संगे चक्कर चलावत हवा तो हमनी से जस्ती बुरा कोई नहीं रही तो चचा बोले अरे पगली तू चिंता काहे करत हवा हो तोरा नहीं पता चले देवा अब कि हमनी के चक्कर कोई के संगे चलता

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और पोलो जे बगल से छोटी हमनी के संगे जुड़ गल हवन संगे हवन भैया हरीश भैया आत्माराम और ललिता जे ललिता जी हमनी के साथ देवत अवंती युले बगल से और दादी प्रभावती खाती नगला गीत के उमंग कर ले हवन बसंत सुपोल के आवाज में। तो चला है ये गीत करब जाऊ उनकर खातिन उनकर सब परिवार संगे जितना कोई हमनी के सुनत हवन उन सब कोई खातिन चलाव अब जा है ये गीत। और हमनी के चाचा बहुत कबो कबो तो कबो कबो मस्ती भी करेला कबो कबो ऐसन खीस में चाची के बात सुना देवेला और कबो कबो ऐसे शायरी करेला सा कि का जानी कहाँ से ओकर दिमाग में है सब बतवा चलावेला। चाची के बोले हम बुढ़िया तोहर खातिन एगो शायरी लिखले हैं सुनबे तो चाची बोले हाँ सुनाव हो। बोले देखा शायरी सुन के बहुत अच्छा लगेला तो हम बोलब तोहरा तू हमर चंद्रमुखी हम तोहर सूरजमुखी तू हमर चंद्रमुखी हम तोहर सूरजमुखी। तो चाची बोले तू हमर संगे दुखी हम तोहर संगे दुखी। तो चाचा तनी आजूते कर देला बोले है तोहर मुंह तनी बंद कर देबा तो हम भी सुखी और तू भी सुखी। बोला ऐसन कोनो शायरी बनेला हो

0: प्रिंस हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला है जहाँ पर सब कोई हाइये बोला था राखी निमन से बीतल की नहीं। अरे बहुत मजे से बीतल और सब परिवार संगे जब एगो समय बीतेबा त बहुत अच्छा समय बीतेला। तो चला है जहाँ पर कल्याणी जी हमनी के बहुत शेगी से साथ देवत हवन और चार गो भाई खातिन है गीत के मांग कले हवन। लागिना ही छूटे राम के है गीत है तो रखिया तो चल गल बाते पर आज भी है गीत बहुत सब कोई है समय में ढेर कोई है गीत के मांग कले बा बहुत बहुत खुशहाली के साथ है जहाँ पर शोभा जी भी हमनी के संगे जुट गल हवन का बोन से और सब सीनियर सिटीजन खातिन जितना बीमार लोग हवन लोपिताल में जितना राजो सुनत हवन जितना रात के काम करत हवन उन सब कोई खातिन है ये गीत चलाओ अब जा और लागी ना ही छूटे राम के है गीत बहुत मजेदार गीत। तो चला है गीत के संगे साथ देते रहिए जा हमनी के

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार गीत के संगे चला अगला गीत जनहा नाजीरा खातिन चला अबजा दागोचिया से ऊ भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और ऊ भी लागिना ही छूटे राम के है गीत के ऊ बहुत खुशी हवन तो चले उनकर खातिन चला अबजा है अगला गीत लाले लाल होठवा और मजेदार गीत के संगे संगे बस हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा 10:24 हो गल बा और ये हमनी चचा चाची के किस्सा का बोलब जाने ल चचा हमनी के चाची के हमेशा खिस करावेला चाची इतना प्यार से पूजा पाठ सब करेलन स और चाची बोले चचा के जाने ल हम भगवान शिव जी से है श्रावण मास में भगवान शिव जी से हइए प्रार्थना करले हई कि आवत 7 जन्म में हम हइए घर के पतो बनब अगला जन्म में भी हइए घर के पतो बनब त चचा के त मुंह टेढ़ा हो गल चचा बोले हइए जन्म में हइ घर बेच देवब हम

0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और 10:31 हो गल बा। हाई जापन चाची नीता केदनी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और साथ देवत हवन सेंजुलिया विलास से उनकर खास सखी स्वादिका संगे जे हमेशा बिलवेदिया से हमनी के साथ देते रहे लंसा और आज के कार्यक्रम में वो भी हमनी के साथ जुड़गल हवन तो बस प्यार से साथ देते रहिए जा। और अगला गीत जन है बहुत ही मज़ेदार गीत है, गीतवा चलाओ अब जा मानती जी खातिन। मानती जी हमनी के नुवल फॉन्स बगल से साथ देवत हवन, उनकर बहिन हवन आनंती और आरती, दुगो पत्तो हवन उर्वशी और अनुषा, साथ हवन अमीक्षा, गिरीशा, मितिशा और हवन भव्या, पुष्कल और हितांशु खातिन। तो चल ढेर ठंडा करता और ऐसा ठंडा के मौसम में बिजवाओ तीस संपत के आवाज में रखल है अगला गीत करब जा तोहर खातिन तोहर सब परिवार खातिन।
1: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।

0: तड़का भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में चला एगो बहुत मजेदार गीत के मांग कर ले हवन श्यामा जी जी हमनी के साथ देवत हवन अभी। और अगला गीत जोन है गंगा माँ तोहरा पियरी चढ़ाइबो फिल्म से लेवल गईल है गीत है
0: तड़का
1: और हिंदी फिल्म के है गीत के मांग कर ले हवन श्यामा जी। श्यामा रघुनंदन जी गाँव गोप से हमनी के साथ है देवत हवन भैया जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता संगे हवन केशव और युधिष दुगो भगिना और साथ हवन उनकर खास दो सखी विश्वानी और वीना रामफल जी जे हमनी के हमेशा साथ देते रहेलन। तो चला है गीत एगो विदाई के गीत है बहुत ही मजेदार बहुत ही दिल छुए वाला गीत है। तो चला सुनब जा संगे मिल के है लाजवाब गीत।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और जहाँ पर हमनी के स्थानीय कलाकार के गीत चलावत है वहाँ कबो कबो हमनी के जो हिंदी फिल्म है वो में भी बहुत ऐसा फिल्म है जहाँ पर हिंदी फिल्म में भोजपुरी गीत गावल गईल बाते और भोजपुरी भाषा के संगे संगे चलो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे बढ़ावत है। 10:40 हो गल बा और हमनी के संगे हैजा पर कुमारी जी दागोचे से बोले हमर खातिन अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल अयोध्या के राज तनी चला द हमर मन तनी खुशियाली हो जाए काहे नहीं हो बस आप सब कोई खुश रहिए तो चला अगला गीत चलावब जा तोहर खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और काल सब कोई रक्षाबंधन के पर्व मनैलन। पर आज भी बहुत प्यार से रक्षाबंधन के एगो गीत के मांग करत हवन भाई माहेन और उनकर दीदी मान खातिन है अगला गीत चलाओ अब जा रक्षाबंधन खातिन। और चला कर संगे संगे एक बार फेरों से जितना कोई सुनत हवन उस सब कोई के रक्षाबंधन के बहुत बहुत बधाई देवत हवन। ललिता गजादा के आवाज में रखल हाई गीत करब जा उनकर खातिर।

0: बाबू के जन्म होल बाहो तारिया बजाओ।
1: अविनाश रामधेन, अमृता बिसेसर, रेखा कुंजल की आवाज में रखल है गीत के संगे आज के कार्यक्रम के।

बिल्कुल, आप सबको एक खातिर चलाओ अब जा अगला जो कार्यक्रम रही सुनहरे पल हाई कार्यक्रम गिनीशा सबको के साथ दी अंजा माफ करिए जा आज के कार्यक्रम बिल्कुल सुनहरे पल कार्यक्रम में नीतू शाह आप सबको के साथ दी अंजा जहाँ पर पुराना गीत चली चला एक संगे रत्ना को दीजिए अनुमति फिर उसे भेट आप सो बढ़िया कार्यक्रम संगे आवत शाम दी के रात के 9 बजे से 11 बजे ले तब तक ले अपन ख्याल रखिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए काहे के जीवन बहुत जोली बा बहुत सुंदर बा हंसते रहिए एक संगे रत्ना को दीजिए अनुमति शुभ रात्रि नमस्कार।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। प्रणाम श्रोताओ, आप सबका स्वागत है सुनहरे पल कार्यक्रम में। जी हाँ, इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं। याद है हमको, पिछली बार हम रफी साहब के डुएट्स के बारे

में बात कर रहे थे, तो इनके बारे में इतनी सारी चीजें हैं, बातें हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज भी उन्हीं पर और उनके प्यारे प्यारे रोमांटिक डुएट्स आप तक पहुंचाते रहें। तो साथ निभाते रहिएगा रात्रि के 12 बजे तक। तो हम पहुंच आए थे उनके चौथे स्टार के बारे में, इमोशनल और मिलंकोलिक डुएट। रफी साहब दर्द को कभी आर्टिफिशियल नहीं बनाते थे, उनकी आवाज में आंसू की जगह एक कंट्रोल्ड इमोशनैलिटी होती थी। इसी वजह से उनके सैड सॉन्ग्स और इमोशनल डुएट्स लिसनर्स के दिल तक सीधे

पांचवा स्टार था क्लासिकल बेस्ड डुएट। रफी साहब का क्लासिकल ट्रेनिंग उनकी सिंगिंग में हर जगह नजर आता था, चाहे गानों में डिफिकल्ट तान हो, मूर्खी हाई नोट्स या इंट्रिकेट मेलोडिक मूवमेंट, रफी साहब बहुत आसानी से उसे हैंडल कर लेते थे। दैट्स व्हाई इसी वजह से कंपोजर्स उन पर डिफिकल्ट कंपोजिशंस के लिए भी पूरा भरोसा करते थे।

और फिर आता है उनका कॉमिक और मस्ती भरा डुअट स्टाइल। उनकी कॉमिक सिंगिंग एक अलग ही कला थी। वो आवाज को कैरेक्टर की पर्सनालिटी के हिसाब से मोड़ सकते थे। उनकी प्रोनंसिएशन में एग्जैजरेशन भी होता था, लेकिन सुर कभी छूटता नहीं था। इसी कॉम्बिनेशन ने उनके फनी सॉन्ग्स को टाइमलेस बना दिया।

कितने नील। रफ़ी साहब की एक खासियत ये भी थी कि वो अपने को सिंगर को कभी ओवरशैडो करने की कोशिश नहीं करते थे। ड्यूएट में उनका ऑब्जेक्टिव अपनी आवाज दिखाना नहीं बल्कि पूरे गीत को खूबसूरत बनाना होता था। ये एक महान प्लेबैक सिंगर की पहचान है। उनकी आवाज सिचुएशन के हिसाब से कभी लीड लेती थी, कभी पीछे हट जाती थी और कभी दूसरी आवाज को म्यूजिकल स्पेस भी देती थी। इसीलिए रफ़ी साहब के ड्यूएट सॉन्ग्स सिर्फ दो सिंगर्स का गाना कहना उनके साथ अन्याय होगा। ये असल में दो आवाजों के बीच एक म्यूजिकल कन्वर्सेशन हुआ करता था। कभी वो कन्वर्सेशन आंखों से होती थी, कभी लफ्जों से।

आते क्यों नहीं? जाओ जाओ, जाते क्यों नहीं? फूल सर रुख

ना निकला दसक गया शब का अंधियारा दसक गया शब का अंधियारा आओ आओ आते क्यों नहीं जाओ जाओ जाते क्यों नहीं फूल सर और शबनम।

आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं। फूल सा रुख और शबनम शबनम पल झलक में लुक गए हम, फूल सा रुख और शबनम।

को दिल न दुखाओ, हाथ न झट को दिल न दुखाओ। आओ आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं। फूल सा रुख और शबनम शबनम पहली झलक में लुट के रहे हम। फूल सा रुख और

रफी साहब की आवाज का सबसे बड़ा जादू शायद यही था कि उनकी सिंगिंग में इंसानियत थी। वो गाते वक्त हीरो की आवाज बन जाते थे, लेकिन उनकी सिंगिंग में रफी साहब का दिल भी महसूस होता था। इसलिए उनके रोमांटिक ड्यूएट सिर्फ फिल्म के सीन्स तक सीमित नहीं रहे, वो लोगों की पर्सनल मेमोरीज का हिस्सा भी

0: रफी साहब के डुएट सॉन्ग्स हमें ये सिखाते हैं कि अच्छा म्यूजिक सिर्फ आवाज का खेल नहीं होता, उसमें मेलोडी होती है, लिरिक्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, केमिस्ट्री होती है और सबसे बढ़कर इमोशन होता है। रफी साहब ने इन सभी एलिमेंट्स को अपनी गायकी में इतनी खूबसूरती से मिलाया कि उनकी आवाज जेनरेशंस के पार पहुंच गई।
1: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे

की आवाज में मोहब्बत की मिठास भी है, दोस्ती की वार्म्थ भी, शरारत की चमक भी, जुदाई का दर्द भी और जिंदगी को सेलिब्रेट करने की खुशी भी। शायद इसी वजह से रफी साहब के डुएट सॉन्ग्स कभी पुराने नहीं पड़ते। टेक्नोलॉजी बदल गई, म्यूजिक के फॉर्मेट्स बदल गए, लिसनिंग हैबिट्स बदल गई, लेकिन रफी साहब की आवाज का जादू आज भी वही है। और जब एक खूबसूरत फीमेल वॉइस रफी साहब की आवाज के साथ मिलती है तो वो सिर्फ डुएट नहीं रहता, वो एक म्यूजिकल लव स्टोरी बन जाता है। दो आवाजें मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करती है जो लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरा होता है।

रफी साहब के लिए शायद इसलिए कहा जाता है, आवाज उनकी थी लेकिन एहसास हम सबका था। उन्होंने गाने गाए जरूर, लेकिन उन गीतों में हमने अपनी मोहब्बत, अपनी यादें, अपनी खुशियां और कभी कभी अपना दर्द भी सुना, और यही एक महान गायक की असली विरासत है। शुभ रात्रि श्रोताओं।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: She likes to drop it low, man.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

मेरे भाई तू मुझसे कुछ कहना चाहता है, कह देना, ये अधूरी बात मुझे समझ नहीं आती। कोई तो बड़ी बात है भाई, अपने छोटे भाई से क्यों छुपाता है।

सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। महलों में भी सीटी बजती है, इस बार केवल सीटी नहीं ढोल बाजा शहनाई भी। 4-1 के भारी स्कोर पर मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को चकनाचूर किया। सिटी के लिए रायन चर्की का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा, जादूगरी प्रदर्शन कहा जा रहा है। चर्की का डबल, गोल स्कोरिंग मशीन अर्लिंग अलोन का भी डबल रहा। क्रिस्टल पैलेस का गोल एक ऑन गोल रहा गोलकीपर दोनारूमा का। नया मैनेजर एंजो मारेस्का बहुत खुश हुआ, लगातार दूसरी जीत और वो भी स्टाइल में। क्रिस्टल पैलेस की दूसरी हार मतलब अभी के लिए मैनचेस्टर सिटी लीग लीडर और क्रिस्टल पैलेस सबसे नीचे अंतिम पोजीशन पे। आज के मैच इस प्रकार हैं। अर्ली किक ऑफ अनफील्ड रोड में लिवरपूल नॉटिंघम फॉरेस्ट का स्वागत करेगा। 3:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, 3:30 किक ऑफ। उसके बाद बोर्नमुथ एवर्टन, कोवेंट्री सिटी हल सिटी, टोटनहम हॉटस्पर न्यूकासल यूनाइटेड, ये आज रात 8:30 बजे 8:30 किक ऑफ है। कल के मैच संडे फिक्स्चर, चेल्सी ब्राइटन, लीड्स यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड, संडरलैंड वर्सेस फुलहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा इप्सविच टाउन के खिलाफ 7:30 बजे 7:30 किक ऑफ। मंडे मैच एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख की धुआंधार एंट्री, 5-1 से बायर्न म्यूनिख ने स्टुटगार्ट को पछाड़ा। उपामेकानो ओलिजे जियाज पावलोविच के साथ एक ऑन गोल भी रहा। इस्माइल साइबाखी जिसने अपना पहला मैच खेला उसकी ओर से 3 असिस्ट रहे। फ्रांस में पारी सेंट जर्मेन बाल बाल बचा, लील 2-0 से लगभग पारी को लील गया था, पर इंजुरी टाइम में 4 मिनटों के अंदर अंदर पारी सेंट जर्मेन की लाजवाब एंट्री यानी उसका कमबैक, विटिन्हा और मार्किनोस पारी सेंट जर्मेन को डूबने से बचा पाए। पारी सेंट जर्मेन के लिए ये दूसरा ड्रॉ है, पिछले मैच में भी यही कहानी थी। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में रेक्साम 1 बर्मिंगम 2 और स्पेन के लालीगा में रेसिंग सांतोंडे 3 एल्चे 2 अलावेस 1 विलारियल 0। ट्रांसफर न्यूज, ट्रांसफर बाजार बंद होने में अब

0: केवल 3 दिन रह गए हैं। ब्राडली बाकोला लिवरपूल में अभी ले नई आलबा, यानी अभी तक नहीं आया है। बाहें फैलाए, हाथ पसारे, बेसब्री से लिवरपूल में बाकोला के आने का इंतजार किया जा रहा है, राह देख रहे हैं, पर अब तक केवल इन प्रिंसिपल कुछ ठोस नहीं है। उधर अस्टन विला पारी सैन जैमे से इब्राहिम एम्बाय को साइन करने जा रहा है, दाम लगभग 47 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। लिवरपूल ने भी एम्बाय को बाय करने का इरादा रखा था। एम्बाय केवल 18 साल का है, विला में उसका भविष्य उज्जवल होने वाला है। अस्टन विला एसी मिलान से राफा लियाओ को साइन करना चाहता था, पर लियाओ गलातासराय में चला गया। यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के ड्रॉ कल निकाले गए। यूरोपा लीग में प्रीमियर लीग से सन्डरलैंड, बोर्नमुथ और क्रिस्टल पैलेस हैं। सन्डरलैंड के ग्रुप में है एजेड अल्कमा, एसी मिलान, जिनामो अंडेलेक, यागेलोनिया, लेच पोजन और लेव्स की सोफिया। बोर्नमुथ के ग्रुप में है एसी मिलान, रियल सोसिएदाद, विक्टोरिया प्लाजेंस, पाउटापाग, स्टूमखाज, सेल्टा वीगो, अपोएल, बियर्शेवा और लिल स्ट्रोम। क्रिस्टल पैलेस के ग्रुप में रियल सोसिएदाद, लियों, स्पार्टा प्राग, साल्सबर्ग, लेच पोजनन, यागेलोनिया, होफनहाइम और बेसिक्टास। कॉन्फ्रेंस लीग में ब्राइटन है और ब्राइटन के साथ होगा मोनाको, पनाथिनाइकोस, खायोवा, गेताफे, काउनो, जालगिरिस, याब्लोनेक। यूरोपा लीग में सभी टीमें 8 मैच खेलेंगे, 4 होम 4 अवे, जबकि कॉन्फ्रेंस लीग में 3-3 मैच खेले जाएंगे, 3 होम 3 अवे, और इसी तरह क्वालिफाई होंगे नॉकआउट राउंड के लिए। क्रिकेट, इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच में अभी द थ्री लायंस की दूसरी इनिंग्स चल रही है। पहले बैटिंग करके इंग्लैंड 290 पर ऑल आउट हुई, फिर पाकिस्तान को केवल 110 रन पर साफ किया। अभी इंग्लैंड 3 विकेट खोकर 81 रन पर खेल रही है। पाकिस्तान पर 261 रन लीड। आज तीसरे दिन का खेल होगा। विमेंस एशिया कप कल से शुरू हुआ। दुबई में थाईलैंड ने हांगकांग को हराया। आज यूएई वर्सेस श्रीलंका और कल टीम इंडिया की एंट्री होगी थाईलैंड के खिलाफ। ये महिला एशिया कप है। मॉरिशस में आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा सीजन 4 के 5वें सप्ताह में आज 1 बजे एएमजी पैंथर्स वर्सेस टोमास कुक टाइगर्स, फिर कल 9 बजे एपीपी लियोपार्ड्स वर्सेस वन हेल्थ जगुआर्स, और कल 1 बजे कॉन्टिनेंटल चीताज वर्सेस टोमास कुक टाइगर्स। साइक्लिंग, किमले कुपियना इस बार क्लासिक लोरियों में भाग लेगी। ब्रिटेन टूर जीतकर आज फ्रांस में क्लासिक लोरियों में आएगी, ये भी वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। मॉरिशस में ही क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर कोइराची विलेज काउंसिल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। इस संडे को रोशनुआ टूर्नामेंट में सतानिक रोशतेया का मुकाबला ओलंपिक भामस्तान से। मोसेलमा सेंट एंड्रे में सैटरडे रोवर्स फुटबॉल क्लब की ओर से गला मैच वेटरन कैडेट्स के खिलाफ, ये भी इसी रविवार को, इसी संडे को मोसेलमा सेंट एंड्रे मैदान में। सेंट जूलियन डुटमों में जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब की 60वीं एनिवर्सरी के लिए आज सैटरडे शनिवार को जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब मल्टी जिम और नए पेटांक बुलोद्रोम की ओपनिंग होगी, और अवार्ड सेरेमनी भी 4 बजे से जिल्फा स्पोर्ट्स क्लब में। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।